0: आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी। स्वरंजनी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गिटार पर राग रामकली, कलाकार थे रतन कुमार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे ठीक 6 बजे हिंदी में समाचार, उसके बाद 6:05 पर समय होगा अंग्रेजी में समाचारों का। 6:10 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO

0: की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Sethabello, off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the 3 missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the U.S. Charge d'Affaires in New Delhi. Railways Minister Ashwini Vaishnav held a high-level review meeting with senior officials of Indian Railways on the Railway Recruitment Board RRB recruitment process. During the meeting yesterday, Mr. Vaishnav emphasized the need for a more transparent, accurate and technology-driven system. He also reviewed the progress made in shifting departmental examinations to computer-based test mode and said that more tablet-based examinations should be introduced to make recruitment faster, efficient and user-friendly. Defence Minister Rajnath Singh asserted that the exceptional performance of indigenous missile systems during Operation Sindoor is a testimony to the growing strength of India's defence research and development ecosystem. Inaugurating the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's Defence Research and Development Laboratory, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex in Hyderabad, the Defence Minister said that systems developed by DRDO, such as Akash and BrahMos, have demonstrated India's capability to compete in the global defence technology ecosystem. Mr. Singh emphasized that strength is essential for peace and that self-reliance is the most reliable foundation for that strength. Union Minister for Heavy Industries and Steel H.D. Kumaraswamy has said that Prime Minister Narendra Modi has placed unprecedented emphasis on manufacturing-led growth and employment generation, which has accelerated industrial growth and created large employment opportunities. He said this while addressing the 65th Foundation Day celebrations of the Central Manufacturing Technology Institute in Bengaluru. Mr. Kumaraswamy said the Central Manufacturing Technology Institute, headquartered in Bengaluru, is making significant contributions to research in the strategic sector and will be provided financial and institutional support to strengthen its capabilities and expand its national footprint. Cabinet Secretary Dr. T.V. Somnath has reviewed the preparedness for

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राहुल सांकृत्यायन के जीवन के कुछ प्रसंग।

राहुल सांकृत्यायन एक बार रेल से तत्कालीन कलकत्ता यानी कोलकाता जा रहे थे। रेल में चढ़ते ही उन्हें उनके बचपन के एक मित्र मिल गए। दुआ सलाम के बाद उनके मित्र ने पूछा, कलकत्ता में कोई खास काम है? नहीं, बस यूं ही, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। नहीं, कुछ तो काम होगा? दोस्त ने फिर पूछा। अरे भाई, कुछ काम नहीं है, बस काफी दिन से कलकत्ता नहीं जा पाया था, सो इच्छा हो गई। दोस्त मन ही मन ये सोचकर चुप हो गया कि कोई बहुत बड़ा काम है जो मुझसे छुपाना चाहते हैं। चलते चलते अचानक रेल बीच जंगल में रुक गई और काफी देर तक रुकी रही। राहुल सांकृत्यायन और उनके दोस्त रेल से उतरकर रेल चालक के पास गए और उनसे रेल रुकने का कारण पूछा, तो पता चला कि रास्ते में पटरी में कुछ खराबी आ गई। ये भी पता चला कि अभी कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। चलो तब तक इस पास वाले गांव तक होकर आते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने अपने मित्र से कहा। क्यों, क्या करेंगे? उनका दोस्त बोला। अरे भाई, तब तक यहां भी क्या करेंगे? ना, मुझे नहीं जाना, दोस्त ने कहा। राहुल सांकृत्यायन अकेले ही उस गांव की ओर चल दिए। ठीक 2 घंटे बाद वापस आए तो मित्र ने पूछा, क्या देखा है गांव में? कुछ भी कहो दोस्त, सारे गांव एक से नहीं होते। सांकृत्यायन जी बस इतना कहकर चुप हो गए। हैरान परेशान उनका दोस्त फिर रेल चालक के पास गया और खबर लाया कि पटरी ठीक होने में अभी उतनी ही देर और लग सकती है। चलो तब तक एक और गांव में होकर आता हूँ। इस बार दोस्त से इतना कहकर सांकृत्यायन जी दूसरी दिशा की ओर

0: दोस्त बार बार उनके संस्मरण पढ़े जा रहा था। 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के 15 गांव में जन्मे राहुल सांकृत्यायन जब तीसरी कक्षा में पहुंचे तो उर्दू की पाठ्य पुस्तक में एक शेर पढ़ने को मिला। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। शायद यहीं से उनके बाल मन में कोई बात घर कर गई और पूरा जीवन घुमक्कड़ी में बिता दिया। राहुल सांकृत्यायन को नियमित शिक्षा का अवसर प्राप्त न हो सका, पर स्वाध्याय से उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास, संस्कृत, वेद, दर्शन और विश्व की अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाल्यकाल से ही भ्रमण के लिए निकले राहुल जी जीवन भर कहीं भी जमकर नहीं रह सके। देश में ही नहीं, विदेशों में नेपाल, तिब्बत, लंका, रूस, इंग्लैंड, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, ईरान और चीन में इतना घूमे कि कई परिंदे भी इनकी उड़ान के आगे नतमस्तक थे। श्रीलंका में 19 महीने, तिब्बत में 1.25 बरस और नेपाल में लंबे समय तक अज्ञातवास में रहकर राहुल सांकृत्यायन ने साहित्य को अनगिनत अमिट रचनाएं दी।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के जीवन से कुछ प्रसंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे बालकांड।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

0: उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्डवृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृङ्खलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:10 और ये समय है कार्यक्रम संगीतिका का। लीजिए सुनते हैं जसलीन कौर के शब्द। संगत कलाकार हैं प्रमोद प्रसन्ना बांसुरी पर, जकीर धौलपुरी हारमोनियम पर, प्रदीप्ता महाराणा तबला पर, अकील अहमद सितार पर।

अभी आपने सुना संगीतिका में जसलीन कौर के शब्द। संगत कलाकार थे प्रमोद प्रसन्ना बांसुरी पर, जाकिर धौलपुरी हारमोनियम पर, प्रदीप्ता महाराणा तबला पर, अकील अहमद सितार पर। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब समय है गुड मॉर्निंग भरी। सुबह जो है आपकी हो चुकी है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और इसमें आप सुनेंगे आपके पसंद के और हमारी पसंद के गीत। तो लीजिए शुरू करते हैं इस गीत के साथ गुड मॉर्निंग भरी हमारी गीतों की। ये सुबह है जो बहुत अच्छी है और इसमें हम आपको एक टास्क देते हैं कि आपने आज सुबह उठकर पहले सबसे पहले क्या किया। मतलब सुबह उठकर आपने भगवान का नाम लिया या अपने दोस्त को याद किया, अपना मोबाइल देखा या फिर आपने गार्डन में जाकर सुंदर सुंदर फूलों को निहारा या फिर हरियाली को देखा या फिर खुले आसमान को, बताइएगा ज़रूर। हमारी ईमेल आईडी है, ये हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद। फिलहाल आप तैयार हो जाइए संदेश के लिए कि आपको क्या कहना है।

ईमेल आईडी जिस पर आप अपना संदेश भेजेंगे वो है ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com। और इस गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त कुसुम।

आप हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और अब आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त कुसुमलता। और मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आपने सुबह उठकर क्या किया, यानी कि खुला आसमान देखा, मोबाइल देखा, या फिर अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाया, या फिर ब्लैक टीपी। जी हाँ, कुछ तो किया होगा। बताइए हमारा जो ईमेल आईडी है, जी हाँ, जहाँ पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं, वो है iprradiodelhi@gmail.com। iprradiodelhi@gmail.com पर आप अपने इस दोस्त को अपना जवाब भेज सकते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
5: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
7: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये

0: बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत

0: इनोवेट्स 2026 भारत में निर्मित विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर

0: oil ship that killed three Indian sailors. India and Bangladesh reaffirmed their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। डीआरडीओ ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजुर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाजों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हो गए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अजायम को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। और फीफा आलमी कप में लॉस एंजलिस में ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान भारत की शराकत दारी में मजीद गहराई पैदा करना है। इस दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ और ज्यादा वसी दिफाई शराकत दारी की जानिब भारत के अज़्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वजीर आजम अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे। यहाँ वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस 2 तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हमनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए मौके दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म का साल 2014 के बाद फ्रांस का 7वां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खसूसी सिफारती हैसियत हासिल है क्योंकि इस साल भारत फ्रांस ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद ये जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान पहली 2 तरफा चोटी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी होगी कि भारत आलमी स्टेज पर आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज़ बना हुआ है। पेश है फ्रांस के नीस से हमारे नुमाइंदे की खसूसी रिपोर्ट।
2: फ्रेंच रिवियरा शहर नीस में आज शाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं, जहां इस साल की सबसे अहम सिफारती मुलाकातों में से एक मुलाकात होने वाली है। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी होटल पहुंचेंगे, जहां वो जुनूबी फ्रांस की भारतीय बिरादरी की जानिब से मुनाकद कम्युनिटी ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ पैलेस डेस एक्सपोजिशंस दी नीस में भारत की अहम इख्तराई नुमाइश भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान फ्रांस और दुनिया भर से 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां सरकर्दा सरमायाकार और सनती रहनुमा यकजा होंगे। इस नुमाइश के दौरान डीप टेक, मसनूई जहानत और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत को आलमी मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक जमहूरिया का दौरा करेंगे। पेश है ब्रतिस्लावा से हमारे खसूसी नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाक जमहूरिया की राजधानी ब्रातिस्लावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पहले दौरे के लिए तैयार है। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए इम्कान तलाश करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्लोवाकिया के सदर पिल्ले ग्रिनी से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये साल 2024 के 1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर गुज़िश्ता साल 1.8 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। ये दौरा यूरोपीय यूनियन

पर अमरीकी हमलों के बारे में जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हुए हैं अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अज्म को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। और बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत और मैं हूं शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। बचपन यानी मासूम मुस्कानें, चमकती आंखें और सुनहरे सपने, लेकिन जब किसी बच्चे की आंखों की रोशनी पर खतरा मंडराने लगे तो ये केवल एक बीमारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की चिंता बन जाती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर लेकिन जागरूकता से हराई जाने वाली बीमारी पर, रेटिनोब्लास्टोमा। ये बच्चों में होने वाला एक दुर्लभ नेत्र कैंसर है जिसकी समय पर पहचान और सही उपचार से न सिर्फ दृष्टि बल्कि बच्चों का जीवन भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण परिचर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किन किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कैसे जागरूकता बन सकती है बच्चों की आंखों की सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत। सुनिए परिचर्चा चाइल्डहुड रेटिनोब्लास्टोमा। हमारे प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमिता महाजन, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, सोनल शर्मा, पेशेंट पेरेंट एडवाइजर एंड नेविगेटर एंड को फाउंडर कैन किड्स, अतुल राठौर रेटिनोब्लास्टोमा सर्वाइवर एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड यूथ एंगेजमेंट लीडर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पूनम बगाई, आप चेयरमैन एंड फाउंडर हैं कैन किड्स में।
2: नमस्कार श्रोताओं, चलिए फिर सबसे पहले हम समझते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा क्या है और उसका अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकता है, अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, और उसके लिए हम बात करते हैं डॉक्टर अमिता महाजन से। डॉक्टर अमिता, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में लिसनर्स को बताएं कि ये रेटिनोब्लास्टोमा होता क्या है।
3: पूनम जी, सबसे पहले मैं आपका और हमारी सेहत प्रोग्राम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें ये अवसर दिया कि आप इनके श्रोताओं को हम रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर के बारे में अवगत करा सकें। रेटिनोब्लास्टोमा एक आंखों का कैंसर है। ये रेयर कैंसर है। वर्ष भर में लगभग 2000 बच्चे इससे पीड़ित होते हैं, तो ये नंबर बहुत कम है, लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए, कैंसर स्पेशलिस्ट के लिए इस कैंसर का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये एक विजिबल कैंसर है। आंख में सफेद झिल्ली दिखने से माता पिता इसे जल्द पहचान सकते हैं और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर भी इस चेंज की अहमियत को समझ के तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके बहुत टाइमली डायग्नोसिस कर सकते हैं, और उसी तरह से हम लगभग 100% क्योर इन मरीजों को दे सकते हैं आंख और नजर को बचाते हुए। तो इसीलिए ये रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: तो डॉक्टर अमिता, वो कौन से अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो पेरेंट्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए?
3: रेटिनोब्लास्टोमा बहुत छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है। नवजात शिशु भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं, और ज्यादातर बच्चे, लगभग 95% इफेक्टेड बच्चे 5 साल से कम आयु के होते हैं और माँ बाप की नजर के सामने हमेशा रहते हैं। तो अर्लीस्ट साइंस यूजुअली माँ बाप यही पकड़ पाते हैं कि आंख की पुतली में सफेद झिल्ली दिखना। तो इसे एक मेडिकल इमरजेंसी समझिए। अगर रेटिनोब्लास्टोमा नहीं भी है तो ये किसी न किसी बीमारी का संकेत है जो बच्चे की नजर को प्रभावित कर सकती है। तो ये साइन से तुरंत आई डॉक्टर के पास जाना बहुत आवश्यक है। कोई नया ऑनसेट भेंगापन कि बच्चे की नजर पहले ठीक थी पर माँ बाप को लगा कि अब आंखों में कुछ नया भेंगापन है, या आंख में सोजिश है, या अधिकतम लाली दिख रही है, या पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, तो कोई भी ऐसा आंख का जो नया लक्षण दिखे तो जरूर कोई आई डॉक्टर को कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर रेटिनोब्लास्टोमा नहीं भी है तो जो भी है उसका टाइमली डायग्नोसिस और इलाज होना बहुत आवश्यक है।
2: तो डॉक्टर अमिता, क्या एक सिंपल आई स्क्रीनिंग और टाइमली रेफरल एक बच्चे की विजन और उसकी लाइफ दोनों को सेव कर लेगी?
3: बहुत मदद कर सकती है, और ये सिंपल टेस्ट ये है जिसे हम कहते हैं रेड रिफ्लेक्स, कि जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय गाइडलाइंस के अनुसार भी हर नवजात शिशु का एक सिंपल टेस्ट है जो एक इंस्ट्रूमेंट या सिंपल टॉर्च

0: से भी किया जा सकता है। और पहले कुछ महीनों में या पहले 2 वर्षों में बच्चे अनेकों बार डॉक्टर के पास जाते हैं टीकाकरण के लिए, तो ये बहुत सुनहरा अवसर है इस बीमारी को या आंखों की कोई भी परेशानी को डिटेक्ट करने के लिए, जिसके टाइमली ट्रीटमेंट से हम बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट को बचा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस इस पे काफी स्ट्रिक्ट हैं। भारतवर्ष में ये गाइडलाइंस अभी इतनी स्ट्रिक्टनेस से फॉलो नहीं की जा रही, पर जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो बहुत बड़ी बॉडी है, जिसमें सभी पीडियाट्रिशियन या बच्चों बाल डॉक्टर उसके हिस्सा हैं, तो ये गाइडलाइंस हमारे रिक्वेस्ट पे और इस टेस्ट की जरूरत को समझते हुए वो अनाउंस करने जा रहे हैं कि सभी बच्चों को टीकाकरण के अवसर पे और नवजात शिशु जब पैदा होता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले ये वाला टेस्ट अवश्य किया जाए, क्योंकि इस टेस्ट की कोई भी लागत नहीं है।
1: तो ये बहुत बढ़िया बात
0: बहुत
1: है।
0: बड़ी
1: लेकिन
0: बात
1: अगर जैसे किसी ने फोटो ली और उनके बच्चे के उनको वो चमक दिखी,
0: हाँ,
1: तो तुरंत क्या करना चाहिए?
0: उसे पहचाने और आई डॉक्टर या जो बाल डॉक्टर हैं उनके पास पहुंचे। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि पीडियाट्रिशियन या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, तो अपने आंगनवाड़ी वर्कर को या जो भी जिस भी हेल्थ केयर वर्कर से आप मिलते हैं उन्हें जरूर बताएं, क्योंकि सबने मिलके एक रास्ता बनाया है कि ये लक्षण अगर पकड़ा जाए तो इसे आगे करना क्या है। तो उससे आप डरिए नहीं और इसको पहचान के जरूर अपने जो भी हेल्थ केयर वर्कर से आपका नाता जुड़ा हुआ है उनको ये बताइए और वो आपको आगे का रास्ता वो खुद ब खुद आपको बताएंगे।
1: अब बताएं डॉक्टर अमिता कि हमने ये देखा है कि नॉर्थ इंडिया में बच्चे लेट स्टेज डिजीज में आ रहे हैं और इस डिले का क्या वजह हो सकता है?
0: ऐसा हमारा अनुभव है कि बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। जिन प्रदेशों में मदर या फादर की एजुकेशन ज्यादा कंप्लीट है तो वो लोग इसको जल्दी पकड़ पाते हैं, तो मैटरनल एजुकेशन इसका कारण हो सकता है। बीमारी के अपनी बायोलॉजी में कोई अंतर हो सकता है कि जिस वजह से कोई बीमारी ज्यादा एग्रेसिव होती है, इसके कुछ पहलू ही हम अभी तक समझ पाए हैं। और दूसरी बात है कि कहाँ पे आई सेंटर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। हिस्टोरिकली बहुत एस्टैब्लिश आई सेंटर साउथ में ज्यादा रहे हैं, लेकिन जैसा पूनम जी आपने बोला कि अब ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ पे अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज नहीं है। सरकार, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मिलके यही कोशिश कर रही हैं कि जहाँ तक नेत्र के प्रॉब्लम्स का इश्यू है, कोई भी बच्चा अच्छे इलाज से वंचित ना रहे पूरे देश भर में।
1: दूसरा, हम बात करते हैं कि अच्छा, अब हमने बच्चे को, हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में आज 100% एक्सेस है। हमने कुछ थोड़ा गौर किया कि हमारे देश में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट भी रेटिनोब्लास्टोमा के लिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आम जनता नॉर्मल तौर पे सोचते हैं कि अच्छा ये सब हमारे देश में नहीं है, और हमें पता है कि रेटिनोब्लास्टोमा का सर्वाइवल रेट विदेश में बेस्ट कंट्रीज में 94% है, पर हमारे देश में भी ये सब है। और आपने तो काफी कुछ रिसर्च भी किया है रेटिनोब्लास्टोमा पे, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगी, सर्वाइवल रेट हमारे देश में क्या है, क्या हो सकता है?
0: हमारे देश में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आज की तिथि में जो सरकार प्रयास कर रही है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी वर्ग से हो, वो अच्छे इलाज से वंचित ना रहे। साथ में कहीं अगर कुछ गैप्स हैं तो एनजीओज भी बहुत भरसक प्रयास कर रही हैं, तो हम सभी लोग, कैंसर स्पेशलिस्ट, आई डॉक्टर्स, चाइल्ड डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, सभी इस फाइट आरबी इंडिया के छतरी के नीचे एक कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं कि हम हर बच्चे का, हर परिवार का हाथ पकड़ के उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज दे सकें। लेकिन शायद सबकी अवेयरनेस ना होने की वजह से अभी भी लगभग 1/4 बच्चे बहुत देर से सही सेंटर में पहुंच पाते हैं। तो इस प्रोग्राम का यही, इसके माध्यम से हम यही श्रोताओं को कह सकेंगे, ना केवल अपने बच्चों में पर अपने आसपास, अपने स्कूल्स में कोई भी दिखे जिसे कोई मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, उनके आर्थिक अभाव को या सामाजिक परिस्थितियों को नजर में ना रखते हुए कहीं भी किसी हेल्थ केयर वर्कर तक उन्हें पहुंचाएं। एक बार वो चलना शुरू करेंगे, लोग साथ खुद ही उनके साथ जुड़ते जाएंगे और दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाएंगे। इसका हम पूरा आश्वासन दे सकते हैं कि आर्थिक अभाव के डर से उनका इलाज कभी भी रुकेगा नहीं। जहां तक आपने बोला कि हमारी कामयाबी क्या है, हम सभी सेंटर्स को एक कड़ी में जोड़ के पहले, सबसे पहले यही समझ

0: पूछना चाहते थे कि समस्याएं क्या हैं। तो जैसा मैंने बोला कि एक चौथाई बच्चे बहुत लेट स्थिति में पहुंच पा रहे हैं, जिनसे उनका आंख बचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी कम से कम 3/4 बच्चों का जीवन हम इस वक्त बचा पा रहे हैं जो बच्चे किसी सेंटर तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो 94%, 96% डेवलप्ड कंट्रीज का रिजल्ट है, वो क्यों ना हम हर बच्चे को क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप सभी, अब आज से आप सब भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, और ये मैसेज जो है सब तक पहुंचाइए कि बाल कैंसर या कोई भी कैंसर, उसका इलाज आज की डेट में उपलब्ध है।
1: हम मिलते हैं हमारे रेटिनोब्लास्टोमा एम्बेसडर अतुल राठौड़ से। अतुल, आप एक रेटिनोब्लास्टोमा सर्वाइवर हो और शायद आप छोटे से थे तब आपको रेटिनोब्लास्टोमा हुआ, राइट?
2: जी
1: तो आप हमें बताएंगे कि जब एक फैमिली को पहले पता चलता है डायग्नोसिस के बारे में, तो उस वक्त क्या बीतती है उनपे, और वो किस लिए मुश्किल था, पहले शायद ज्यादा मुश्किल था, आज की तारीख में क्या तरक्की है?
2: तो जब मुझे डायग्नोस हुआ था तो उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा बिखर सा गया था, वो सारे लोग डर गए थे कि अब तो अतुल को कैंसर हो गया है, तो वो पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। बट उस टाइम भी वहाँ पर पेशेंट नेविगेटर्स थे, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरी जो मदर है उनको समझाया, उनको बताया कि नहीं, रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज है और आपका बच्चा बच सकता है, उसकी दूसरी आँख की जो रोशनी है वो भी बच सकती है, वो पूरी ज़िंदगी अपनी अच्छे से जी सकता है। आज की तारीख में मैं आज परिवारों से मिलता हूँ जिनके बच्चों को रेटिनोब्लास्टोमा डायग्नोस होता है, वो परेशान हो जाते हैं, बट उनके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको सही रास्ता दिखाते हैं कि हाँ इलाज भी है, कहाँ पर जाना है आपको, कैसे क्या इलाज होगा। अगर वो फाइनेंशियली वीक हैं तो उनको सारे फाइनेंशियल सपोर्ट्स देना, अगर वो कहीं बहुत दूर हैं जहाँ पर वो अपने किसी नज़दीकी हॉस्पिटल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक बड़े शहर में लेकर आना, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना, वो सारी चीज़ें आज हैं। हम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा करते हैं कि हर छोटे छोटे गांव में हम ट्राई करते हैं कि वहां तक पहुंच सके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं रेटिनोब्लास्टोमा के।
1: तो आप शायद ग्वालियर के रहने वाले हो, राइट?
2: जी।
1: तो आपको जब डायग्नोसिस हुआ था, तो आपका डायग्नोसिस के बाद आपका इलाज दिल्ली में हुआ, तो वहां से यहाँ आप कैसे आए, और फिर यहाँ आके आपकी जिंदगी, आपके माँ और आपके परिवार की जिंदगी कैसे बदली? अपने घर को छोड़ के आना बहुत मुश्किल है ना?
2: जी, जब पता चला था कि मुझे कैंसर हुआ है, तो दिल्ली आकर दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, फिर पता चला कि यहाँ कैंसर है। बहुत सारे लोग नहीं थे, सिर्फ थी मेरी मदर मेरे साथ थी, उन्होंने मेरा इलाज कराया। वहां पर उनको एनजीओज मिले, उनकी हेल्प ली, उन लोगों से बात करना, जो मेरी माँ थी वो अकेला, उन्होंने मेरा इलाज कराया, तो वो भी बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, उनको भी डर लगता था कि क्या मेरा बच्चा बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, बट उनका साथ पकड़ना, उनका हाथ पकड़ के उनको को राह दिखाना कि हाँ आपका बच्चा बच पाएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, उनको विश्वास दिलाना, ये सारी चीजें हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, एनजीओज ने, साइकोलॉजिस्ट ने वहां पे की थी।
1: अरे, आपके ट्रीटमेंट तो एम्स में हुआ था
2: जी,
1: है ना? तो वहां तो आज भी बहुत ही उच्चतम का रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट होता है। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनको रेटिनोब्लास्टोमा है या था और अब भी वो उसको फेस करते हैं। तो एक बच्चे की तरफ से अगर आप बताएंगे, क्योंकि मैडम ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको होता है, पर मैंने तो ये भी देखा कि 10-12 साल के भी बच्चे कभी कभी हमको दिखते हैं जो पेशेंट हैं। और हाल में ही हम किसी को मिले थे जो 15 साल के और जिसने काफी कुछ रेटिनोब्लास्टोमा का, तो उन बच्चों की तरफ से बताओ कि बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। उसके आपने एक आंख निकाली, पर वो किस चीज से प्रोत्साहित होते हैं और क्या वो मैसेज होगा जो आप बताएंगे कि अच्छा किसी को लगे कि हाँ मुझे अगर ये है तो मैं इसको कैसे बीट करूंगा।
2: जब एक बच्चे की आंख निकाल दी जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम से गिर जाता है वो, क्योंकि और वो कॉन्फिडेंस उसकी वजह से नहीं गिरता कि आंख निकल गई है, वो कॉन्फिडेंस गिरता है कि सोसाइटी जब उसको अलग तरीके से देखना शुरू कर देती है, उसके साथ रहना बंद कर देते हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा कभी कभी छोड़ देते हैं कि नहीं इसको, इसकी एक आंख नहीं है, इसको कुछ होगा। बट जो लोग उस मोमेंट पर साथ में आते हैं, जिससे कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको अगर आकर मोटिवेशन देते हैं कि नहीं आप, अगर आपके साथ ये हुआ है तो कोई बात नहीं। जब ऐसी चीजें होती हैं, जब आप सर्वाइवर्स को मोटिवेट करते हो कि आप सिर्फ एक ट्रीटमेंट के बाद आपकी लाइफ वहां पर एंड नहीं हुई है, आपकी लाइफ आगे बहुत है, आप डांस कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप कविताएं पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो लाइफ में।
1: तो ये तो बहुत बढ़िया।

0: बात है, अगर आप जब हम बोलते हैं कि अच्छा एक रेटिनोब्लास्टोमा में आंख निकाली जाती है, डॉक्टर अमिता बैक टू यू ऑन दिस क्वेश्चन, तो और ये भी हमें पता है कि पेरेंट्स भी इस बात से अगर हिल जाते हैं, तो इसके बारे में अगर आप हमें बताएंगे, ताकि इससे ना हम, बहुत जरूरी है कि लोग डरे नहीं, उस डर की वजह से वो छोड़ के चले जाएं, ट्रीटमेंट पूरा ना करें, तो वो तो सही चीज नहीं है। तो अगर आप इस पे थोड़ी सी
1: देखिए,
0: हमको।
1: श्रोताओं को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जब हम इलाज करते हैं इस बीमारी का या किसी भी और बीमारी का, तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं, ट्रीटमेंट गोल्स। उनमें से प्रथम है जीवन बचाना, क्योंकि उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। रेटिनोब्लास्टोमा या आई की डिजीजेस के बारे में हमारा नेक्स्ट गोल है आंख को बचाना। थर्ड गोल है कि नजर, आंख तो बचे लेकिन वो फंक्शनल हो, जिससे कि जो दो आंखों का नजर का नजरिया है वो बच्चे को मिल सके। और चौथी चीज है कि इलाज में कोई ऐसी प्रणाली का यू इस्तेमाल ना हो जिसके साइड इफेक्ट्स उन्हें कुछ वर्षों बाद, 20 25 30 साल के बाद देखने पड़े। तो हमारे एज अ डॉक्टर, हम इसीलिए हमारा कोशिश है कि राइट टाइम पे डायग्नोसिस हो, ताकि कोई मेजर सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े। चाहे वो आई हो या लिम्ब हो, तो हमारी प्रयास रहता है कि जो पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी बराबर बनी रहे और उसका वो शरीर का प्रभावित हिस्सा फंक्शनल ही हम सेव कर पाए।
0: तो सोनल जी, आप हमारे साथ हैं, आप एक पेरेंट हैं, आप पेरेंट ग्रुप की लीडर हैं, आपने तो बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ इतने सालों में आपने उनके साथ काम किया है, तो आप बताएंगे कि शुरू शुरू में जब आपने ये काम किया था, तो उस समय ये जो आर्टिफिशियल आई आंख को लेके लोग बहुत घबराते थे, और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं और उसकी वजह से लोगों को क्या हम होप दे सकते हैं?
2: थैंक यू पूनम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम 2000 की बात करते हैं और 2026 की बात करते हैं, तो आज जो हम देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन द ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर अमिता महाजन कह रही है, वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम सब ने देखा है। और 2000 में मैं जो एक और बात कहना चाहूँगी, जो हमने चर्चा में मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी, वो ये है कि लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव इलाज के टाइम, चाहे वो रेटिनोब्लास्टोमा हो या कोई और कैंसर हो, जब हमने ये शुरू किया था 98-2000 की बात करेंगे, तो लड़कियां बहुत कम आती थी इलाज कराने के लिए और लड़कों को ज्यादा माँ बाप इलाज कराने ले आते थे कि भाई अगर आंख निकल गई या हाथ कट गया या कोई और मुश्किल हो गई तो फिर इनसे शादी कौन करेगा, मुद्दा शादी बन जाता था, ना कि जीवन। जैसे डॉक्टर अमिता महाजन ने कहा, जीवन बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम यूपी सरकार के साथ काम कर रहे हैं और वहां पे गांव-गांव, जैसे आपने कहा अतुल, गांव-गांव विलेज विलेज में जाकर हम नीचे जाके अवेयरनेस कर रहे हैं, आशा वर्कर से बात कर रहे हैं। उसी में 2007 में हमारे साथ एक पेरेंट जुड़ी थी जिनके बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा था, आज वो हमारा पूरा यूपी स्टेट देखती हैं। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि सुनील जी, जब 2007 में मैं अपनी 2 साल की बच्ची का ट्रीटमेंट करा रही थी, तो इवन एनेस्थीसिया जैसी छोटी चीज के लिए मुझे 3 से 4 दिन वेट करना पड़ता था और डर और बढ़ता चला जाता था कैंसर के नाम से और आगे क्या होगा उससे। पर आज जब उनकी बेटी का इलाज हो गया और वो बिल्कुल ठीक है, वो कह रही है, उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है कि उसी समय आपका डायग्नोस भी हो जाता है, आपकी सर्जरी भी हो जाती है, कीमो भी हो जाती है, और जैसे डॉक्टर अमिता महाजन ने बोला, सेव आई सेव विजन सेव लाइफ, हम उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है पूनम जी, बच्चों को और पेरेंट्स को, क्योंकि जब माँ बाप को ये लगता है कि हाँ इलाज कराने के बाद मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आम बच्चों के जैसे स्कूल कॉलेज शादी पढ़ाई कर सकता है, तो वो इलाज के लिए ज़्यादा आगे आते हैं और अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराते हैं। आज के वक्त में हम यही कहना चाहेंगे कि चाइल्डहुड कैंसर का इलाज है रेटिनोब्लास्टोमा और बाकी कैंसर का भी, आप सही वक्त पे जांच करा के सही अस्पताल में इलाज कराइए।
0: वंडरफुल,
2: थैंक यू।
0: तो ये बताएं सोनल कि जैसे आपने बताया और हमने बात की यूपी में या अन्य जगह पे, इस आंख के कैंसर में एक वजह ट्रीटमेंट छोड़ देने का शुरू में ये होता था कि आंख तो निकालनी पड़ेगी, क्या होगा। अब एक तो बहुत बहुत अच्छे लेवल के प्रोस्थेसिस मिलते हैं। और मुझे अब भी याद है जब हमने KGMU जो सरकारी अस्पताल है उत्तर प्रदेश में वहां पे इलाज करते थे, तो उसी बच्ची की एक बहुत सुंदर सी फोटो खिंचवाई थी डॉक्टर साहिबा ने, और ये दिखाया था, सबको दिखाती थी कि देखो आपको समझ में आ रहा है इन दोनों में से कौन सी इस बच्ची का आर्टिफिशियल आई है। तो ये मुझे आज तक ये बात याद है, और वो बच्ची इतनी खूबसूरत

0: आज है, तो आज हमारे बच्चों को वो उपलब्ध मिलता है, और फिर बाद में जो वो प्रोस्थीसिस बार बार बदलना है, वो प्रोस्थीसिस भी इतना अच्छा बन गया है और उसका कॉस्ट भी इतना कम है, वो अवेलेबल भी हो जाता है। पर दो सवाल है एक डॉक्टर अमिता से, क्योंकि उन्होंने डिसेबिलिटी पे बहुत काम किया है। तो डिसेबिलिटी रेटिनोब्लास्टोमा में मैडम, अगर आप कुछ बताएंगे कि सरकार क्या क्या उपलब्ध करा रही है, जिसकी वजह से एक ऐसा जो पेशेंट या सर्वाइवर है उसको क्या वो मिल सकता है।
1: देखिए, वैसे तो हमारा पूरा प्रयास मेडिकल फ्रेटर्निटी का यही रहता है कि कोई भी रेटिनोब्लास्टोमा का बच्चा डिसेबिलिटी के लिए क्वालिफाई ना करे, और उसकी विजन इतनी हो कि उसकी लाइफ की फंक्शनैलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों बरकरार रहें। लेकिन किसी वजह से, बीमारी की लोकेशन की वजह से, अगर नज़र में बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क है, तो दिव्यांगन मिनिस्ट्री की तरफ से आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इसके लिए उपलब्ध हैं, और उसके लिए अप्लाई करना भी काफ़ी सरल हो गया है। तो पर वही है कि अगर कोई भी पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते, तो ज़रूर हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स इसमें पूरी आपको गाइडेंस देंगे, पूरी मदद देंगे, कि अगर कोई माइनर डिसेबिलिटी है भी तो वो उनको अपनी ज़िंदगी में अपने पोटेंशियल को अचीव करने में बाधा ना बने।
0: और मेरे ख्याल से ज्योतिर्गमय जैसे प्रोग्राम्स हैं जो मार्गदर्शन दिलाते हैं
1: बिल्कुल
0: ऐसे पेरेंट्स
1: बिल्कुल
0: और सर्वाइवर्स को कि आपको कैसे ये सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं और कैसे आपका जो नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल जीना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों का, जब एक बच्चा सर्वाइव कर जाता है, तो उस नॉर्मलसी के लिए आपको जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं सरकार को, वहां तक पहुंचाने में कई गैर सरकारी संस्थाएं हेल्प करती है, वो जो बोलते हैं पेशेंट नेविगेशन केयर कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके साथ ही सोनल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, कई परिवारों के लिए ये हमेशा एक डर है कि ये कैंसर है, इसमें तो बहुत खर्चा होगा, हम कैसे इसको कोप अप कर सकेंगे। तो आज की तारीख में सरकार की तरफ से क्या उपलब्ध है, जो इतना उपलब्ध है कि हमें लगता है कि ये कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो हमारा लक्ष्य यही है कि 100% फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।
2: थैंक यू पूनम, आपने जो बोला पूनम जी, बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल, जब भी कैंसर एक दिन की बीमारी नहीं है, ये एक महीना दो महीना हो सकता है, लंबा पीरियड है, तो उसमें जैसे कि अतुल भी बोल रहे थे कि वो ग्वालियर से आए, तो जब आप अपरूट करते हैं अपने आप को, खाली इलाज के लिए नहीं, आपको रहने खाने पीने सारी सुविधाओं के लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, अलग अलग स्टेट्स की स्कीम है, जैसे भामाशाह है राजस्थान में तो वो कवर करता है, यूपी की स्टेट स्कीम है, पर आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, सीएम फंड के अलावा आयुष्मान भारत जो कि एक बहुत बड़ा फंड है, और उसको वो बहुत इजीली उपलब्ध हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि पहले के जो फंड्स थे ना पूनम जी, उसमें बड़े सारे कागज पत्र फाइल पेपर आपको जमा करने पड़ते थे, और वो बेचारा एक परिवार उसी में पिसके रह जाता था, या अगर संस्था भी मदद कर रही है तो एक फाइल कहीं तक पहुंचा के पैसा लाने में बड़ा वक्त लग जाता था। पर आजकल सरकार ने, एक तो डिजिटल, आजकल हम सब कुछ अपने फोन पे कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, तो उसी में आयुष्मान भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इससे पहले कि डॉक्टर या संस्था या हमारे जैसे लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं वो उनको बताएं, वो हमसे पूछ लेते हैं कि मैडम मुझे पता है अब कैंसर है और इतना टाइम ट्रीटमेंट का लगने वाला है, आप बता दीजिए आयुष्मान भारत कैसे अप्लाई करेंगे।
0: और जो आयुष्मान भारत है उसका तो पैकेज ही बहुत बढ़िया है, रेटिनोब्लास्टोमा का पैकेज ज्यादातर पूरा इलाज मैडम शायद कवर कर लेता है, कीमोथेरेपी भी और
1: बिल्कुल
0: जो भी उसके पहले आगे का है सब कुछ है। तो आउट पेशेंट या उसमें थोड़ा योगदान एनजीओस का होना जरूरी है, या परिवार को खुद देखना पड़ता है, जो हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, बट मेन ट्रीटमेंट के लिए पैकेजेस अच्छे हैं
2: जी।
0: और साथ में जो मांग रखी गई है सरकार को, जो सरकार बहुत पॉजिटिवली देख रही है, कि जब हम 100% बच्चे को पहुंचा पा रहे हैं, तो अब 100% बच्चों को पूरी तरह से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो ये जो एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स हैं उनको भी कवर अप करने की मेरे ख्याल बातचीत चल रही है। मैडम, इसके बारे में आप बताएंगे?
1: सो ऑलरेडी आयुष्मान भारत में एडवांस ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है, अगर उसके बावजूद भी जैसे आपने कहा कि कहीं कोई गैप्स रह जाते हैं या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है तो वो गैर सरकारी संस्थाएं उसमें पूरा उनका मरीज का परिवार का हाथ पकड़ लेती हैं। तो आर्थिक अभाव आड़े नहीं आना चाहिए अच्छे इलाज में।

0: हमने सब कुछ किया कवच शायद कि कैसे लक्षणों को पहचानिए, कैसे समझिए कि कहाँ पे आपको जाना है डिटेक्शन के लिए, कहाँ आपका डायग्नोसिस के लिए आप जाएंगे। ट्रीटमेंट सेंटर्स पूरे देश में उपलब्ध हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑक्यूलर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट वो भी हैं, सब कुछ है। और इस सब के वजह से सर्वाइवल रेट्स भी बढ़ रहे हैं। एक होती है चीज़ रिसर्च और रजिस्ट्री। मैडम अगर आप एक मिनट में हमें अपनी रिसर्च, आपने बहुत लीड किया है रिसर्च इनपॉग के साथ, तो उसके बारे में अगर आप
1: देखिए, बाल कैंसर जब हम आज बोलते हैं कि क्योरेबल है या क्योर रेट्स बहुत हाई हैं, तो ये जो माइलस्टोन है ये हम लोग अचीव कर पाए हैं कोलैबोरेटिव रिसर्च के द्वारा, क्योंकि ये रेयर बीमारियां हैं। अगर हम सभी जो सीखते हैं, जो समझ रहे हैं इन बीमारियों के साथ, उसके साथ मिलजुल के इनका ट्रीटमेंट करेंगे तो सभी बच्चों का ज़्यादा फायदा होगा। तो रेटिनोब्लास्टोमा इंडिया में भी सभी डॉक्टर्स अब एक कड़ी में जुड़ गए हैं, फाइट आरबी इंडिया के और इनफॉक जो एक हमारी डॉक्टर्स की कैंसर स्पेशलिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी छतरी के नीचे हम लोगों ने एक बड़ी स्टडी की, इस बीमारी का रूप हमारे देश में समझा, लेट क्यों आते हैं, इसको समझने की कोशिश की, इलाज बीच में छोड़ के क्यों जाते हैं, क्योर रेट कितने हैं, ताकि ये एक तरह से एक बेसलाइन बना है। और अब जो दूसरी रजिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है कि देश के हर बच्चे को हम लोग मैप कर पाएं और उसको उत्तम से उत्तम इलाज दिलवा पाए।
0: वेरी गुड। अगर आज कोई पेरेंट हमें रेडियो पर सुन रहा हो तो आप उन्हें एक लाइन में क्या बताना चाहेंगे मैडम महाजन?
1: कैंसर ऐसा शब्द है जो किसी भी परिवार को, बाल को या एडल्ट को इफेक्ट करता है तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पर हताश ना हो, कैंसर ट्रीटेबल है, कैंसर क्योरेबल है और इसके लिए बहुत सारी मदद उपलब्ध है। आप उठ के चलिए, हम सभी आपके साथ हैं। सभी माता पिता से निवेदन है कि अगर आंख में सफेद झिल्ली दिखे या कोई भी ऐसा आंख का लक्षण हो तो मेडिकल अटेंशन तुरंत सीख कीजिए। रेटिनोब्लास्टोमा का सही समय पे डायग्नोज होने से और उपयुक्त इलाज से लाइफ, आंख और नजर तीनों को बचाना पूर्णतः संभव है।
0: सोनल जी, आप?
2: मेरा मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए और माता पिता के लिए है कि पैसों की वजह से ना डरें, फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से आप अपने बच्चे के इलाज में कोई कमी ना करें। गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं, सपोर्ट सिस्टम्स हैं, पूछिए, बताइए, कांटेक्ट करिए और बच्चे का पूर्णतः इलाज करवाइए।
0: अरतुल आप?
3: जी, मेरा जो मैसेज है वो सर्वाइवर्स के लिए होगा और जो बच्चे अच्छे अगर जो अभी मुझे सुन रहे हैं या ऑन ट्रीटमेंट है या फिर उनके माता पिता, उनके लिए कि कैंसर के बाद भी ड्रीम्स हैं, वो बच्चा जो आपका है वो पढ़ सकता है, एजुकेशन है, फ्यूचर है, सब पॉसिबल है। जैसे मैं आज यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, सारे श्रोताओं के साथ बात कर रहा हूँ, शायद कल मेरी तरह और भी बच्चे बात कर सकते हैं। जर्नी आपकी डिफिकल्ट हो सकती है बट कभी होप नहीं छोड़ना है।
0: थैंक यू सो मच एवरीवन। रेटिनोब्लास्टोमा रेयर जरूर है लेकिन अवेयरनेस, टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ चिल्ड्रन कैन कम्प्लीटली सर्वाइव एंड थ्राइव। जरूरत है अर्ली डिटेक्शन की, टाइमली रेफरल की, बेटर ट्रीटमेंट की, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कलेक्टिव नेशनल एक्शन का। अवेयरनेस कैन सेव विजन, अवेयरनेस कैन सेव लाइव्स और हमें मिलकर इंश्योर करना है 100% एक्सेस फॉर केयर फॉर एवरी चाइल्ड विथ रेटिनोब्लास्टोमा। धन्यवाद, नमस्कार।
4: चाइल्डहुड रेटिनोब्लास्टोमा, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर अमिता महाजन, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, सोनल शर्मा, पेशेंट पेरेंट एडवाइजर एंड को फाउंडर कैन किड्स, अतुल राठौर रेटिनोब्लास्टोमा सर्वाइवर, और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पूनम बगाई, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ कैन किड्स। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
5: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
6: धरती आकाश कार्यक्रम के तमाम श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर फिल्म

0: का एक गीत मुझे आज याद आ रहा है। उसके बोल ऐसे हैं कि ये पौधे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं दिल को चुराएं मुझको लुभाए हाय, मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं गाऊं। दोस्तों, वास्तव में हरे भरे पेड़ पौधे, खूबसूरत फूल पत्ते और ठंडी साफ हवा के झोंके, इनसे मन मयूर तो झूम उठता है। मगर शहरीकरण और आधुनिकता के दौर में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता सा जा रहा है, वो सुख चैन लुटता सा नजर आने लगा है। जी चाहता है गांव की ओर लौट जाएं, मगर वहां भी तो कमोबेश वही स्थिति है। वहां की आबोहवा भी खराब होने लगी है, प्लास्टिक का कचरा वहां भी बढ़ने लगा है, कुएं तालाब सूखे हुए हैं, कम पानी है या प्रदूषित है। विकास के नाम पर पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अब यहां से जाएं भी तो कहां जाएं? हम क्या उपाय करें कि हम और हमारा पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षित रहे? तो आज आइए जरा चर्चा करते हैं विस्तार से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विज्ञान प्रसार के पूर्व निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर जी। आप विज्ञान 2047 के संपादक हैं, शांति फाउंडेशन के सीईओ और ट्रस्टी भी हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर नकुल पराशर जी, हमने देखा है कि अब तो हर घर में, एक छोटे से छोटे घर में भी, छोटे से छोटे आय वाले घर में भी, आपने देखा होगा फ्रिज भी है। ये तो घर के बाहर तो होता ही है,
1: जी,
0: घर
1: जी,
0: के अंदर एसी से कूलिंग होती है,
1: जी,
0: फ्रिज के अंदर होता है, लेकिन घर के अंदर ही
1: जी
0: जो फ्रिज होता है उससे भी तो पर्यावरण
1: जी बिल्कुल होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं वो सब पर्यावरण के अंदर अपना जो प्रतिकूल प्रभाव है वो छोड़ते हैं। जमाना था जब एयर कूलर के अंदर घड़े के पानी से और आराम से काम चलता था और हम एक प्राकृतिक तरीके से अपने घर को ठंडा रखते थे, वो सब माध्यम धीरे धीरे शनै शनै खत्म होते जा रहे हैं। खासकर जो ये शहरीकरण, जहाँ पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे या इंडिपेंडेंट घर भी हुआ करते थे, आज वो सब मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स बन गए हैं। कहने को तो उसके अंदर भले ही लोग बड़े छोटे सब रहते हैं, पर आप एक बड़ा अजीब सा शब्द लगता है कि वो बड़े छोटे छोटे एक बॉक्स टाइप के बन गए हैं, जिसके अंदर जाहिर सी बात है कि हवा का कहीं निकासी नहीं है, कहीं वो प्राकृतिक तरीका नहीं है, तो लिहाजा ये होना स्वाभाविक है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हमारा एक ऑफिस है दिल्ली के अंदर, जहाँ उस ऑफिस के साथ कई और छोटे छोटे और बड़े ऑफिस हैं, पर उन ऑफिस में हर ऑफिस में एक एसी लगा है और गलियारे के अंदर उनके आउटडोर यूनिट लगे हैं। तो जब आप उसमें से चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी अवन के अंदर से या किसी उसमें से निकल के जा रहे हैं,
0: गुजरना बहुत
1: मुश्किल हो जाता है।
0: ये सब तो है ही, ये तो शहर की बात हुई, लेकिन अब धीरे धीरे ये कल्चर, यानी एसी कल्चर कह सकते हैं, वो गाँव तक भी पहुंच
1: बिल्कुल
0: गया है।
1: गाँव के अंदर जिस तरह से कूड़ा कचरा और प्लास्टिक बढ़ रहा है, वो इस बात का पूरी तरह से द्योतक है कि हम हर तरह से इसके प्रति उदासीन होते जा रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं।
0: रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक एक अहम हिस्सा तो है, लेकिन ये जो बायोडिग्रेडेबल वाली बात होती है, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। इसके विषय में कि लोगों की जो जागरूकता है वो कम है, बस ये सुविधा देखते हैं।
1: नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो कि एक समय था जब हम घर से बर्तन लेके जाते थे, सामान डलवा के खाने का लाते थे। आज ये आलम है कि हम वहां पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि भाई पन्नी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर लपेट के हमें दे दो, और जब हम ले आते हैं घर में बर्तन में डालने के बाद पन्नी को बाहर फेंकते हैं और वो पन्नी जब कूड़े कचरे में जाती है, तब और हृदय में एक अजीब सी चोट लगती है जब आप देखते हैं कि वहाँ पशु चर रहे हैं, खा रहे हैं। और यही नहीं, वो प्लास्टिक जब जाके नालों में जब अच्छे से फंस जाता है और बरसात के दिनों में वो गंदा पानी इकट्ठा करता है, तो उसके जो दुष्प्रभाव है, दूरगामी परिणाम है, वो ना सिर्फ शहर में बल्कि गाँवों में भी अब देखने को मिलते हैं।
0: अक्सर ये कहा जाता है कि अगर इसका उत्पादन बंद कर दिया जाए तो इस्तेमाल भी बंद हो जाए, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, उत्पादन बंद करना तो संभव नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक अब हमारी जिंदगी के अंदर एक ऐसा अभिन्न अंग सा बन गया है, जब तक उसका हम कोई वैकल्पिक स्रोत या कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं तब तक कोई उसका लाभ नहीं। पर हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, और खासकर मैं आपके क्षेत्र की तरफ ले जाता हूँ, जहाँ मैंने देखा कि अभी भी बड़े बड़े ढाक के पत्तों में, पत्तलों में, और उसमें अभी भी बहुत उसका होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि उन सब चीजों को अब हम शहर की तरफ लेके आए।
0: अक्सर देखते हैं कि जो पार्टी वगैरह होते हैं, जो खाना पीना जो परोसा जाता है, वो या तो थर्मोकोल होते हैं या प्लास्टिक की चीजें। वैसे गाँव में देखा गया है कि जो पत्ते से बने पत्तल इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, और वही शुद्धता भी उसी में है।
1: उसी में है बिल्कुल, और आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कई जगह जहाँ अभी भी दोने के अंदर, पत्तल के दोने के अंदर अभी भी चाट वगैरह मिलती है, उसका अपना एक अलग स्वभाव होता है।
0: जी, ये तो हम अभी शहरों की बात कर रहे हैं और छोटे छोटे नालों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम तटवर्ती इलाकों में, यानी कि समुद्री तटवर्ती इलाकों में चले जाए, तो वहां पर तो इसका दुष्प्रभाव कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है।
1: बिल्कुल, और गत 2022 में हमने स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर का एक कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर 7,500 किलोमीटर की जो हमारी तटीय सीमा है उस पे हमने सफाई का कार्यक्रम किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर वो कार्यक्रम हुआ था, जिसके

0: करीब 2 लाख से अधिक लोगों ने उसके अंदर प्रतिभागिता की थी। हमने 75 जगहों पे ये कार्यक्रम किया था। तो वहां जब मैं और हमारे लोगों ने उसमें काम किया तो हमने टनों कूड़ा इकट्ठा किया, निकाला वहां से, और जो मरीन लाइफ है वो किस तरह से इससे प्रभावित होती है वो देखने को मिला।
1: जी
0: जब हमने कई जगह देखा कि तट पे आके बहुत सारी मछलियां जो पड़ी थी और जब उनका विश्लेषण किया गया तो वो प्लास्टिक की वजह से ये हुआ।
1: तो क्या आप इससे, जैसे कि पर्यावरण की शुद्धता की अगर हम बात करें, पानी की शुद्धता की अगर हम बात करें, जो मछलियां हैं,
0: जी
1: जो मेंढक हैं, जो
0: जी
1: जलीय जीव हैं, तो इनकी कितनी भूमिका होती है जल को शुद्ध करने में?
0: एक बहुत प्राकृतिक, जिसे कहते हैं नेचुरल क्लींजर होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजों को सोखते हैं जो माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ये अपने आप लेते हैं। और ये पर्यावरण को शुद्ध करने के रास्ते में कई बार स्वयं भी शहीद हो जाते हैं,
1: जी
0: तो वो बहुत एक हृदय विदारक है। परंतु ये प्राकृतिक वो है, और आज से नहीं, युगों युगों से ये जलीय जीव जो हैं वो नेचुरल क्लींजर का काम करते आए
1: जी
0: हैं।
1: अक्सर शहरों में तो तालाब नहीं है या
0: जी
1: फिर कम जो है उनमें पानी सूखा हुआ
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन गांव में जो तालाब हैं उनमें मछली पालन किया जाता
0: जी
1: है, तो ये तो गांव के लिए तो बड़ी एक
0: बिल्कुल
1: वरदान की बात। डॉक्टर नकुल जी, अक्सर देखा जाता है कि जो नदी किनारे जो बसे हुए शहर हैं, नदी किनारे जिन शहरों का उद्भव हुआ है या
0: जी
1: फिर अभी पल बढ़ रहे हैं, उन्हें आप कितना जिम्मेदार मानते हैं जल प्रदूषण के लिए?
0: करीब पिछले 20-25 साल का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर निरंतर बढ़ोतरी हुई है, और इतने और
1: रुकावट नहीं आई है?
0: रुकावट नहीं, मतलब जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता ही गया है उसके अंदर, और जिसके वजह से ये बहुत एक चिंता का विषय है। और हम दूर क्यों जाएं, हमारे शहर दिल्ली के अंदर यमुना को ही देख लीजिए, कितने सालों से कितने प्रयास किए जा रहे हैं, तब भी अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं कि जहां पे हम ये कह सके कि हम जाके यमुना जी में स्नान कर सके। और
1: जी
0: खासकर छठ के समय एक बड़ा, एक अजीब सा दृश्य होता है, बड़ा दुख भी होता है कि जब पानी अगर स्वच्छ हो तो वहां पे अर्घ देने का और उसका जो कार्यक्रम है उसका एक अलग वो होता है।
1: जी
0: बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि जब तक हम उसके प्रति सचेत नहीं होंगे तो हम लगातार इसी पे चर्चा करते रहेंगे और ग्राउंड पे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए
1: जी
0: बहुत जरूरी है कि जितना, जैसे आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण एक साथ बढ़े हैं, तो उसका जितना भी कूड़ा कचरा निकलता था उसका कहीं प्रॉपर डिस्पोजल
1: डिस्पोजेबल।
0: नहीं हुआ, वो सीधे का सीधा नदियों में जाके गिरा। ये तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि कानपुर के अंदर जितनी चमड़े की टैनरीज थी उन पर प्रतिबंध लगाया ताकि गंगा जी के अंदर वो बहुत जाके गिरे नहीं।
1: जी वैसे देखा गया है, हम सभी जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो
0: जी
1: नदी घाटी नदी किनारे ही हुए, और वहां उस वक्त तो
0: जी
1: विकास हुआ था,
0: जी
1: लेकिन इस वक्त जो विकास हो रहा
0: जी
1: है
0: जी
1: वो विकास तो विनाश की ओर जा रहा है।
0: बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इसके लिए हम आप सभी जिम्मेदार भी हैं, और हम आप सब जब तक सचेत होकर आगे नहीं बढ़ेंगे,
1: जी
0: अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है।
1: जी
0: इसलिए हमारा आप सबका ये प्रयास होना चाहिए कि अपने जीवन में कुछ समय निकाल के इसके अंदर स्वैच्छिक, एक वॉलंटरी तरीके से जाके अपना योगदान दें।
1: डॉक्टर नकुल जी, अक्सर हम जब बड़े हो जाते हैं
0: जी
1: शहरों में आ जाते, तब हमें पता चलता है कि यहाँ वायु प्रदूषण है, यहाँ जल प्रदूषण है। ये बड़े होने के बाद में, शहरों में आने के बाद में, एक पढ़ाई लिखाई के बाद में होता है।
0: जी
1: तो जहां पर शिक्षा की बात आती है, तो क्या इसे हम एक जागरूकता अभियान के तौर पर या फिर एक कह सकते हैं कि लोगों को शिक्षित करके नीचे लेवल से, यानी कि प्राइमरी लेवल से ही अगर पर्यावरण के संबंध में अगर स्कूली शिक्षा से ही अगर शुरुआत किया जाए, तो मुझे लगता है कि
0: जब बच्चा पहली बार जाता है स्कूल में तो हमें बहुत सारे जो देश हैं जो इसके प्रति सचेत हैं, जापान है और बहुत सारे यूरोप के देश हैं, वहीं से ये प्रेरणा लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे ये हमें करना चाहिए। और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एनवायरमेंट ना सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बल्कि उसको जब पहला बच्चा केजी में जाता है या मॉन्टेसरी में होता है तभी से उसमें एक सब्जेक्ट, ऐसा विषय ऐड करना चाहिए ताकि उसके बच्चे के अंदर वो एक जिम्मेदारी का भाव और उसके बारे प्रति जानकारी बढ़े।
1: डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में वेटलैंड
0: जी
1: आर्द्र भूमि के विषय में घोषणा हुई है
0: जी
1: बलिया के सुरहा ताल, यानी कि जिसे
0: जी
1: कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: उसे 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है।
0: जी
1: तो ये बताइए कि जो रामसर स्थल है या
0: जी
1: फिर जो वेटलैंड है, वो प्रकृति के संरक्षण में या जैव विविधता के संरक्षण में
0: जी
1: कितने कारगर है?
0: पूरी तरह से कारगर है, क्योंकि यूनेस्को इस दिशा में बहुत काम कर रहा है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि यूनेस्को के 13 ऐसे वेटलैंड्स को हमने देश में उस वक्त करीब 2022-23 में आइडेंटिफाई किया था, और उसके ऊपर एक लंबे सीरियल्स बनाने की हमारी चेष्टा रही, जो अभी कुछ कंपनीज जो फिल्म कंपनीज है वो बना रही हैं, और उम्मीद है कि उसके ऊपर और जागरूकता और हम ज्यादा उसके ऊपर आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत मटेरियल मिलने को देखने को
1: जी।
0: मिलेगा।
1: जहां तक अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी जो समुद्री एरिया है या फिर
0: जी
1: समुद्री तट है या समंदर की बात कर रहे थे,
0: जी
1: तो वहां पर मैंग्रोव के पौधे जो हैं
0: जी
1: या
0: जी
1: फिर
0: जी जी
1: जो जो जलीय जो पौधे हैं और
0: जी
1: जो शैवाल वगैरह सब
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: वो कितने हद तक जिम्मेदार हैं प्रदूषण को स्वच्छ करने में?
0: जो मरीन है,
1: जी
0: लाइफ है, वो ना सिर्फ बायोडायवर्सिटी या जैव जैव विविधता को

0: बढ़ाते हैं, बल्कि वो एक नेचुरल क्लींजर की तरह से काम करते हैं और जितना भी पानी को स्वच्छ करने का उनका जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो करके देते हैं। और उसके अलावा वो, मैं तो एक पुराने अनुभव पे जाता हूँ जहाँ पे, अगर रामायण में आपने वो गिलहरी का प्रसंग
1: जी
0: सुना है कि वो
1: जी
0: जाती थी, लौटती थी, वापस आती थी, उसी तरह से ये जो जलीय प्राणी है
1: जी
0: ये अपना बलिदान करके इस काम में अपना सहयोग करते
1: जी
0: हैं।
1: जैसे कि आज 5 जून है और
0: जी
1: पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस है, और इस अवसर पर हर जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, और
0: जी
1: माननीय प्रधानमंत्री का जो अभियान है
0: जी
1: एक पेड़ माँ के नाम,
0: जी
1: इसके तहत हजारों लाखों पौधे लगाए गए हैं और आज लग भी रहे हैं। इसके विषय में आप, जो अभियान चलते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और इस प्रकार के अभियान क्या समय समय पर चलाते रहना चाहिए?
0: मेरे ख्याल से तो ये सतत होने चाहिए, और जिसे कहते हैं कि क्वालिटी शुड नॉट बी अ मोमेंट ऑफ टाइम बट इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। तो ये तो मतलब इसके अंदर किसी तरह का रुकावट नहीं आनी चाहिए, और मैं प्रधानमंत्री जी और बाकी सभी लोगों को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि ये जो एक पेड़ माँ के नाम जो है, और हमारे संस्कृति के अंदर माँ का स्थान बहुत ऊंचा
1: जी
0: है, और उसका नाम लेके ये जो कार्यक्रम शुरू किया, मुझे उम्मीद है कि हम शीघ्र ही उस जैसा एक बड़ा वन और ग्रीन लैंड देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको याद हो, जो कुछ वर्ष पहले हमारे एक बहुत छोटे से एक सज्जन थे जिनको पद्मश्री भी मिला, जो आसाम में जिन्होंने पेड़ लगा लगा के एक बड़ा सा वन
1: जी
0: तैयार किया
1: जी
0: था।
1: हाँ
0: तो ये तो बहुत ही सुंदर, और ये पर्यावरण दिवस के लिए जो आपने इस बात की चर्चा की उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी ढेरों बधाई।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि
0: जी
1: आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, और
0: जी
1: इतनी सारी और इतने महत्वपूर्ण आज के दौर में,
0: जी जी
1: इस शहरीकरण, आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के
0: जी
1: दौर में हम ये सब बातें कर रहे हैं।
0: जी
1: तो इसमें डॉक्टर साहब, एक बात मेरे मन में आ रहा है कि वैसे जब तक किसी कुछ ना कहा जाए तब तक कई बार उधर ध्यान नहीं जाता है, जब
0: जी
1: तक कोई दिवस नहीं आता है तब तक
0: जी
1: कई बार ध्यान
0: जी
1: नहीं जाता है।
0: जी
1: ये तो निरंतर, जैसे कि आपने कहा
0: जी
1: कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है,
0: जी
1: तो इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों में और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया
0: जी
1: जा सकता है?
0: देखिए, विज्ञान का जो लोकप्रियकरण है और जो उसका व्यापीकरण है, जो उसका एक्सटेंशन है, उसके अंदर जितने भी माध्यम अवेलेबल हैं, चारों माध्यम, चाहे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल, ये चारों माध्यमों के मदद से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए, और इसमें जो विषय वस्तु के जो विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनको तैयार करना चाहिए कि किस तरह से अपने जो कॉम्प्लेक्स समझे जाने वाले साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक आम आदमी की भाषा में उससे जोड़ के उसको पहुंचा सके। और इस माध्यम में आपका ये जो रोल है, रेडियो का जो रोल है, बहुत महत्वपूर्ण है।
1: डॉक्टर नकुल जी, एक प्रश्न चलते चलते मैं कहना चाहता हूं
0: जी
1: कि इसको प्रोत्साहन के लिए किस प्रकार से मतलब बढ़ावा दिया जा सकता है?
0: तो मैं तो अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है शांति फाउंडेशन को, वो आपसे करूंगा साझा, कि हम हर उस बच्चे को जिसके अंदर हमने, हम छोटी छोटी प्रतियोगिताएं तो करते ही हैं, पर उसके अलावा आम व्यक्ति, आम जनमानस में ये चेतना जागृत करने के लिए, भाई तुम अगर किसी को अपना पहले कहीं से जो कूड़ा गिरता है उसे उठाओगे और दूसरे आदमी को प्रेरित करोगे तो हम तुम्हारे को एक छोटा सा इंसेंटिव देंगे ताकि
1: जी
0: आप तुम उसको ले सको। इस तरह की तमाम इंसेंटिव की अगर जो तरीके हैं ना, वो चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो सम्मान हो, या और तरीके से किया जा सके, तो आदमी के अंदर जो इस भावना है पर्यावरण के प्रति मेरा जो दायित्व है उसको अगर वो कर सकेगा तो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे।
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर नकुल पाराशर जी, चलते चलते आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे श्रोता है उन्हें?
0: मेरा तो छोटा सा संदेश यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर से ही आप शुरुआत करें और घर के लोगों में पहले एक चेतनता इसके प्रति जागृत कर सकें तो वो सबसे बड़ी चीज होगी। क्योंकि आपने कहीं भी देखा है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो और पर्यावरण की जो जानकारी है वो बढ़ाते चलो।
1: बहुत खूब। डॉक्टर नकुल पराशर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज एक हरे भरे, हरियाली भरी बातें आपने,
0: जी
1: हमें बहुत अच्छा लगा, और
0: जी
1: इसी प्रकार से आपने जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय भी सुझाए।
0: जी
1: पिछले कुछ जो घटनाएं हुई, जैसे आपने स्टॉकहोम की घटना
0: जी जी जी
1: चर्चा की, इन सब के विषय में बहुत सारी आपने जानकारियां दी।
0: जी
1: आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका। नमस्कार।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती आकाश। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स और DRM 810 किलोहर्ट्स पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, 10:10 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे ईमेल पर आधारित आपके कुछ गीत। 9:30 होने को हैं, आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

लगियां दी कदर ना जाने ढोल मेरा परदेसी। पूरन चंद वडाली ते साथियां दी आवाज विच हुणे तुसी ए सुफियाना कलाम सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हां बुल्ले शाह दी ए काफी जसबीर जस्सी दी आवाज विच।

इश्क नचाया कर थैया थैया। आबिदा परवीन दी आवाज विच हुणे तुसी ए काफी सुन रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानु चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नीस शहर जा रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की सातवीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वे ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैंडिडेट्स भी शामिल हुए। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। लॉस एंजलिस में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 के बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to France and Slovakia from today to further deepen India's partnership with two European nations. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship and jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital.

एक अच्छे से संदेश के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा और वो संदेश आपकी तरफ से आना चाहिए। देखिए, गर्मियों की छुट्टी बच्ची पड़ी हुई हैं, बच्चों के साथ आप घूमने जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ आप घूमना चाहते हैं, बहुत से ऐसे काम करना चाहते हैं जो कि आपने अपने वीकेंड यानी सप्ताह के अंत के लिए रखे हुए हैं। चेहरे की मुस्कुराहट के साथ और आपके नामों के साथ शुरुआत करते हैं आज का इस प्रोग्राम को। पहला जो हमें ईमेल मिला है वो मिला है हमें सुखविंदर सिंह जौड़ा का, कृष्णा पार्क दिल्ली से। सुखविंदर सिंह जौड़ा जी लिखते हैं, नमस्कार जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारा गीत आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो साहब सुखविंदर जी, आपके गीत के साथ ही हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अगला जो मैसेज हमारे को हमें मिला है, अगला मैसेज भी देखिए बहुत ही खूबसूरत संदेश है हमें मिला है, और वो संदेश हमें मिला है सुधाकर जाधव का, प्रेम पूर्वक नमस्कार। इनके साथ हैं प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित और प्रधमेश, सर्वद्र प्रणाली और इनके बहुत सारे साथी, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इन्होंने हमें ये ईमेल लिखा है। तुलसी मस्कीन जी का संदेश मुझे अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और साथ में लिखते हैं होस्ट मैम जी, तो आपने लगता है अपना रेडियो सेट अभी खोला है। मैम जी नहीं, तुलसी जी, सर जी, प्यारे से रोमांटिक गीत में हमारा नाम शामिल कीजिए। आपकी तरफ से जो भी फरमाइश आती है ना, सारी रोमांटिक होती है तुलसी जी। साथ में गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से ये हमें मैसेज मिला है, वीना मस्कीन है साथ में, आशीष चैतन्य। और अगला जो मेल है वो है चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और किशु खुराना का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ऐसा लिखते हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। कहते हैं कि डियर एंकर, आपको विनम्र निवेदन करते हैं, तीन चार लिसनर्स एक दूसरे का और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम बिगाड़ कर लिख रखे हैं। ओहो, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इस बात की कि वो फीमेल्स मेंबर्स का नाम भी बिगाड़ रखे हैं, उनका शहर गलत सलत लिख रखे हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। देखिए, आपने जो नाम लिख के भेजे हम वो पढ़ते हैं, संदीप मक्कड़, संदीप जाटा, संदीप जटोलिया, राधिका, इन सब ने, और भी बहुत बड़ा लंबा मैसेज है इनका। आपके मैसेज को हम अगर सारा पढ़ते रहेंगे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। आप अपने गाने हमें लिख के भेजिए। पूनम गंगे गगनेजा का हमें मैसेज मिला है, कहते हैं कि राम राम जी, प्लीज़ एनी सॉन्ग जलाला, यह है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और नमित, देखिए हमने आपका नाम भी शामिल कर लिया है। अगला संदेश हमें सतीश अनेजा का अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखते हैं कि नमस्कार नवीन भाई जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए, प्रोग्राम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। नाराज न होना कभी ये सोच कर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। बहुत खूब विचार सतीश जी, और आपका विचार बिल्कुल सर आंखों पर है। ऐसे ही तमाम संदेशों का, तमाम विचारों का हमें इस प्रोग्राम में इंतज़ार रहता है, क्योंकि देखिए नाम आपने कह दिए, नाम हमने पढ़ दिए, लेकिन अगर आपका संदेश आपके दोस्तों तक, आपके चाहने वालों तक पहुँचेगा तो बात ही कुछ और होती है। गीत की फरमाइश इन्होंने करी है और चंडीगढ़ सिटी से सतीश जी हैं, साथ में बिमला अनेजा जी हैं। बहुत खूबसूरत संदेश है। भाई मूसा शेख का हमें संदेश मिल चुका है, सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए, और शेख मूसा, मोहसिन, अशोक शर्मा, राजकुमार भी उनके साथ हैं। अगला संदेश हमें इस समय मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है दिलावर खान का। दिलावर खान कहते हैं कि जिस घर में हंसी होती है ना, उस घर की प्रॉब्लम भी कोने में पड़ी होती है। बहुत खूबसूरत दिलावर साहब, लेकिन जिस घर में हंसी होती है ना, उसमें जो प्रॉब्लम है ना, जो कोने में पड़ी होती है, साहब अगर खिड़की खोल के रखिएगा, हंसी आती रहेगी और प्रॉब्लम जो है बाहर जाती रहेगी। ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी मुश्किल होगी उससे ज़्यादा बड़ी हंसी होगी, तो बस सब कुछ इतना खूबसूरत होगा। रघुवीर नगर से ये दिलावर खान, हसीना बानो, इलियास नायाब और लड्डू, देखिए आपका संदेश भी हमने पढ़ दिया है। नीटू मल्होत्रा का संदेश इस समय मुझे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और क्या लिखते हैं, हमें झूठी बातें लिखने का शौक नहीं है,
हम वहां जा रहे हैं है या कहीं, और हम सीधे सीधे, हमें तो तारीफ़ करना भी नहीं आता सर जी, शामिल करें या ना करें आपकी मर्जी है। देखिए, तारीफ़ करना तारीफ़ नहीं करना दो अलग अलग बातें होती हैं। तारीफ़ कर रहे हैं तब भी आप हमें याद कर रहे हैं, तारीफ़ नहीं कर रहे हैं तब भी आप हमें कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, और हमें याद कर रहे हैं तभी तो आप संदेश भेज रहे हैं ना। देखिए, खेल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी की नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का साथ में है, कोयल सिक्का, जग्गू भाविक सिक्का, और शुक्रिया लिखते हैं हमें शामिल करने का। आपकी पसंद का बहुत ही खूबसूरत सा एक गीत मैं प्ले करने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये गीत बहुत बहुत बहुत पसंद आएगा। वो इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि आपके शहर में सावन पहुँच चुका होगा, बादल घिर चुके होंगे, बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो गई होंगी।

आपके शहर का बादल कितना दीवाना हुआ है ये आप ही जानते हैं, लेकिन दिल्ली के स्टूडियो के बाहर बादल बहुत दीवाना है, कभी भी बरस सकता है, रिमझिम बारिश हो सकती है। देखिए, किसी ने क्या खूब लगा है कि कुछ लोग किस्मत से नहीं सुकून से मिलते हैं। बारिश की खुशबू, पहाड़ों की खामोशी और तुम्हारा साथ, शायद खुशी इतनी सिंपल होती है। वाकई खुशी इतनी सिंपल होती है कि अगर आपके साथ वो हो जिसे आप बहुत सारी बातें करना चाहते हो, एक ऐसा शख्स हो जिसको आप उन तमाम बातों को कहना चाहते हो और वो शांति से बैठ के सुन भी रहे और एक एक कप चाय हाथ में हो। ग्राम पीपरलूड सरगांव छत्तीसगढ़ से ये मेल हमें मिल चुका है, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। देखिए, हम आपका नाम शामिल कर रहे हैं, आपने कहा है किसी भी गीत में नाम शामिल की, तो हमने इस गीत में आपका नाम शामिल कर दिया है। अगला संदेश हमें इस समय जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, वो है परिहार साहब का। परिहार जी लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम, बेहतरीन प्रस्तुतिकरण। देखिए, हमारी फरमाइश, आपने तारीफ लिखेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई हम सिर्फ उन्हीं के ही गीत सुनवाते हैं जिन तारीफ लिखते हैं, तो इसलिए हमारी तारीफ थोड़ी सी कम कीजिए और अपनी

साथ हमसे ज़रूर साझा कीजिए। आप कोई कविता, कोई शेर, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई ऐसी बात जो आप हमारे माध्यम से अपने दोस्तों को कहना चाहते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा हैं, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, इनका संदेश हमें मिल चुका है। एक और संदेश इस समय मुझे नजर आ रहा है स्क्रीन पर, सुरेश नारंग का। साथ में सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग, इनका ईमेल हमने शामिल कर लिया है। एक और ईमेल है हाजी मजहर साहब का है, आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, ज़रूर सुनवाएंगे। सोमदत्त जी का हमारे पास है, नाभा ज़िला पटियाला पंजाब से सोमदत्त हैं। कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, इनका भी संदेश हम पहुंचा रहे हैं इनके दोस्तों तक। एक और इस समय मुझे अनिल बुरांडे साहब का है कि कोई गीत शामिल कीजिए। अनिल बुरांडे जी, हम हर गीत में आपका नाम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश चौहान, फिल्म अनुपमा के लिए धीरे धीरे मचल दिले बेकरार, देखिए कोशिश करते हैं कि आपका गीत, आपकी पसंद आप तक हम पहुंचा सकें। रविंद्र मोहन दास का है किशनगंज बिहार से, ये लिखते हैं। साथ में आशा देवी भी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत संदेश इनका भी हमें मिल चुका है। स्वर्ण सिंह का हमें संदेश है, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरनाल कहते हैं कि किसी भी गीत में, देखिए किसी भी गीत में नाम शामिल कर दिए, किसी भी गीत में नाम शामिल कीजिए, ज़रूर ज़रूर ज़रूर हम चाहते हैं कि आप संदेश हमें लगातार भेजते रहिए और हम आपका नाम शामिल करते रहेंगे। कौशल्या देवांगन का हमें संदेश मिला है, राज शर्मा का हमारे पास इस समय संदेश मिला हुआ है और उनके साथ हैं राज शर्मा, मीना, योगेश और मैंडी शर्मा और इनके बहुत बहुत बहुत सारे साथी। संदेश लगातार है जिशान अली, जिशान अली का हमें संदेश मिलता है। आदाब नमस्कार, मैं आपके कार्यक्रम में पहली बार जुड़ा हूँ, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुझे आपका शो बेहद पसंद आता है, किसी भी गीत या नगमे में नाम शामिल कीजिएगा। शुक्रिया आपकी नवाजिश, और बहुत ही अच्छा सा संदेश है, उर्दू बहुत अच्छी लिखी है, पढ़ने में इतना सुकून इतना आनंद आया है कि पूछिए मत। एक और संदेश, ये दिग्दर्शन गौड़ जी का संदेश हमें नज़र आ रहा है। दिग्दर्शन और कविता गौड़, विश्व पर्यावरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस गुजर चुका है साहब, 5 तारीख को था। बहरहाल हमने आपका संदेश जो है शामिल अपने इस कार्यक्रम में कर लिया है। बिट्टू भाटिया का संदेश हमें है झज्जर हरियाणा से, साथ में है रीटा भाटिया और रजत भाटिया। आप सबकी पसंद पर बहुत ही खूबसूरत सा एक गीत है और उम्मीद है दिस इज एवर टाइम फेवरेट गीत। लेकिन उस गीत से पहले एक छोटा सा संदेश मैं कहता हूँ कि वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। और बिल्कुल घमंड मत कीजिए, वक्त रहते उन तमाम चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वक्त अगर गुजर गया तो जो चीज़ें आप आज करना चाहते हैं हो सकता है तब न कर पाए जब वक्त मिले।

इस प्रोग्राम में हमें सिर्फ एक ही धड़कन सुनाई देती है और वो धड़कन होती है ईमेल की धड़कन, जो लगातार आपके संदेशों के माध्यम से हम तक आ रही है। अब देखिए कमाल है, आपको हमारा एक मेल भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारा मेल भी शामिल कर लीजिए, इनायत होगी। क्या इनायत होगी, हमें आपका मेल दिखा ना, जैसे ही आया आपका मेल दिखा मोहम्मद सईद अब्बासी जी, और साथ में निगत परवीन है, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान और आपके बहुत सारे साथी हैं। आपका मेल बिल्कुल हमें दिखाई दिया है। रियासत हुसैन का मेल मुझे नज़र आ रहा है जसपुर उत्तराखंड से, साथ में है नाजमा बेगम, मोहम्मद, समरीन और माहिरा नूर। बहुत बहुत बहुत अच्छा मेल। हाँ, एक और मेल इस समय मुझको नज़र आ रहा है, रोशन दिवांगन जी का मेल हम पढ़ चुके हैं, रमेश मांगेराम जी का। मांगेराम जी, कार्यक्रम आपकी पसंद, बहुत ठंडा मौसम में हम सुन रहे हैं, कहाँ से? गांव चौधरीवास हरियाणा से। मांगेराम जी और रितु सिंह जी, क्या वहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही है? बड़ा आनंद आ रहा है और प्रस्तुति में बहुत मज़ा आ रहा है, साथ में मौसम का भी बड़ा आनंद ले रहे हैं। अगर आप दो कप चाय पी रहे हैं ना, तो मांगेराम जी एक कप चाय हमें भी ऑनलाइन भेज दीजिए ना, क्योंकि हमें भी बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि दिल्ली का मौसम भी पिछले एक दो दिन से बहुत सुहाना हो रहा है। ये संदेश हमें मिला है सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से। आदरणीय नवीन जी, सादर प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। शिक्षा तो कोई कहीं भी ले सकता है, पर संस्कार घर से ही मिलते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने सुदर्शन जी, वाकई संस्कार जो है वो घर से ही मिलते हैं, और घर के संस्कार हमें अपने बुज़ुर्गों से मिलते हैं, उन्हें हमने आगे भेजना चाहिए, ताकि समाज में जब इस तरह के संस्कारों से नींव रखी जाएगी ना समाज की, तो देखिएगा समाज अपने आप में कितना सुंदर हो जाएगा। लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, प्रेम होगा, नफरत नहीं होगी। और आगे लिखते हैं कि बरसात ना हो तो फसल खराब हो जाती है, संस्कार न मिले तो नस्ल खराब हो जाती है। बहुत सुंदर बात कही है भाई, बहुत सुंदर बात कही है। संस्कार और बरसात काफी अच्छा जोड़ा है आपने, और दोनों में अपनी अपनी एक अलग ही गहराई है। फसल अच्छी बरसात से बिना नहीं हो सकती, जितना पानी बरसेगा फसल उतनी अच्छी होगी, संस्कार जितने अच्छे होंगे आने वाली पीढ़ी उतनी ही मजबूत होगी, और अपने आने वाले समाज को, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, और मजबूत करेगी। समाज मजबूत, देश मजबूत। आगे लिखते हैं कि पूर्ण विश्वास है आप हमारे अनुरोध

ज़रूर ज़रूर ज़रूर पूरा करेंगे। आपके अनुरोध को हमने पूरा कर रखा है। देखिए, आपका पूरा मैसेज भी हमने पढ़ा है, इतना खूबसूरत संदेश हम कैसे मिस कर सकते थे। बब्बल जी का हमें इस समय संदेश नज़र आ रहा है। नवीन सर जी नमस्कार, प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, सुंदर गीत लिखने हैं वाले हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, मोहाली पंजाब से। पंजाब तक हमारी आवाज़ जा रही है और आपका संदेश हमारे स्टूडियो तक पहुंच गया है। देखिए, अनिल मोहन, अनिल मोहन पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, उषा मोहन, टेल्लू नायक, मधु नायक। अनिल जी, देखिए, जब भी हमें आपका प्रोग्राम मिलता है ना, एक सीधा तौर पर आपका नाम होता है, फिल्म का नाम दिख देते हैं। देखिए, इस तरह से तो जीवन नहीं चलेगा ना, नीरस हो जाता है। आपकी अपनी बातें, कुछ शेर, कुछ शायरी, कुछ कविता, है ना। शनिवार है साहेब, थोड़ी सी छुट्टी, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मज़ा। और देखिए, और खूबसूरत गीत संगीत, इन सब का साथ हो तो दिन जो है ना, बहुत बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए, कहने की बात है और अनिल जी का संदेश भी आ गया। कहते हैं, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नहीं खड़ी है, जीते जाते हैं वो लोग जिनकी सोच बड़ी है। क्या बात है अनिल मोहन जी, क्या बात है।

हुस्न की वादियों में इश्क हमेशा हमेशा पलता रहेगा। अगर खूबसूरत बातें हो रही होंगी, सामने खूबसूरत लोग होंगे, अच्छे संदेश होंगे, तो फिर कैसे नहीं ये इश्क पलेगा।

संदेश मिला है हमें बागपत उत्तर प्रदेश से। संजय ठींगिया, नमन ठींगिया, अपार ठींगिया, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शानदार गीत हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण सिंह का हमें संदेश मिल चुका है गांव लोहार ठाकुरवाला से। राजदीप, गुरनूर, गुरनुआल, अविराज और उनके साथी उनके साथ में हैं। अगला संदेश हमें इस समय मिल रहा है अनवर साबरी साहब का। प्रसारक जी, प्यार भरा आदाब, आगे नमस्कार। अनवर साबरी, शन्नो साबरी, दाऊद सराय सहारनपुर से, मुदस्सर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी उनके साथ हैं। लालगिरी का संदेश हमें मिल चुका है, कहते हैं कि फिल्म दो रास्ते का गीत सुनवाएं। सुनवाएंगे, ज़रूर सुनवाएंगे। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हेमलता, खिना, हर्षित और खुशी इनके साथ में है। अंकित कांगड़ा का हमें संदेश मिल चुका है हरियाणा से। मोनी, प्रिंस और सीताराम और साहिल कांगड़ा उनके साथ हैं। भारत भूषण का संदेश हमें है और क्या खूब बात, देखते हैं, खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उसके मकान की। बहुत खूब, आगे लिखते हैं, खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर

फिर उसके मकान की सभी धर्मों के लोग यहाँ खुलूस व अखलाक से रहते हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ खुलूस व अखलाक से रहते हैं, यही तो खासियत है हमारे हिंदुस्तान की। क्या बात है भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव जी, दिव्येंदु भूषण जी, संस्कृति जी, पौरुष जी, बहुत ही सुंदर संदेश आपने हमें लिखकर भेजा है। कहाँ से भेजा है? व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। देखिए इसी तरह के संदेश अगर आते हैं तो हमें भी मज़ा आता है इस प्रोग्राम को करने पर, ताकि हम आपसे जुड़ चुके। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु आसु, अर्णव, सत्यमानंद, ये पाकुड़ झारखंड से है, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत और कुड्डी भगत का हमें संदेश मिल चुका है, रविंद्र सिंह, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, आपका भी हर पल खुशियों से भरा हो, किसी भी फरमाइश में या किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको छोड़ दें? रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंदर कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, टैगोर गार्डन दिल्ली से। अनवर साबरी साहब का हमने, रवि कुमार का हमें संदेश मिला है, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से। रवि, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और उनके बहुत बहुत बहुत सारे साथी। और एक और संदेश हमें, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया कहाँ गया, आप भी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, फिर लगातार इतने सारे संदेश आए और उसके बाद वो संदेश कहीं खो गया। फारूक अली खान साहब का संदेश मुझे दिख चुका है, आपके सबके पसंद के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत एक मैंने क्यों किया है और उम्मीद है कि ये गीत आपको पसंद भी आएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे बात कहना चाहता हूँ, वो ये, तो एक शाम मेरे पास भी आ जाना, तो एक शाम मेरे पास भी आ जाना, चाहे अपने दिल का सारा बोझ साथ लाना, बैठकर सुनेंगे तेरी हर अधूरी कहानी, बैठकर सुनेंगे तेरी हर अधूरी कहानी, चाहे आंखों में छिपा कोई दर्द साथ लाना, कुछ लम्हे चुरा लेंगे इस भागती दुनिया से, चाहे वक्त की कमी का बहाना साथ लाना, हम मुस्कुरा देंगे तेरी खामोशियों पर, चाहे होठों पर हजार शिकवे लाना, और आखिर में तू बस आना एक बार बेफिक्र होकर, तू बस आना एक बार बेफिक्र होकर, चाहे अपने सवाल मेरे नाम लिख जाना। खूबसूरत संदेश के साथ खूबसूरत गीत आप सबके लिए, सुन साहिबा सुन।

सुन साहिबा सुन, तू भी मुझे चुन, है ना। और आप हमें चुन रहे हैं ना कितने खूबसूरत संदेशों के साथ। जिला मुरादाबाद से खूबसूरत सा संदेश है, बहुत सारे गुलाब के फूल बने हैं। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, कितने सारे नाम हैं। देखिए एक भी नाम हमने नहीं छोड़ा ना। संजय साहू पोटिया का संदेश हमें मिला है, पोटिया कला दुर्ग से। संजय, सुजाता, शशांक साहू और सीमा साहू, सप्रेम नमस्कार के साथ हमें संदेश भेजा है। हरजिंदर सिंह शिंदे का हमें संदेश मिला है, गांव नथाना पंजाब से। हरजिंदर सिंह शिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का इन्होंने भी फरमाइश की है। अंकित कांगड़ा का हमें संदेश मिल रहा है और इनका संदेश हम पहले भी पढ़ चुके। देखिए इतने सारे आप हमें संदेश भेजेंगे ना तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे। निसार, देखिए इनका संदेश हमने नहीं पढ़ा था। निसार अली का, प्रसारक जी प्यार भरा आदाब नमस्कार, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। निसार सलमानी, नौशद सलमानी, निसार जी अगर इस समय आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उत्तराखंड में इस समय क्या मौसम है जल्दी से हमें लिख भेजिए, हम अपने संदेश में आपके संदेश को शामिल करेंगे। और अगर मैं उत्तराखंड आना चाहूँ तो हम क्या क्या घूम सकते हैं। मेरे जैसे बहुत से लोग गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी हैं, दिल्ली में बहुत गर्मी है, उत्तराखंड आना तो बनता ही है। दिग्दर्शन गौर का संदेश हमें मिला है, गाँव शोभापुर मेरठ कैंट से। साथ में कविता गौर का नाम मुझे नज़र आ रहा है। एक और संदेश है जिसे देखिए मैं बार बार संदेश खो जाता है। आसमा खातून जी का संदेश हमें मिल चुका है, मगरपारा बिलासपुर से इनका संदेश हमने शामिल करी है। मसरूर हसन का संदेश हमें मिल चुका है। अनिल मोहन और ताज मोहब्बत जी का, जो मोहम्मद साहब था उनका संदेश कहीं खो गया था। प्रसारक जी नमस्कार, देखिए उनका नाम भी हमने शामिल कर लिया है, लिखना है इन्होंने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, आपका भी हमने संदेश शामिल कर लिया है। कुणाल सिंह का संदेश मुझे इस समय मिल रहा है और दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिश मेहरा और इनके साथी का। कहते हैं कि नज़र लग जाती है इश्क को, नज़र लग जाती है इश्क को, बताया न कर और लाख समझाया है तुझे, शक करता है जमाना, गुजरती है पास से तो मुस्कुराया न कर, ताक में बैठा है जमाना कोई सुराग मिले, तू रहा चलती भी फूल उठाया न कर।

सैफुद्दीन बिहार से हमें सैफुद्दीन अंसारी का हमें सरफुद्दीन अंसारी, क्षमा कीजिए, सरफुद्दीन अंसारी इनका नाम है। सरफुद्दीन अंसारी का संदेश हमें मिल चुका है, साथ में फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रसमेश साहू हैं बक्सर।

मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक और नाम नजर आ रहा है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल जयवीर और डॉक्टर अमनदीप का। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने हमें संदेश लिख के भेजा है। देखिए, आप अपने नाम लिखकर भेजते हैं, हम बार बार कहते हैं संदेश। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई कविता नहीं है? क्या कोई शेर नहीं है? क्या कोई ऐसी बात नहीं है जो खूबसूरत सी हो? चलिए, कोई बुरी बात भी हो वो भी तो शेयर कर सकते हैं, हम उसको खूबसूरत बनाकर पेश कर देंगे। उत्तम सिंह जंघेल, इनका संदेश हमें मिला है, मॉरिस जंघेल कोहाका भिलाई से, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदी जंघेल का। वहीं अगला संदेश है धमदा ग्राम सुखरी कला से, इनका मेल हमें मिल चुका है, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, इनका खूबसूरत सा मैसेज हमें मिला है। रविंद्र मोहनदास का हमें संदेश मिला है, समय अपनी स्क्रीन पर जो मैं देख रहा हूँ। किशन वांजनानी का भी हमें संदेश मिला है, कहाँ से लिखा है ये नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इन्होंने ये लिखा है आपकी पसंद में हमारा नाम शामिल कीजिए। मुकेश कश्यप का संदेश हमें मिल चुका है, इनके बहुत सारे साथी इनके साथ हैं और आप सबकी पसंद पर एक और बेहतरीन खूबसूरत सा गीत मैं आपको सुनवाऊंगा। उम्मीद है कि ये गीत आपको बेहद बेहद बेहद पसंद होगा, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क साहिब।

लगातार संदेश हमारे पास आ रखे हैं, लगातार खूबसूरत कविताएं, खूबसूरत शायरी हमारे पास आ रखी है। ये शायरी ये चंदलाई ने हमें लिख के भेजी है, जीशान अली ने। कहते हैं कि रेडियो की दुनिया में जो दिलों को छू जाए, हर लफ्ज में अपनापन और हर पल मुस्कान लाए। आकाशवाणी के कार्यक्रम यूं ही महकते रहें, ज्ञान मनोरंजन और प्रेम के दीप सदा जलाते रहें। बहुत सुंदर जीशान साहब। आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम श्रोताओं के दिल को छू लेने वाले होते हैं। बेहतरीन प्रस्तुति, मधुर आवाजें और उपयोगी जानकारी हर कार्यक्रम को खास बना देती हैं। सभी उद्घोषकों और निर्माताओं को समर्पण सराहनीय और कामना करते हैं कि आकाशवाणी यूं ही अपने उत्कृष्ट प्रसारणों से हमारा मार्गदर्शन करता रहे। लगातार पिछले 90 सालों से जीशान अली साहब आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों से आपके साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान मनोरंजन बहुत कुछ है हमारे पास, हमें सुनते रहिए। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आपको सिर्फ अपने रेडियो सेट की या अपने मोबाइल की आवाज़ को तेज़ करना होता है और फिर आपके कानों तक हमारी आवाज़ और आपके पसंद के गीत पहुँच ही जाते हैं, है ना। हम हमेशा हमेशा आपसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे अलग कभी हुए ही नहीं हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी हैं, साथ में इमरान शेख हैं। वहीं करुला मुरादाबाद से अयूब खान और ईरम गुड़िया हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश, और देखिए हमारी आवाज़ भी भर आई है इतने खूबसूरत संदेश के साथ। आगे खत हमें मिला है, खत देखिए, खत भी जबान पर आ जाता है। रूपेश संघाई ने हमें भेजा है, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी से, महाराष्ट्र से रूपेश और महेश संघई, इनका संदेश हमें मिल चुका है। कार्यक्रम बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है, चलते चलते मैं यहाँ से अमीना तक खान, इनका संदेश मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, गांव की टोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी और मोहम्मद बेगम, इन्होंने हमें संदेश लिख के भेजा है। उम्मीद है अगली बार जब हम इस प्रोग्राम को करेंगे और आप इस कार्यक्रम को सुनेंगी तो अपने मेल अपने संदेश हमें आप बहुत जल्द पहले ही भेज देंगी, ताकि हम कार्यक्रम के अंत से पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपका नाम पढ़ें। कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है, मुझे यानी अपने दोस्त नवीन सक्सेना को अब आप इजाज़त दे सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि शायद ही मैंने किसी का नाम छोड़ा होगा, छूट गया तो जनाब माफ़ी। और काश मुझे माफ़ी का कोई खूबसूरत सा शेर याद आता, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, अगली बार आपके संदेश को मैं फिर शामिल कर लूँगा। और इसी उम्मीद के साथ, इस खूबसूरत गीत के साथ, आपका ये दोस्त नवीन आपको छोड़े जा रहा है। सुनिए, एंजॉय कीजिए और आकाशवाणी को लगातार यूं ही सुनते रहिए और यूं ही प्रेम देते रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 11 बजने को हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक

में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे सबरस कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं। अब वक्त है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम सुरमंजरी में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आमीन खान का गायन। आप सुनेंगे राग मियां की तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे राग मियां की तोड़ी में ये ख्याल। कलाकार थे अमीन खान। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम सुरमंजरी अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर 12 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार

0: तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has left for France and Slovakia for his 6-day visit. During his visit, Prime Minister Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a 2-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Pellegrini and Prime Minister Fico in Bratislava. Prime Minister Modi today said that India's youth are making their mark across various sectors, from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi added that today, India is among the world's leading startup destinations and many of these success stories are being scripted as Yuva Shakti, and that too from smaller towns and villages. President Draupadi Murmu today attended the passing out parade at the Indian Military Academy or IMA in Dehradun, Uttarakhand. This year's passing out parade was historic, as for the first time, women cadets passed out alongside gentlemen cadets from the academy. Addressing the grand ceremony, President Murmu said that she is especially delighted to see 9 women cadets. She further said that it is not only a milestone in the history of India's defence forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led

0: London. घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट सिमरन कौर,
1: और मैं हूं आज आपके साथ प्रतिभा।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और सिमरन, देखो अपने श्रोताओं को हम ये बता दें कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर।
0: और प्रतिभा, देखो घर आंगन का जब शो शुरू होता है तो हमें याद आता है कि देखो आज फिर हमने अपने दोस्तों अपने श्रोताओं से मिलना है, और मिलने की जब बात होती है तो बहुत दिनों के बाद मिलना बहुत ही अच्छा लगता है किसी से, और ये मुलाकातें इतनी अच्छी लगती है ना कि मन करता है हम

0: मिलते ही रहे अपने दोस्तों
1: बिल्कुल
0: से।
1: बिल्कुल ठीक कहा सिमरन तुमने। देखो सही मानों में घर आंगन जो कार्यक्रम है वो उस कड़ी की तरह है जो हमें हमारे श्रोताओं के साथ हमें जोड़ कर रखा है, हमें बांधे हुए है। ये कड़ी जो है वो हर दिन हर प्रोग्राम के साथ और
0: और मजबूत,
1: मजबूत होती जाती
0: मैं भी यही
1: है
0: कहने
1: ना।
0: वाली थी, क्योंकि और मजबूत के साथ साथ ये भी लगता है कि हमारा और हमारे दोस्तों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है, और यूं ही ये रिश्ता चलता रहे हम ऐसी कामना करते हैं हमेशा के लिए, है ना।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि आवाज़ से जुड़ा हुआ हमारा रिश्ता और उनके मैसेजेस से जुड़ा हुआ हमारा रिश्ता, तो दोनों
1: बिल्कुल
0: से हम ये चाहते हैं कि रिश्ता यूं ही चलता रहे, हमेशा बरकरार रहे।
1: हाँ। देखो ये दो तरफा संवाद है, हम यहाँ से संवाद आवाज के जरिए होता है और वहां से संवाद जो होता है वो प्रतिक्रियाओं के जरिए होता है
0: और
1: ना।
0: प्रतिभा देखो, कई बार जब वो मिलने की बात जब मैं करती हूँ, हम किसी दोस्त से भी बीच में दोस्त से मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, तो ये मुलाकात हमें हमेशा याद रहती है कि हम हमेशा अपने दोस्तों से मिलते रहें, याद करते हैं। और देखो मिलने से क्या होता है कि मन भी बहुत खुश होता है और ज़िंदगी में जो तनाव है आपका, स्ट्रेस है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो
1: बिल्कुल
0: इससे एक साथ जुड़े रहिए, जुड़ने से एक दूसरे के साथ
1: हाँ
0: संबंध बना रहता है
1: संबंध
0: और अच्छा भी लगता है, और आप अपने आप को एक रिलीफ, जैसे कहते हैं ना, सुकून भरी ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: भाई देखो जैसे सिमरन हमें इंतजार रहता है ना कि प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे ही हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो श्रोता हैं उनको भी बहुत मतलब उससे इंतजार रहता है हमारा कि कार्यक्रम घर आंगन शुरू होने वाला है और वो अपना रेडियो सेट अपना मोबाइल फोन ऑन कर कर बैठ जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: हाँ।
1: तो
0: और देखो हम अब आगे और ढेर सारी जानकारियों के साथ अपने दोस्तों के साथ जुड़ेंगे, तो सबसे पहले एक खूबसूरत सा गीत हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं।
1: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी लवर्स।
1: और देखो आज 13 जून है, तो आज 13 जून को कोई खास बात भी है
0: बिल्कुल
1: और
0: हाँ
1: खास दिन
0: बिल्कुल,
1: भी
0: आज
1: है।
0: खास दिन भी है क्योंकि आज के दिन मनाया जाता है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है ना सिमरन, वो पीड़ित लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित करके 13 जून को इस दिवस के रूप में स्थापित किया था और इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था।
0: और देखो हर वर्ष जो ये जो दिन है वो एक थीम के तहत मनाया जाता है, और इस बार अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो 2026 है उसका विषय है अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा के रंगों का उत्सव मनाना।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और एक ये अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक जो है रंग द्रव्य कम या नहीं बनता और इसका असर त्वचा, बालों और आंखों के रंग पर पड़ सकता है। कई लोगों को दृष्टि से जुड़ी चुनौतियां भी हो सकती हैं।
0: और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्बिनिज्म जो है वो कोई संक्रामक बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी व्यक्ति की क्षमता या प्रतिभा को सीमित करता है। सही जानकारी, स्वास्थ्य देखभाल, आंखों की सुरक्षा और सामाजिक सहयोग से एल्बिनिज्म वाले लोग शिक्षा, खेल, कला और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और ये जो दिवस है वो जागरूकता दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें भेदभाव नहीं बल्कि सम्मान और समान अवसर को बढ़ावा देना है।
0: और एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव रखने का ये संदेश देता है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए ये दिन प्रोत्साहित भी करता है।
1: बिल्कुल। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार में की आवाज में गीत, फिल्म है थोड़ी सी देर है।

0: और सिमरन, देखो, योग जीवन जीने की और जीवन को साधने की एक ऐसी कला है जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में किया है, और उन्होंने अष्टांग योग को सर्वोपरि बताया है।
1: बिल्कुल
0: अष्टांग योग एक गतिशील और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण योग शैली
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: है ना?
1: और देखो, योग की जब बात की जाती है तो मुझे याद आता है कि योग करने के बहुत ढेर सारे फायदे होते हैं, और योग करना भी देखो बहुत ज़रूरी है जीवन में। ये नहीं कि हम सो रहे हैं और हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सुबह की पहली किरण के साथ एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और महसूस कीजिए कि ये है योग। पर योग सिर्फ एक दिन का नहीं, रोज जीवन जीने का तरीका है, यही है योग की शुरुआत।
0: बिल्कुल। और देखो, हम आज अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, अपने श्रोताओं को ये बता दें कि अष्टांग योग का अर्थ है योग के 8 अंग। ये योग की वह पद्धति है जिसका उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं, बल्कि मन, व्यवहार और जीवन में संतुलन लाना भी है।
1: बिल्कुल
0: और देखो, अष्टांग योग के 8 नियम हैं, अंग हैं, जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
1: और
0: ध्यान और
1: समाधि।
0: समाधि, है ना?
1: और इन नियमों के द्वारा व्यक्ति जीवन में सही व्यवहार, अनुशासन सीखता है, साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ सांस पर भी नियंत्रण का मार्ग सिखाता है ये योग।
0: बिल्कुल। और देखो, अष्टांग योग इंद्रियों के नियंत्रण में भी सहायक है। मन को ध्यान द्वारा स्थिर कर व्यक्ति एकाग्रता की ओर अग्रसर होता है, और व्यक्ति चेतना की उस अवस्था में पहुंचता है।

0: जिसके द्वारा शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं।
1: और देखो प्रतिभा, देखो तनाव और बेचैनी कम करने में मदद करता है योग, और अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाता है, ध्यान और एकाग्रता बेहतर कर स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने में सहायक होता है, और साथ में रिश्तों और व्यवहार में सकारात्मक भी लाता है।
0: बिल्कुल। और देखो तो अष्टांग योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है जो स्वस्थ तन और संतुलित मन और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी हर जाई।
1: और प्रतिभा देखो, अभी तुमने योग की बात की, योग से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, योग करने के बाद स्वास्थ्य कितना अच्छा हो जाता है,
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद आप नींद कितनी अच्छी लेते हैं, गहरी नींद और अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य की निशानी है।
0: बिल्कुल। और
1: लेकिन
0: देखो,
1: नींद आने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद लेना बेहतर है, बेहतर है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन गई है। लोग काम, तनाव, सोशल मीडिया पर देर रात तक मोबाइल चलाने की वजह से अपनी नींद को नज़रअंदाज कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। और देखो, मतलब लोग ये जानते भी हैं कि नींद की कमी का सबसे गहरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, इससे एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता दोनों ही कमज़ोर पड़ जाती हैं।
1: और एक रिसर्च के अनुसार नींद के दौरान दिमाग दिन भर यादों के प्रोसेस करता रहता है और उन्हें लंबे समय तक याद रखने लायक बनाता है और आपकी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है।
0: और देखो, नींद की कमी से शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और नींद की कमी से डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।
1: और जब दिमाग को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो उसकी रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति सही और गलत में फर्क करने में भी मुश्किल हो जाती है उसको।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो सिमरन। देखो, एक रात की जो खराब नींद जो है ना, वो क्या करती है कि दिमाग में टाउ प्रोटीन का स्तर बढ़ा सकती है, यानी नींद की कमी केवल थकान ही नहीं बल्कि मस्तिष्क रोगों का कारण भी बन सकती है।
1: और देखो, अच्छी नींद के लिए कुछ आसान से टिप्स भी होते हैं। रोज एक तय समय पर सोएं, उठें, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं।
0: और देखो, इनसे तो दूरी बनाए बनाए साथ ही साथ कैफीन या निकोटीन का सेवन जो है वो रात में बिल्कुल ना करें, और कमरे का वातावरण शांत और आरामदायक रखें।
1: और सोने से पहले कोई रिलैक्सिंग सा म्यूजिक और मेडिटेशन भी कर सकते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: और देखो, नींद सिर्फ जो है शरीर को आराम देने का जरिया नहीं है बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल बैलेंस और क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए भी बेहद ज़रूरी है।
1: और जो लोग रोज 7 और 8 घंटे की नींद लेते हैं वो ज़्यादा फोकस्ड, खुश और ऊर्जावान रहते हैं। और जब अच्छी नींद आप लेंगे तो अच्छे सपने भी आएंगे, तो
0: बिल्कुल।
1: अच्छा भी लगेगा आपको। तो अच्छी नींद भी लीजिए और अच्छे सपने भी देखिए।

0: प्रतिभा देखो, अब कुछ बात करते हैं कुछ व्यवसाय की, छोटे से लघु उद्योग की जो हम महिलाओं के लिए स्पेशल खास तौर पर लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे एक छोटे लेकिन लाभदायक व्यवसाय की, जिसमें हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। हमारा विषय है आज का सुगंधित मोमबत्ती निर्माण स्वयं सहायता समूह।
1: और देखो, आज के समय में सुगंधित मोमबत्तियों की मांग लगातार बढ़ रही है और घरों की सजावट, पूजा पाठ, त्योहारों, उपहारों और विभिन्न आयोजनों में इनका व्यापक उपयोग होता है। कम लागत में शुरू होने वाला यह व्यवसाय स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार और आय का अच्छा स्रोत भी बन रहा है।
0: और देखो, स्वयं सहायता समूह और आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है।
1: और देखो, जब कुछ महिलाएं मिलकर नियमित बचत करती हैं और सामूहिक रूप से कोई व्यवसाय शुरू करती हैं तो उनके लिए सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
0: और सुगंधित मोमबत्ती निर्माण ऐसा ही एक व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और सीमित संसाधनों में साथ आप शुरू भी कर सकते हैं।
1: तो अपने श्रोताओं को बता दें, जैसे सभी जानते हैं कि सुगंधित मोमबत्ती क्या है। भाई, सुगंधित मोमबत्ती ऐसी मोमबत्ती होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की खुशबूदार सुगंध मिलाई जाती है और जब ये मोमबत्ती जलती है तो उसकी सुगंध पूरे वातावरण को महका
0: और
1: भी देती
0: बहुत ही
1: है।
0: अच्छी लगती है उनकी खुशबुएं, जैसे कि आज बाजार में आप लेवेंडर, गुलाब, चमेली, चंदन, वनीला, लेमन ग्रास और कई अन्य सुगंधों वाली मोमबत्तियां उपलब्ध हैं, वो ले सकते हैं आप जाके।
1: और देखो, इनकी जो मांग है विशेष रूप से त्योहारों, विवाह समारोह, होटल उद्योग, स्पा सेंटर और उपहार बाजार में अधिक रहती है।
0: और एक बात, मोमबत्ती निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जो होती है, अगर सुगंधित मोमबत्ती बनाने के लिए अगर आपने बनानी है या सीखनी है, तो उसके लिए क्या-क्या चीजें जरूरत की हैं वो हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को।
1: हाँ, वो है देखो, वो है पैराफिन वैक्स या सोया वैक्स, मोमबत्ती की बाती, सुगंधित तेल, रंग, सांचे या कांच के जार, वैक्स पिघालने के लिए बर्तन और पैकेजिंग सामग्री। और इन सभी सामग्रियों को स्थानीय बाजार या ऑनलाइन माध्यम से आप आसानी से खरीद सकते हैं।
0: और देखो, मोमबत्ती बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले वैक्स को गर्म करके पिघलाया जाता है। इसके बाद उसमें मनचाही सुगंध और रंग मिलाया जाता है। फिर सांचे या जार में पहले से बाती लगाकर तैयार मिश्रण को सावधानी पूर्वक डाला जाता है और कुछ घंटों तक ठंडा होने के बाद मोमबत्ती को पूरी तरह से उसमें, वो जो सांचे में डालते हैं, उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है।
1: और देखो, इसके तैयार होने के बाद इसके जो आकर्षक पैकेजिंग होती है उसको करके उसे बाजार में बिक्री के लिए इसको भेजा जा सकता है और रोजगार और आय के अवसर। सुगंधित मोमबत्ती निर्माण जो है, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे घर में भी संचालित किया जा सकता है।
0: और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिलकर उत्पादन बढ़ा सकती हैं और बड़े ऑर्डर भी पूरे कर सकती हैं।
1: स्थानीय बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से इन उत्पादों की बिक्री

0: आराम से की जा सकती
1: और
0: है।
1: देखो वैसे देखा जाए तो त्योहारों के मौसम में भी इसकी कई जो मांग है कई गुना बढ़ जाती है, जिसमें
0: बिल्कुल।
1: अच्छी आय भी प्राप्त हो सकती है अगर हम ये काम करें तो, है ना, या कोई भी अगर इस काम को करना चाहे तो।
0: और देखो डिजिटल युग में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, आज इतने अच्छे अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं छोटे उद्यमों के लिए, जो उनके लिए नए रोज इन नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: और स्वयं सहायता समूह सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं और कई तरह से डिजिटल भुगतान की सुविधा के कारोबार को और भी आसान बनाया जा सकता है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: हाँ बिल्कुल। देखो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम जो है ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। सुगंधित मोमबत्तियों का जो निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है।
1: और जब महिलाएं अपनी मेहनत से आय अर्जित करती हैं तो परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है, वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान देने लगती हैं।
0: और सही कहा जाए सिमरन, तो यही आत्मनिर्भर नारी सशक्तिकरण, मतलब नारी सशक्तिकरण वाली नारी की जो है वो वास्तविक पहचान है।
1: और एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके गांव या क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह सक्रिय है तो आप उससे जुड़कर कई प्रकार के लघु उद्योग की शुरुआत भी कर सकती हैं, है ना,
0: बिल्कुल। और
1: और
0: देखो,
1: छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव भी बनती है।
0: ये जो सामूहिक प्रयास, मेहनत और सही दिशा में काम करके महिलाएं आर्थिक सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं।
1: और देखो जैसे सुगंधित मोमबत्ती निर्माण से लघु उद्योग हैं तो ये साबित करते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास से आत्मनिर्भरता भी हासिल की जा सकती है
0: देखो
1: ना।
0: जो ये जो समूह होते हैं स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को
1: हाँ
0: ना केवल आर्थिक मजबूती दे रहे हैं बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी दिला रहे हैं।

0: हरे रामा हरे कृष्णा। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। प्रतिमा, मैं ये सोच रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारा मन घर में नहीं लगता जब हम अकेले होते हैं, है ना। और कई लोग ऐसे अकेले होते हैं जिनका मन घर में नहीं लगता, और अकेलेपन को मिटाने के लिए सबसे अच्छा आपका जो अगर साथी है, सबसे अच्छा अगर आपका साथ है, वो प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं।
1: बिल्कुल।
0: उनके साथ आपका मन लग सकता है और आपका जीवन भी सुकून भरा बीत सकता है, और आप खुशी महसूस ऐसी करेंगे कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा,
1: बिल्कुल ठीक कहा
0: है
1: सिमरन
0: ना,
1: तुमने। हाँ
0: है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे पालतू हमारे जो जानवर हैं, हमारे पशु पक्षी के साथ अगर समय बिताना, जिसे हम पेट थेरेपी या एनिमल असिस्टेड थेरेपी भी कहा जाता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर खुशी प्रदान करना है। तो पशु पक्षी तनाव कम करने वाले हार्मोन को बढ़ाते हैं और ऑक्सीटोनिस टोसिन और डोपामाइन जैसे फील गुड
1: हाँ
0: रसायनों को बढ़ावा भी देते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: तुमने ठीक कहा। देखो जो हमारे पालतू जानवर होते हैं इनके साथ जब हम रहते हैं तो बहुत हमें, जैसे हमने भी बात की कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि होता क्या है कि जो पालतू पशु पक्षी है अगर उनको गले लगाते हैं, उन्हें सहलाते हैं, तो इसे तनाव और एंजाइटी तुरंत कम हो जाती है। और अपने आप जानवर से, अपने पक्षी से अगर आप, क्योंकि अमूमन हम बात भी करते हैं उनसे, है ना, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो गाना भी गाते हैं, तो वो मानसिक तनाव को दूर करता है और हमारे अकेलेपन की भावना को कम करता है।
0: और देखो, जैसे साथ में खेलें उनके साथ, जैसे ना टग ऑफ वॉर या बॉल फेंकने जैसे खेल खेलें जिसमें एंड्रोफिन बढ़ता है और मूड भी बेहतर हो जाता है। रोजाना सैर पर ले जाएं अपने पशु पक्षियों को घुमाने के लिए, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मूड को भी बेहतर बनाएंगे।
1: बिल्कुल। और देखो घर में जब ये हमारे जो पालतू जानवर रहते हैं तो उनके साथ दौड़ने भागने खेलने जैसी कुछ हम उनके लिए एक्टिविटी कराते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में भी काफ़ी हरकत होती है, हम उनके साथ भागते दौड़ते हैं, तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।
0: और जैसे खाना खिलाने, टहलाने, जैसे खेलने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लें। ये ना हो कि कई बार होता है ना कि उसको स्वस्थ रखता है, अगर आपके समय निश्चित हो तो आपके जो पशु पक्षी वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसके लिए आपको भी एक अनुशासन रहित काम और दिनचर्या रखनी पड़ती है।
1: बिल्कुल। देखो मतलब आप अपने जो जानवर है, आपका जो घर में पालतू जानवर है, उसके साथ आप एक एक रूटीन के साथ काम करते हैं, तो उसकी रूटीन के साथ, उस अनुशासन के साथ आपका जीवन, आपकी जो जीवन शैली है, वो भी अनुशासित हो जाती है ना।
0: बिल्कुल।
1: और शोध के अनुसार ये भी पता चला है कि 10 मिनट तक किसी भी पालतू जानवर के साथ समय बिताने से दर्द और तनाव में काफ़ी कमी आ जाती
0: कितनी अच्छी बात है ना
1: है
0: ये।
1: ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है सिमरन कि इतने ये वफादार साथी होते हैं ना, जो सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में भी मदद करते हैं।
0: और पालतू जानवर हमें अधिक दयालु और संवेदनशील बनाते हैं, जिससे इमोशनल जो इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती है।
1: बिल्कुल
0: और खास तौर पर अच्छी देखभाल, भोजन, स्वास्थ्य, प्यार करना, उनका जो है ये उद्देश्य को बढ़ाता है, भावना देता है हमें, और खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पशु पक्षियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
1: बिल्कुल। और देखो अगर किसी ने अपने घर में पालतू पशु पक्षी नहीं भी रखा हुआ है, तो आप अपने जो सराउंडिंग में, आपके सोशल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं, तो आप पानी रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं, आप उन्हें खाता हुआ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो खुशी का एहसास होगा।

0: और देखो सिमरन, आज का जो दौर है वो तकनीक और विज्ञान का है, और ज़िंदगी देखो कितनी आसान हो गई है, लेकिन हमने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के चक्कर में, है ना, किताबों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और किताबों के पन्नों से आती खुशबू, मुड़े हुए पन्ने और किताबों के बीच रखे सूखे फूल, बुक मार्क्स कहीं ना कहीं अपने वजूद को समेटे घर के किसी कोने में शेल्फ में पड़े, यानी कि किताबें
1: लेकिन
0: पढ़ने की आदत छूट गई है।
1: लेकिन किताबें सोच को गहराई देती हैं, कल्पना शक्ति को जी उड़ान देती हैं, पंख देती हैं, और किताबें एकाग्रता, हमारी भाषा शैली, सोच क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
0: बिल्कुल, देखो लोगों ने किताबों की ओर वापसी शुरू कर दी है। सही मायनों में किताबें इंसान की शांत और वफादार दोस्त होती हैं, और देखो साथ ही साथ किताबें मानसिक और व्यक्तिगत विकास की कुंजी भी हैं, जो व्यक्ति को गहरी और सुदृढ़ पहचान देती है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: अगर आप किताबें पढ़ने की आदत से आगे आ गए हैं, वो आदत छूट गई है, तो आप दोबारा से इन किताबों को अपना दोस्त बना लें। शुरुआत धीरे धीरे होगी, लेकिन परिणाम जो होगा वो सकारात्मक और काफी गहरा होगा, है ना।
1: बिल्कुल
0: एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा और समय का बेहतर उपयोग भी होगा।

0: और प्रतिभा देखो अब घड़ी इशारा कर रही कि हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने को है, तो हम अपने श्रोताओं से अपने दोस्तों से फिर मिलेंगे घर आंगन के शो में, और इसी के साथ लेते हैं अनुमति
1: तो मुझे यानी प्रतिभा को
0: और सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार,
1: नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का

0: अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a 6-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a 2-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Pellegrini and Prime Minister Fico in Bratislava. Prime Minister Modi says India's youth are making their mark across various sectors from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi emphasized that India is among the world's leading startup destinations and many of these success stories are being scripted Yuva Shakti and that too from smaller towns and villages. He also lauded the youth for bringing immense glory to the nation in the field of sports and for contributing to various areas that will shape the future of India and the world. President Draupadi Murmu today attended the passing out parade at the Indian Military Academy in Dehradun, Uttarakhand. This year's passing out parade was historic as for the first time, women cadets passed out alongside gentlemen cadets from the academy. Addressing the grand ceremony, President Murmu said she is especially delighted to see 9 women cadets. She further said it is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development.
2: I am especially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong

0: बस तुम रहते हो।
1: श्रोताओं, फिल्म धड़कन को 11 अगस्त साल 2000 में विश्व स्तर पर 250 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। ये एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई और वैश्विक बाजारों में 26 करोड़ की कमाई की। श्रोताओं, ये फिल्म एमिली ब्रॉन्टे की रचना वदरिंग हाइट्स का एक रूपांतरित संस्करण है।

श्रोताओं, बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू ये हमारे साथ जुड़े हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। गंजूडवारा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता समशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान। श्रोताओं, अगर बात करें फिल्म धड़कन के संगीत की तो इसे संगीत नदीम श्रवण की जोड़ी ने दिया है और बोल समीर के हैं। इस फिल्म के सारे गीत सुपरहिट साबित हुए और साल 2001 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में अलका याग्निक को गीत दिल ने ये कहा है दिल से के लिए पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा साल 2001 में सुनील शेट्टी ने भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार जीता और इस फिल्म के ज़्यादातर किरदार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेटेड रहे।

इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। गुरमीत सिंह मीता ये हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से, साथ में अशोक कुमार सहगल और ये जुड़े हमारे साथ शालीमार बाग से। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ जुड़े हैं

सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा। संबलपुर कांकर से हमारे साथ जुड़े हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। श्रोताओं, अगर धड़कन फिल्म की कहानी की बात करें तो संक्षेप में, फिल्म की कहानी अंजलि यानी शिल्पा शेट्टी और देव यानी सुनील शेट्टी के सच्चे प्रेम से शुरू होती है, लेकिन अंजलि का अमीर परिवार उन दोनों की शादी के खिलाफ होते हैं और परिवार के दबाव में आकर अंजलि देव से अलग हो जाती है और एक अमीर दयालु व्यक्ति राम यानी अक्षय कुमार से शादी कर लेती है। राम अंजलि को बहुत प्यार करता है और उसे अपनी पुरानी यादों से बाहर निकालने का पूरा मौका देता है। कुछ सालों बाद जब अंजलि अपने सुखी वैवाहिक जीवन में राम रम जाती है, तब देव एक सफल व्यवसायी बनकर वापस लौटता है और अंजलि को वापस पाने की कोशिश करता है। कहानी के अंत में अंजलि अपने पति राम और उनके परिवार को चुनती है और देव भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। श्रोताओं, धड़कन फिल्म अपनी मजबूत प्रेम कहानी, दिल को छू लेने वाले संगीत और त्याग की भावनाओं के कारण बहुत भावनात्मक है। फिल्म प्रेम, कर्तव्य और क्षमा का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करती है।

श्रोताओं, धड़कन एक गहन प्रेम कहानी है और निर्देशक धर्मेश दर्शन ने इसे बखूबी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। इस फिल्म के द्वारा धर्मेश दर्शन कई जगहों पर दिल को छू लेने में कामयाब रहे हैं।

शुरुआती दृश्यों में विवाह गीत का सीक्वेंस, उससे पहले शर्मिला टैगोर के दृश्य और दूसरे भाग में सुनील शेट्टी के हिस्से का अभिनय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्देशक अपने काम में माहिर रहे, जिस कारण ये फिल्म हिट साबित हुई।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस ते स्लोवाकिया दे 6 दिना दौरे लई रवाना होए। प्रधानमंत्री ने कहा भारत दे नौजवान विज्ञान तकनालोजी पुलाड़ निर्माण ते ड्रोन वर्गे खेतरां च शानदार प्राप्तियां कर रहे ने। असम च अज सवेरे भारतीय हवाई सेना दा एक AN-32 जहाज हादसाग्रस्त हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज उत्तराखंड दे देहरादून च भारतीय सेना अकादमी विखे पासिंग आउट परेड च शिरकत कीती। कहा पहली बार महिला कैडटा दा पास आउट होना इतिहासक है। अते पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया वल्लों नवी दिल्ली च उपराष्ट्रपति ते केंद्रीय मंत्रियां नाल कई महत्वपूर्ण मीटिंगां। शासन, सभ्याचार, खेडां ते कानूनी बुनियादी ढांचे नाल संबंधित मामलियां ते कीती चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस ते स्लोवाकिया दे 6 दिना दौरे लई रवाना हो गए ने। प्रधानमंत्री अज शाम फ्रांस दे नीस पहुंचणगे। ए दौरा यूरोपियन यूनियन नाल अपनी व्यापक रणनीतिक भाईवाली नूं अगे वधाउण प्रति भारत दी वचनबद्धता नूं वी दोहराएगा। ए उन्हां दे फ्रांस ते स्लोवाकिया दे दौरे दी शुरुआत होवेगी। फ्रांस विच प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन च हिस्सा लैणगे अते दोवां देशां दरम्यान रणनीतिक सहयोग वधाउण लई दुवल्ली गल्लबात करनगे। अपने रवानगी समय बयान च श्री मोदी ने कहा कि फ्रांस रणनीतिक दृष्टिकोण तों भारत लई खास तौर महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत ते फ्रांस दरम्यान आर्थिक अते सभ्याचारक संबंधा नूं मजबूत करना है। श्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल इंडिया इनोवेट्स सम्मेलन का उदघाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समागम भारतीय स्टार्टअप्स नूं दुनिया के नाल जोड़ेगा। श्री मोदी कल नीस तो स्लोवाकिया के 2 दिन दौरे लिए रवाना होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इतिहासक दौरा दोवां मुल्कां दरम्यान संबंधा नूं वधाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा च स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पेलेग्रिनी प्रधानमंत्री फिको नाल मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यूरोपियन यूनियन नाल भारत की रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करेगा, जिसका स्लोवाकिया च इक महत्वपूर्ण मैंबर है। स्लोवाकिया तो बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाणगे, जिथे ओह इस महीने की 16-17 तरीक नूं G7 सम्मेलन च शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 विच भारत की मौजूदगी भारत के वधदे आलमी प्रभाव विच इसते भाईवालां दे विश्वास नूं प्रगटाउंदी है। दौरे की समाप्ति करते हुए प्रधानमंत्री मोदी 18 जून नूं पैरिस जाणगे। उन्हां भरोसा प्रगटाया कि यह दौरे यूरोप अते G7 दोवां नाल भारत के डूंघे संबंधा नूं होर मजबूत करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के नौजवान विज्ञान तकनालोजी पुलाड़ निर्माण सैमीकंडक्टर

0: ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 2,10,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਐ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਡਰੋਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਮ ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਕ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿਖੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨੀਤਿਕਾ ਤਿਆਗੀ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकाफती रिश्तों को तकवियत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस में एवियों में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातून कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेर कयादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीकी बहरिया की कार्रवाई पर अमरीका से सख्त एहतजाज किया है। कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय जहाजी मारे गए थे। भारत की फजाइया का AN-32 तैयारा आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल अपने पैगाम में जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के स्ट्रेटेजिक विजन में फ्रांस का खास मकाम है। जनाब मोदी ने कहा कि दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के दरमियान इकतसादी और सकाफती ताल्लुकात के फरोग पर खास तवज्जो दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमरा भारत इनोवेटिव का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि ये तारीखी तकरीब भारत फ्रांस की इख्तिरा के साल के पस मंज़र में मुनक़िद हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे भारत के सबसे ज़्यादा पुरअज़्म स्टार्टअप्स का आलमी सरमायाकारी से राबता कायम होगा और भारत के आला तालीम के इको निज़ाम से उभरने वाली इख्तिराआत में बड़े पैमाने पर रफ्तार पैदा होगी। इस तकरीब के बाद कल वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे के लिए नीस से स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि इस तारीखी दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में हुई पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज रहेगी। वजीर आजम ब्रैसिलावा में स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलिग्रिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी ने बताया कि इस दौरे से भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तेजी आएगी और स्लोवाकिया EU का एक अहम रुकन है। स्लोवाकिया के अपने दौरे के बाद जनाब मोदी इवियान फ्रांस जाएंगे, जहां वो इस महीने की 16 और 17 तारीख को G7 समिट में शिरकत करेंगे। बिलाखिर वजीर आजम का दौरा 18 जून को पेरिस में अख्ताम पजीर होगा, जहां वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमरा वीवा टेक 2026 में शिरकत करेंगे। अक्षित की रिपोर्ट के साथ मैं असगर अली।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 मुल्कों के दौरे के तहत आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 10:30 बजे वजीर आजम के वहां पहुंचने का इम्कान है। फ्रांस के दौरे के दौरान वजीर आजम एवियों में G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक तआवुन को मुस्तहकम करने के मकसद से दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। बाद में वो स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ अहम शोबों में फरोग के ताल्लुक से वहां के कायदीन سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم کی آمد سے قبل بھارتی برادری، اسٹارٹ اپس کے بانیوں اور

0: कारोबारी अफराद ने इस दौरे पर गर्मजोशी का इजहार किया है। तवक्को की जा रही है कि इस दौरे से भारत और यूरोप के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वसीतर तैयारियां की गई हैं और भारतीय बिरादरी उनसे मिलने की मुंतजर है।
1: भारत और फ्रांस के दरमियान अवामी सतह के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। तकरीबन 10,000 भारतीय तलबा फ्रांस में ज़ेर तालीम हैं, जिसे 2030 तक 30,000 तक पहुंचाने का हदफ है। फ्रांस ने भारतीय नौजवानों के लिए मुतअद्दिद नए मौक़े फराहम किए हैं, जिनमें 5 साल स्कैंगन वीज़ा और तालीम मुकम्मल करने के बाद 2 साल का वर्क परमिट और 18 से 35 साल की उम्र के नौजवानों के लिए यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शामिल है। आकाशवाणी से बात करते हुए फ्रांस में भारत के सफीर जनाब संजीव संगला ने कहा कि वजीर आजम का ये दौरा दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत की फौज ने आज अपने 481 नए अफसरों का खैर मकदम किया, जिन्होंने उत्तराखंड में देहरादून में वाक़ इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी तरबियत पूरी की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 158वीं पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इन अफसरों ने अपनी सख्त मेहनत और जांफिशानी के साथ फौजी तरबियत कामयाबी के साथ पूरी की है। इन अफसरों ने फौजी जज्बे, लगन और डिसिप्लिन की मिसाल पेश करते हुए परेड में हिस्सा लिया। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी नौयत की परेड थी, क्योंकि इसमें पहली बार मर्द कैडेटों के साथ साथ ख्वातीन कैडेटों ने भी हिस्सा लिया। इस शानदार तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि वो 9 खातून कैडेट्स को देखकर बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि ये न सिर्फ भारत की दिफाई अफवाज की तारीख में एक अहम संगे मील है, बल्कि ख्वातीन की ज़ेर क़यादत भारत की तरक्की के सफर में एक बाइस फैजान मिसाल भी है।
2: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फजाइया में नए भर्ती होने वाले अफसरों पर जोर दिया है कि वो बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल में सैटेलाइट और ड्रोन समेत नित नई उभरने वाली जंगी टेक्नोलॉजी से खुद को हम आहंग करें। उन्होंने ये बात हैदराबाद में फजाइया की एकेडमी में 217वीं मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड में शामिल अफसरों से खिताब करते हुए कही।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेस में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है।
0: भारत ने अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है, जिनमें 3 भारतीय अमले की मौत हो गई थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और कहा कि तजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान साहिल के करीब पलाव के झंडे वाले टैंकर माउंट सेटेबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 भारतीय अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है और नई दिल्ली के सख्त रद्देअमल की वजह बने हैं। उमूरे खारिजा की वजारत ने आज बताया कि बहरी जहाज लियाकी फ्रीडम में भारतीय जहाजरानों की मौत की खबर सही नहीं है। वजारत ने बताया कि उसने लियाकी फ्रीडम बहरी जहाज के मास्टर से बात की है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अमले के सभी अरकान महफूज हैं। MEA के हकाइक का पता लगाने से मुतालिक महकमे ने अवाम पर जोर दिया है कि वो सोशल मीडिया पर फराहम करदा इस तरह के झूठे और बेबुनियाद दावों और पोस्ट के खिलाफ होशियार रहें। आज सुबह आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर भारतीय फजाइया का एक AN-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। भारतीय फजाइया ने बताया है कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है। عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا میں مبتلا 689 افراد کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 139 اموات بھی شامل ہیں۔ صحت سے وابستہ اہلکاروں کے مطابق اتوری صوبے سے 17 نئے کیسوں اور مزید 5 اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔

0: Very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री

0: मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइबा टेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
3: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
2: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने

0: कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो तीन

0: दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: हटा दो।
1: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमने पर्दा हटा दिया है और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार। स्वीकार कीजिए हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, और हम भी पर्दा हटा देते हैं और आपको बता देते हैं कि आज के हमारे एक ही कलाकार फिल्म में ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें आज के हमारे कलाकार कौन हैं। और वो कलाकार वही हैं जिनकी जादुई कलम से इस गाने के बोल निकले हैं। और इस गाने को जो आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, गाया है आशा भोसले जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। जी हाँ, कौन है कलाकार बताएंगे आपको इस गाने के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
1: माँ को भी समझा दो।

एक फूल दो माली, इस फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं और इस गाने के गीतकार हैं प्रेम धवन साहब, जो कि हैं आज के हमारे कलाकार।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबा समय गुजर जाने के बाद भी अपनी प्रतिभा के बलबूते, अपनी कलाकारी के बलबूते दर्शकों के दिलों में हमेशा ही बने रहते हैं। एक ऐसे ही कलाकार थे प्रेम धवन साहब, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते थे। उन्होंने संगीत जगत में और ऐसे ऐसे दिल को छू जाने वाले गीत लिखे हैं, चाहे वो देशभक्ति से ओतप्रोत हों या फिर प्रेम गीत हों। और इसके अलावा उन्होंने कोरियोग्राफी के क्षेत्र में भी शानदार छाप छोड़ी है। वैसे तो प्रेम धवन की पहचान एक गीतकार के तौर पर रही है, लेकिन उन्होंने संगीतकार के तौर पर और कोरियोग्राफर के तौर पर भी बहुत ही अच्छा काम किया है। और आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज के ही दिन यानी 13 जून 1923 को प्रेम धवन साहब का जन्म अम्बाला में हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले उनकी कलम से निकला एक देशभक्ति गाना आपको सुनवाते हैं।

प्रेम धवन साहब का जो बचपन है ना, तो बचपन से ही वे कला और संस्कृति की ओर उनका रुझान था। उनके पिता जेल सुपरिटेंडेंट थे और उनकी नौकरी के कारण परिवार को कई

और कई अलग-अलग शहरों में रहना पड़ता था। और बाद में जब उनका परिवार लाहौर पहुंचा और जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लाहौर कॉलेज में उनके सहपाठी थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और साथ ही में साहिर लुधियानवी साहब, जिन्होंने आगे चल के अपने देश के लिए और साहित्य के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसके बाद युवावस्था में ही प्रेम धवन साहब स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने इप्टा यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का हिस्सा बन गए और यहाँ पर उन्होंने नाटक, गीत और नृत्य के जरिए लोगों में आज़ादी की चेतना को जगाने का काम किया। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले एक और भी प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं, जो कि देशभक्ति गीत है और इस गीत को भी लिखा है प्रेम धवन साहब ने।

और इसी बीच आपके संदेश ईमेल के माध्यम से लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और ये बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु विधान खुराना का मैसेज आया है। और इन्होंने लिखा है कि आज आप एक ही कलाकार कार्यक्रम में प्रेम धवन जी के बारे में उम्दा जानकारी दे रहे हैं और उनका एक देशभक्ति गीत ऐ मेरे प्यारे वतन ज़रूर सुनवा दें। तो दोस्तों, ये गीत तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पहले ही सुनवा दिया। ऐसे ही आप कार्यक्रम सुनते रहिए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ, और आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने गीतकार प्रेम धवन। और दोस्तों अब आपको बताते हैं कि प्रेम धवन साहब की बॉलीवुड में यानी फिल्मी दुनिया बॉम्बे में कैसे शुरुआत हुई। दरअसल सबसे पहले जब प्रेम धवन मुंबई आए और शुरुआती दौर में उन्होंने गीतकारों और संगीतकारों के असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया, और फिर वो साल था 1946 जब गीतकार के रूप में उनकी पहचान बनी थी। उस फिल्म का नाम था जिद्दी, और इसके अलावा फिर तो सिलसिला यूं ही चल पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत सी फिल्मों के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे

अच्छे से सुपरहिट गाने लिखे और धीरे धीरे उन्होंने कई बड़े संगीतकारों जैसे कि सलिल चौधरी, अनिल विश्वास, रवि और चित्रगुप्त के साथ काम किया और हिंदी सिनेमा को बहुत सारे यादगार गीत दिए और प्रेम धवन को विशेष तौर पर देशभक्ति गीतों के लिए याद किया जाता है, जो कि अभी आपको हमने सुनवाया फिल्म शहीद में उनके द्वारा लिखा गया गीत मेरा रंग दे बसंती चोला। और ये गाना सुनकर आज भी हमारे दिल में अपने देश के प्रति सम्मान और जोश भर जाता है। और दरअसल उनकी जो रचनात्मकता है, उनकी जो प्रतिभा है, वो सिर्फ गीत लेखन तक सीमित नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कई फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी भी की और अपनी नई प्रतिभा का परिमार्जन किया। एक ऐसी ही सुपर डुपर फिल्म आई थी नया दौर और इस फिल्म के गानों की कोरियोग्राफी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको नया दौर फिल्म से ही एक गाना सुनवाते हैं जिसकी कोरियोग्राफी प्रेम धवन साहब ने की थी।

और इसी बीच आपके कुछ संदेश ले लेते हैं। एक मैसेज आया है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी का, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। और इन्होंने लिखा है कि प्रेम धवन जी पर केंद्रित एक ही कलाकार कार्यक्रम को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। गीत, जानकारी और रोचक किस्से हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। आपकी उत्तम प्रस्तुति है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अरे जी, धन्यवाद तो आपका है, क्योंकि आप जैसे अच्छे श्रोता हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं और हमें फीडबैक जो देते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम को सुनते रहिए।

बागपत उत्तर प्रदेश से एक संदेश आया है संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का, और इन्होंने भी लिखा है कि कार्यक्रम वे सुन रहे हैं और उनको इस कार्यक्रम की प्रस्तुति बेहद पसंद आ रही है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ में आप ये जो गाना सुन रहे हैं, ये फिल्म नया दौर से है और इस गाने की नृत्य निर्देशन, जिसको हम अंग्रेज़ी में कोरियोग्राफी कहते हैं, कोरियोग्राफी की थी प्रेम धवन साहब ने। और इसी बीच हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। इन्होंने लिखा है कि आदरणीय अरुणेश कुमार द्विवेदी जी, सादर प्रणाम जी, आपको भी प्रणाम। कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है। प्रेम धवन जी के बारे में आप जो जानकारी दे रहे हैं वो भी पसंद आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ। और आज के हमारे कलाकार हैं प्रेम धवन साहब, और उनके जीवन से जुड़ी एक दिलचस्प घटना और भी है। दरअसल एक बार हुआ यूं कि जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुरैया, वे फिल्म मोती महल की शूटिंग कर रही थीं, लेकिन उनको सेट पर पहुंचने में देरी हो गई। और देरी क्यों हुई? क्योंकि उनकी कार रास्ते पे खराब हो गई थी। और जब उन्होंने ये बात अपनी टीम को बताई, और प्रेम धवन साहब ने जब इस बात को सुना, तो उन्होंने उनके इस अनुभव को गीत में ही बदल दिया, और उन्होंने लिख दिया एक गाना जिसके बोल थे, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रास्ते में। और ये गीत 1 दिसंबर 1952 को रिलीज हुआ और बेहद ही लोकप्रिय हुआ। तो प्रेम धवन साहब सिर्फ फिल्मी गीते ही नहीं, बल्कि सामाजिक विषयों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और देशभक्ति फिल्मों के लिए भी वे लिखते रहे। और हमारी सरकार यानी भारत सरकार ने 1970 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। और एक दिलचस्प बात अगर मैं आपको बताऊं कि हम सब ने अपने बचपन में एक गाना जरूर सुना होगा, चंदा मामा दूर के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गाना फिल्म वचन का है, जो कि 1954 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को जो वचन है, इस फिल्म के जो ये गाना है चंदा मामा दूर के, पुए पकाए नूर के, ये लिखा था प्रेम धवन साहब ने। और ये एक लोरी है जो जिसे हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं यही प्यारा सा नगमा। आशा भोसले जी की आवाज़ है और फिल्म का नाम है वचन। गीतकार हैं प्रेम धवन साहब।

हमने थोड़ा सा उलाहना एक तरीके से दिया है कि आप हमारे संदेश को शामिल क्यों नहीं कर रहे, हम बार बार आपको ईमेल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सभी श्रोता बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और ये संदेश है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन, नीलोफर, अल्ताफ, और छत्तीसगढ़ से ही रायपुर से मैसेज आया है मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा जी का।

और एक और संदेश आया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। इन्होंने लिखा है कि प्रेम धवन जी के बारे में जानकारी अच्छी लग रही है और उनके द्वारा लिखे गए गाने जो आप सुनवा रहे हैं वे हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।

संदेश ले लेते हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फर्राज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का। इन्होंने लिखा है कि आदाब, आपका ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो गीत आप सुनवा रहे हैं, वो बेहद पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, प्रेम धवन साहब ने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। उन्हीं में से एक गाना है, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। किशोर कुमार साहब की आवाज़ में ये गाना है और ये फिल्म पवित्र पापी से है, जो कि 1970 में रिलीज़ हुई थी, और इस गाने को लिखा है प्रेम धवन साहब ने। तो कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो आपको एक ये गाने की एक झलक सुनवा देते हैं।

दोस्तों, अब मेरे भी चलने का समय हो रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम से आपसे अलविदा लेता हूँ और बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ। फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, किसी न किसी कार्यक्रम में। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, और अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश कुमार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो ये जेठ को परम पावन महीना चल रहा है, कहावत है ना, आम के आम और गुठलीन के दाम, ब्रज धरा में या वखत पूरी तरह ते ना फलित हो रही है।
1: जी हाँ चंपा जी, जो ब्रज में आए रहे हैं वे सब श्रद्धालु इतना आनंद लूट रहे हैं कि उनको पतो ही ना चल रहे हो कि जेठ मास की दोपहर ही है, कि यहाँ पे कोई होली चल रही है कि दीपावली चल रही है, सब आनंद ले रहे हैं।
0: और हम अपने श्रोता भैया बहनान को एक बात और बता में कि जो ये जेठ को महीना है ना, ये ब्रज धरा में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ये महीना है ना जल पर्वन को महीना है। चाहे आप नौका विहार हो रहे हो, चाहे फुहारे चल रहे हैं, आप देखो कि इतने मनोरथ जल पर्वन के ब्रज में हो रहे हैं कि उनकी वानगी ना देखते ही बन रही है।
1: जी हाँ चंपा जी, देखो जल पर्व भारत की अपनी संस्कृति को अंग है। हम चाहे केरल के जल उत्सव देखें, चाहे हम कर्नाटक के देखें, यानी पूरे भारत वर्ष में पूरे पूर्वोत्तर में जल उत्सव मनाए जाए। पर हमारे श्रोता भैया बहन जान के बड़े आनंदित होंगे कि ब्रज में जितने सरोवर हैं, कुंड हैं, तालाब हैं, और यही के संग माँ यमुना है, इन सब जगह पे जल उत्सव है रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, मैया यमुना की बात चले तो गंगा मैया को जिक्र तो अपने आप आएगो, क्योंकि दोनों सगी बहन हैं, गंगा मैया यमुना मैया। तो आप देखो कितनी विलक्षण परंपरा है कि ब्रजभाषा के कवि पद्माकर ने तो देखो अपनी काव्य रचना करी है गंगा लहरी, वामे गंगा मैया के बड़े प्रवाह यानी वेग को, उनके पावन जल को, गंगा मैया की महिमा को ना, और उनको जो अद्भुत सौंदर्य है बाको सजीव प्रस्तुतिकरण करो है।
1: जी हाँ चंपा, पद्माकर जी ने जो गंगा लहरी लिखी है, वह गंगा लहरी में गंगा मैया की स्तुति और मन मोहिवे वाली ब्रज भाषा को इतनो सुंदर वर्णन करयो है, इतनो सुंदर प्रयोग करयो है कि कल कल बहवे वाली जो हमारी गंगा मैया है
0: ध्वनि उनकी,
1: हाँ उनकी वह ध्वनि को उनने शब्दन में ऐसो पिरोए दियो है जो सबको आकर्षित करे है।
0: नृत्य गोपाल जी, गंगा मैया के पतित पावन स्वरूप के काजे तो कहो गयो है, उनकी सरस धारा और निर्मलता के काजे ये बात कही गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और आप ये देखो कि गंगा मैया की जो पावन धारा की हम बात कर रहे हैं, तो ये ना हमारे भारत भूमि के बड़े भूभाग की ना आजीविका को बड़ो स्रोत है, यानी कि अर्थ को आधार है।
1: जी हाँ चंपा, हमारे किसान भैया बहनान के ताई तो यह साक्षात जीवन दायिनी है, और यही सो पद्माकर कवि ने लिखो है कि जमपुर द्वारे लगे तिनमें किवारे, को है ना रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, कहे पद्माकर तिहारे प्रणधारे, तेउ कर अधिमारे सुरलोक को सिधारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, काहू ने नतारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जीते तुम तारे तेते नभ में नतारे हैं।

गंगा ना होती तेरी जो धार गंगा तो कौन कर तो उद्धार गंगा ना होती तेरी जो धार गंगा तो कौन कर तो उद्धार गंगा करे भव निध सो पार मेहमान करे भव निध सो पार मेहमान करे भव निध सो पार मेहमान अपार तेरी है धार गंगा ना होती

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते। नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारी ब्रजधारा की वानगी है ही ऐसी कि ब्रजधारा को जो आकर्षण है, यहाँ की जो मन मोहिनी छवि है ना, वो सबको अपने आकर्षण में ऐसे ही बांधे है।
1: जी हाँ चंपा जी, देश के हों या विदेश के हों, इतने श्रद्धालु यदि ब्रज में आमे है, जो विचारक है वो उन बातन को कहे हुए है, बतामे हुए है।
0: तो नृत्य गोपाल जी चाहे देश को श्रद्धालु है चाहे विदेश को है, अगर वा को इतनो अटूट प्रेम ब्रज धराते है तो कछु ऐसी ही चर्चा की ओर अपने भैया बहनान को ले चले।
1: जी हाँ चंपा जी, अवश्य ले चलो।
0: तो आओ प्यारी भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये भेंट वार्ता जाको विषय है पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की दृष्टि में ब्रज। या विषय पे डॉक्टर योगेश पांडे जी ते बातचीत कर रहे हैं नृत्य गोपाल जी।
1: श्रोताओ, ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज हमारे संग हैं डॉक्टर योगेश पांडे जी। डॉक्टर योगेश पांडे जी, स्टूडियो में आपको स्वागत है, अभिनंदन है।
2: सभी श्रोताओं को मेरी राधे राधे।
1: डॉक्टर पांडे, आप इन दिनों पाश्चात्य और भारतीय विचारकों की दृष्टि में ब्रज, इसको लेके कई शोध कार्य आपके प्रकाशित हुए हैं और आप काम कर रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से विचारक हैं जिनको केंद्र में रख के आप इन सब चीजों का चिंतन कर रहे हैं।
2: जी नृत्य गोपाल जी, इन दिनों जिनका मैंने अध्ययन किया है वो ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के विद्वान है रिचर्ड बार्ज, टोक्यो की तेजी सकाता, रूस के साजानो और जर्मनी के रोनाल्ड बियर। इन चार विद्वानों का अध्ययन मैंने जो पाश्चात्य विद्वान हैं इस दौरान किया है। और भारतीय विद्वानों की बात करें तो आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हाल ही में विद्यानिवास मिश्र, जिनका विशद कार्य है कृष्ण काव्य को लेकर, इन विद्वानों का अध्ययन मैंने किया है इस दौरान।
1: जी निश्चित रूप में हमारे जो श्रोता हैं वो सब, मुझे लगता है कि जो हिंदी के या हमारे भारतीय विद्वान हैं उनसे लगभग परिचित हैं। डॉक्टर पांडे, ये जो पाश्चात्य विचारक हैं उनका कृष्ण संबंधी और ब्रज संबंधी उनकी मान्यता कैसी है?
2: जी जो पाश्चात्य विद्वान है जब वो अध्ययन करने जाते हैं कृष्ण काव्य के, तो केंद्र में सूरदास को रखते हैं, सूर सागर को। इसी दौरान रूसी भाषा में जो सूर सागर का अनुवाद करने वाले विद्वान साजानोवा हैं, वो सूर काव्य को वात्सल्य की दृष्टि से देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें जर्मनी भाषा में सूर सागर का अनुवाद करने वाले रोनाल्ड बियर का, तो वो सूर के काव्य को सच्ची लोकवादी कला की अभिव्यक्ति मानते हैं।
1: सूर के काव्य की ये विशेषता बताते हैं।
2: बिल्कुल सर
1: जी।
2: उसके साथ ही अगर हम बात करें तेजी सकाता की, तो कृष्ण काव्य को संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकर बताती हैं।
1: तेजी सकाता जापान से।
2: जी जापान से
1: जी।
2: और वहीं रिचर्ड बार्ज जो हैं

0: कृष्ण काव्य में कुंभन दास एक कवि हुए हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम, उनका हमने ये पद हमेशा सुना है, पढ़ा है
1: जी।
0: वो उनको धरती का नमक कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज, हमारे देश, दुनिया के लिए। धरती का नमक पाश्चात्य का एक मुहावरा है लोक का।
1: यानी अगर हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलियाई विद्वान है वो हमारे कृष्ण भक्त कुंभन दास को इतने बड़े स्वरूप में देखते हैं कि उन्हें धरती के नमक की संज्ञा देते हैं। जो आपने अभी संदर्भ जिस पद का लिया, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हर नाम, जिनके मुख देखे दुख लागे उनको कीनी परी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधरविन यह झूठो धन धाम। तो कुंभन दास की ये जो बेवाक तरीके की अपनी प्रवृत्ति रही है और सिर्फ गिरधर लाल के लिए ही उनका जो समर्पण है, ऑस्ट्रेलियाई विद्वान देखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: इस चीज को वो ध्यान में भी रखते हैं और उस धरती का नमक उनको संज्ञा देते हैं उनको, कि वो समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो भी भक्ति नहीं करते बल्कि समाज को निर्भीकता सिखाते हैं, कैसे सामने कोई भी सत्ता हो उसके सामने निर्भीकता के साथ कैसे खड़ा रहा जा सकता है और अब लोक के लिए अपना समर्पण किया जा सकता है, इस बात को दिखाते हैं, वो उससे प्रभावित होते हैं ऑस्ट्रेलियाई विद्वान
1: जी। डॉक्टर पांडे, कोई ऐसी बात जो आप ये कहें कि देखिए पाश्चात्य विचारक इन्होंने ये बात कही है ब्रज को लेके या कृष्ण को लेके, कुछ ऐसी बात आपको याद आ रही है, कुछ ऐसे उदाहरण याद आ रहे हो ब्रज भाषा की दृष्टि से जब बात करेंगे?
0: हाँ, जो जापान के विद्वान है तेजी सकाता, वो जब सूरदास का जो साहित्य है उसका अध्ययन करती हैं तो संस्कृत साहित्य का उसका प्रभाव, संस्कृत भाषा का जो उस पर प्रभाव है उसको देखती हैं, और वो बताती हैं कि जो संस्कृत के शब्दों को ग्रहण करने के बाद भी जो सूरदास की भाषा है वो सरल और मधुर बनी हुई है, इसके पीछे सूरदास की संस्कृत और लोक भाषा में समन्वय करने की चेतना ही काम करती है। और वो बताती है कि संस्कृत शब्दों को ग्रहण करते हुए सूरदास दो प्रक्रिया अपनाते हैं, एक चयन प्रक्रिया, एक समीकरण प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में क्या है कि ब्रजभाषा की ध्वनि के निकट वाले संस्कृत शब्दों का चयन करते हैं वो, जैसे मोहन, हरि, गोरस, पय, चित, मन। वहीं अगर हम समीकरण प्रक्रिया की बात करें तो संस्कृत शब्दों को ब्रजभाषा के गठन के अनुकूल बदल लेते हैं, जैसे कृष्ण का कृष्ण हो गया, श्याम का श्याम हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, हृदय का हृदय हो गया। तो इस तरीके से जो बदलाव की प्रक्रिया है संस्कृत शब्दों की ब्रजभाषा में, उसका भी अध्ययन तेजी सकाता करती है।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जो ब्रजमाधुरी के श्रोता है उन्हें भी इस संदर्भ में सोचना होगा कि जापान की एक विदुषी जब ये देखती हैं कि सूरदास की जो भाषा है वह भाषा मात्र ऐसी नहीं है, वह लोक के निकट जाती है, और वह जब भाषा वैज्ञानिक रूप में संस्कृत के निकट जाती है और सूरदास उसमें से शब्द चयन करते हैं तो उनका अलग अलग वर्गीकरण भी उन्होंने किया है। डॉक्टर पांडे, ये तो हुई पाश्चात्य विद्वानों की बात या पाश्चात्य विचारकों की बात, आपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपने समय के आप कहें कि बहुत हमारे आदर्श स्थापित करते हैं, ऐसे कुछ भारतीय विचारकों का उल्लेख आपने किया कि आप उनका अध्ययन कर रहे हैं
0: जी,
1: उनमें कौन कौन नाम आपने लिए?
0: जी, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र।
1: आप इनमें से किससे सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्या इन लोगों की महत्ता है?
0: जी, हजारे प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो हम पढ़ते रहे हैं
1: जी,
0: लेकिन जब मैंने विद्यानिवास मिश्र को पढ़ा तो मैं प्रभावित हुआ कि इतने बड़े विद्वान जिन्होंने कृष्ण काव्य पे इतना अध्ययन किया है उसको अभी तक प्रकाश में नहीं लाया गया, और वो कृष्ण काव्य को संपूर्णता में देखते हैं, सिर्फ भक्ति साहित्य या मध्यकालीन भक्ति साहित्य की बात नहीं करते, वो श्रीमद् भागवत पुराण की तरफ भी जाते हैं, उससे पूर्व जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ हैं कृष्ण काव्य से संबंधित उसका अध्ययन करते हुए तब भक्ति साहित्य तक आते हैं। और वो कहते भी हैं कि मैं श्री कृष्ण चरित्र को अखंड रूप में देखने में सुख पाता हूँ, उसको मैं विभाजित करके नहीं देखना पसंद करता।
1: यानी विद्यानिवास मिश्र ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण के समग्र व्यक्तित्व को यदि अखंडता में देखा जाए
0: जी,
1: यानी ब्रज से लेकर के और द्वारका तक या कुरुक्षेत्र तक उसकी समग्रता एक में है।
0: कृष्ण सिर्फ वहां पे कहते हैं कृष्ण सिर्फ सत्ता नहीं है, वो इतिहास पुरुष नहीं, वो भाव है जो पूरे भारतीय मानस में विद्यमान है, तो उस भाव को पहचानते हैं वो।
1: आचार्य विद्यानिवास मिश्र का कोई चित्र हमारे सामने उभरता उनके नाम के साथ तो हम ये देखते हैं कि वो बहुत बड़े एक निबंधकार के रूप में सामने होते हैं, वो एक बड़े भाषाविद के रूप में हमारे सामने होते हैं, एक संस्कृति चिंतक के रूप में सामने होते हैं। तो जब ये कृष्ण और ब्रज की चर्चा करते हैं तो क्या निबंध के माध्यम से या आलोचना के माध्यम से कैसे कर रहे हैं?
0: वो अपने निबंधों में या जो पुस्तकें लिखते हैं उसमें कहते हैं कि मैं अपने आप को आलोचक नहीं मानता
1: जी,
0: लेकिन मैं उन दृष्टियों को उजागर करना चाहता हूँ कि जो आलोचक नए आए उनके सामने नई दृष्टि आए, वो नए परिप्रेक्ष्य में

0: पूरे कृष्ण साहित्य को देखें। इसके लिए वो तीन भागों में विभाजित भी करते हैं, श्रीमद् भागवत, गीत गोविंद और भक्ति साहित्य, जो मध्यकालीन भक्ति साहित्य है। तीन दृष्टियों से अध्ययन करते हैं वो, तीन कालों का,
1: यानी तीनों दृष्टियों से उसका अध्ययन करते हैं
0: जी।
1: डॉक्टर योगेश पांडे जी, आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े संस्कृति चिंतक हैं, लेकिन हम संस्कृति के पक्ष से देखें तो उतने ही बड़े विद्वान के रूप में या उनसे कहीं और भव्यता के साथ जो एक व्यक्तित्व उभरता है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उभरता है
0: जी। बिल्कुल,
1: क्योंकि वो संस्कृत के भी उद्भट विद्वान हैं और हिंदी के लिए या अन्य जो हमारी हिंदी की भाषाएं हैं या पूरे भारतीय भाषाओं के साहित्य को लेकर के उनका अध्ययन बहुत गहन है, विस्तृत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ब्रज और कृष्ण को कैसे देखते हैं
0: जी? जैसे हम विद्यानिवास मिश्र से द्विवेदी की तरफ आए तो विद्यानिवास मिश्र भी इस बात को मानते हैं कि मैं चाहे अपनी आलोचना की बात करूं या निबंध की बात करूं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव मुझ पर बहुत अधिक रहा
1: जी।
0: स्वयं भी निबंधकार थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार थे
1: जी।
0: आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी कृष्ण पे आलोचना लिखते हैं, विद्यानिवास मिश्र भी लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो वो भी विद्यानिवास मिश्र की तरह भारतीय चेतना का सहज विकास मानते हैं कृष्ण काव्य को। वो ऐसे कि किसी बाहरी प्रभाव से जो उद्भव कोई काव्य नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि भारतीय चेतना का ये सहज विकास है और उस रूप में देखते हैं और कहते हैं कि जो हमारा कृष्ण काव्य है उसने जीवन के प्रति अनुराग और उल्लास जागृत किया है।
1: भारतीय समाज में जीवन का जो उल्लास निर्मित हुआ है, ये जो उल्लास में हमारा एक चिंतन है उसका बहुत कुछ रे वो कृष्ण काव्य को
0: देते हैं और कृष्ण कवियों को देते हैं जो कृष्ण आधारित काव्य की रचना करते हैं।
1: डॉक्टर पांडे, चर्चा बहुत गंभीरता की ओर बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि इस बीच में आपकी पसंद का कोई हम लोक गीत सुन लें
0: जी। मदन मोहन ब्रजवासी का कोई अगर गीत यहाँ पे चल जाए
1: तो आओ श्रोताओं सुने मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में ये प्यारा सो ब्रज लोक गीत।

0: जी हाँ श्रोताओ, अभी आप सुन रहे मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में ये बहुत मनोहर सो ब्रज लोकगीत, जाकी की इच्छा व्यक्त करी डॉक्टर योगेश पांडे जी ने। और योगेश पांडे जी के साथ हमारी या समय चर्चा है वह चल रही है। डॉक्टर योगेश पांडे, आपसे जो चर्चा चल रही है उसमें आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्या निवास मिश्र जी की बात की, जबकि हम एक और जो बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है, विशेषतः इतिहास की दृष्टि से जब जब हिंदी की चर्चा होगी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक मानक के रूप में हमारे सम्मुख रहते हैं। कृष्ण और ब्रज और ये इसकी मनोहारी छवि और इसकी महत्ता को लेके एक इतिहासकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या मान्यता है?
1: जी, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब हमने बात की तो हमने कहा कि वो अनुराग और उल्लास जागृत करते हैं
0: जी
1: भारतीय जनता में, वैसा ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि जो कृष्ण काव्य है वो लोक रंजन का काव्य है। जिस समय में बाहरी आक्रमणकर्ता भारत पर आक्रमण करते हैं उस समय कृष्ण काव्य ही था जिसने भारतीय जनता के हृदय को संभाला
0: जी।
1: लेकिन वो यहाँ पे जो लोक रंजन तक सीमित कर देते हैं और राम काव्य को लोक मंगल की तरफ ले जाते हैं, इस बात को अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँ, विद्यानिवास मिश्र इसका विकास करते हैं
0: जी।
1: वो कहते हैं कृष्ण काव्य जो है वो सिर्फ लोक रंजन का काव्य नहीं है, वो लोक मंगल का काव्य भी है। कृष्ण का चरित्र ही लोक मंगलवादी है और तरह तरह की लीलाएं करते हैं, तो लोक रंजन और लोक मंगल दोनों के जो भाव है वो कृष्ण के चरित्र में समाहित होते हैं।
0: यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो दृष्टि है उसी का विकास विद्यानिवास मिश्र भी करते हैं। ब्रज भाषा के माधुर्य को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारी बातें कही हैं और उनका मानना ये भी है कि मध्यकाल में यदि कोई भाषा इस पूरे भारतीय लोक मानस को बहुत प्रश्रय देती है और बहुत उसकी भावनाओं को जागृत करने में, प्रस्तुत करने में जिस भाषा की भूमिका है वह ब्रज भाषा है। और इसके लिए वे रसखान जैसे कवि को, सूरदास को, जिन्हें कहते हैं कि वो तो वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं, तो ऐसी और उनकी कोई, आपको ऐसा लगता है कि आचार्य

0: रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हुए ब्रज की इस बात को तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए
1: जी। जैसा कि वो सूरदास का जब अध्ययन करते हैं तब कहते हैं कि जो साहित्यिक ब्रजभाषा है उसको चरम तक ले जाने का कार्य सूरदास ने किया है, कि उसके बाद ब्रजभाषा का जो अन्य कवि हैं वो सूरदास से ऊपर ब्रजभाषा को लेकर नहीं जा पाए। तो इसमें कहीं ना कहीं कृष्ण चरित्र का भी
0: यानी समाहार है, जो विकास हो रहा है और वो जो समाज को दे रहा है उसका भी बिंदु इसमें निहित है। जी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो दृष्टि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पांडे, समय की अपनी सीमा है, फिर भी आपसे एक बार पुनः हम पाश्चात्य विचारकों की तरफ जाते हुए ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो पाश्चात्य विचारक हैं, जब हम अध्ययन करें तो किस तरीके की सोच हमें रखनी चाहिए और कैसे हम इनके निकट तक पहुंच सकते हैं?
1: जी, जो पाश्चात्य विद्वान है वो अवश्य प्रभावित होते हैं हमारे कृष्ण काव्य भारतीय दृष्टिकोण से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो संस्कृति है या उनके विकास का तरीका अलग है। तो यदि वो हमारे साहित्य का अध्ययन करते हैं तो जो पैमाने या जो टूल्स वो अपनाते हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कई बार वो उससे दूर भी चले जाते हैं, तो हमें उसका अध्ययन करके उसको तर्क के साथ अपनी बातों को भी हमें रखना होगा, समझना होगा कि उनकी दृष्टि क्या है। जितना मैं अभी पढ़ पा रहा हूँ तो उन्होंने बहुत ही अच्छा भाव हमारे साहित्य और हमारे कृष्ण चरित्र के ऊपर रखा है।
0: यानी जैसे पाश्चात्य चिंतक बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप बने रहते हैं कि भाई किसी चीज से प्रभावित हुए बिना उसका जो मूल तत्व है उसका विश्लेषण किया जाए,
1: बिल्कुल।
0: तो जब हम इन्हें पढ़ें तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो उनके यहाँ पर सपाट बयानी में आ रही है, तो हम बहुत ज्यादा भावनात्मक न सोच के उस विश्लेषण की तरफ रहें और उनको उसी ढंग से सोचने की कोशिश करें।
1: जी, बिल्कुल
0: जी। डॉक्टर योगेश पांडे जी, आप स्टूडियो में पधारे और पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की दृष्टि में ब्रज इस विषय पर आपने हमारे श्रोताओं को जो बहुत महत्वपूर्ण अपने समय के आलोचक हैं, विचारक हैं, उनके विचारों के साथ अपनी बात आपने यहाँ रखी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और सभी श्रोताओं को राधे राधे।
2: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे हते जाको विषय हो पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की दृष्टि में ब्रज। या विषय पे डॉक्टर योगेश पांडे जी ते बातचीत कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
2: देखो बड़ी रोचक और मनोहारी चर्चा आपने योगेश पांडे जी ते करी, याके काजे आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं।
0: जी चंपा जी, देखो डॉक्टर योगेश इन विषय के जानकार हैं, अध्येता हैं और उन्होंने हमारे श्रोतान के ताई उनके सूत्र बताए, उनकी बात बताई, उनके उद्धरण बताए, वासु ही तो हम सबको ज्ञानवर्धन भयो है।
2: ये बहुत अच्छी बात है कि यह विषय की ओर भी आप हमारे श्रोता भैया बहनान को ले गए, पर देखो एक बात हमारे मन में आ रही है।
0: बताए देव ना आप।
2: देखो जेठ को महीना चल रहे हो है और ये जल पर्वन को महीना है, तो कितनी तैयारी हमारी ब्रज धरा में चल रही है कि निर्जला जो एकादशी है वो जल पर्व को बड़ो प्रतीक है हमारे ब्रज में, वो आयवे वारी है।
0: जी हाँ चंपा, देखो निर्जला एकादशी में इतनी गर्मी में निर्जला उपासना करनो कितनो कठिन कार्य है,
2: पर फिर भी श्रद्धा और भक्ति को अनूठो समागम ऐसो है कि जो ये निर्जला को उत्सव है या वो एकादशी के रूप में है या वो दशहरा के रूप में है, जेठ पूर्णिमा के रूप में है, बड़े ही उल्लास के संगना हमारी ब्रज धारा में ये पर्व मनायो जावे है। और लोक की अगर हम बात करें तो लोक के संगना जो हमारी देवालयी संस्कृति है वहाँ भी इन जल पर्वन की ना अपने आप में तैयारी चल रही है।
0: चंपा जी आप तनिक देखो कि इन जल पर्व और जेठ मास के बीच में दो कला बड़ी अच्छी से दिखाई पड़ रही है, कभू ध्यान दियो हो तो
2: आप बताए दो।
0: देखो तो सही है, जो हमारे कुंभकार भैया है ना
2: जी,
0: वे अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर चपटा बना रहे हैं, मटका बना रहे हैं, मलरिया बना रहे हैं और कुंजा बना रहे हैं, उनकी जो कला है वह आकर्षित करे।
2: नृत्य गोपाल जी, तो हमारे लोक में ऐसी मान्यता है कि इनको भी जो दान है वो निर्जला एकादशी पे ब्रज में करो जाए वो।
0: अरे सबके ताई शीतलता मिले यही तो उपक्रम करो जा रहे हो लोक में।
2: बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता भैया बहनान के काजे बताई है। तो देखो ऐसी अच्छी अच्छी बात अन्य करवे को तो मन करे के ऐसे ही तरस हम अपने भैया वैनान के संग करते रहें, पर हमारी भैया वैना भी जाने, आप भी जाने और हम भी जाने कि ऐसा ना संभव ना हो पावे है, समय की अपनी सीमा है। तो प्यारे भैया वैनाओं, इन्हीं प्रेम भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
0: और मो नृत्य गोपाल को, कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग।

0: अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नृत्य गोपाल और चंद्रवती शर्मा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम बोलती कहानियां।
1: बोलती कहानियां क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सवा शेर गेहूं पर आधारित रेडियो नाटक। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशन काजल सूरी। सवा शेर गेहूं, कहानी मुंशी प्रेमचंद। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, छक्का पंजा ना जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी ना लगी थी। ठगे जाने की चिंता ना थी, ठग विद्या ना जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट ली। चबीना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे, एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर, घर में जौ का आटा था, वो ने कैसे खिलाता।
2: ओह, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। महात्मा जी को क्या खिलाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, गेहूं का आटा उधार ले आता हूं, लेकिन अगर पूरे गांव में गेहूं का आटा ना मिला तो क्या करूंगा। विप्र महाराज के यहां जाता हूं, उनके यहां से तो आटा जरूर मिल जाएगा। हाँ, अभी जाता हूं। अरे सुनती हो, मैं जरा बाहर होके आता हूं अभी। महाराज, महाराज।
3: हाँ भाई शंकर, बता कैसे आना हुआ।
2: महाराज, बड़ी कृपा होगी अगर थोड़ा आटा मिल जाए तो।
3: हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। पैसे लाया है?
2: पैसे? महाराज, अभी उधार दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा बाद में।
3: अच्छा अच्छा, ठीक है।
2: अगर हो सके तो महाराज सवा शेर गेहूं दे दीजिए।
3: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मिल जाएगा। अरे भाई, इसे सवा शेर गेहूं ला कर दे दो। ठीक है शंकर, ले जा।
2: बहुत कृपा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ठीक है ठीक है।
2: मुश्किल से ही सही, लेकिन गेहूं का इंतजाम हो गया। दुलारी, दुलारी
4: जी,
2: देख बड़ी मुश्किल से गेहूं का इंतजाम हुआ है। ले, अब जा और इसे जल्दी से पीस दे।
4: सब प्रभु की कृपा है।
2: हाँ हाँ।
4: मैं अभी खाना तैयार करती हूँ।
2: जल्दी
4: आप इतने महात्मा जी के पास बैठो।
2: हाँ हाँ, मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ।
5: महाराज जी ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे।
2: अरे ये विप्र महाराज को

0: सवा शेर गेहूं क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, वो भी समझ जाएंगे और मेरा ऋण भी उतर जाएगा। हाँ
1: चैत में जब विप्री जी पहुंचे तो उन्हें डेढ़ पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋण समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। विप्री जी ने फिर कभी ना मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि सवा शेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए। इन 7 वर्षों में विप्र जी विप्र से महाजन हो गए, शंकर किसान से मजूर हो गया, उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था।
0: कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई मुझसे ऐसे अलग होगा। जब दोनों साथ रहते थे तो किसान थे, अब अलग होके मजदूर हो गए। मैंने कितना चाहा कि द्वेष की आग भड़के ना, परिस्थिति ने हम दोनों को विवश कर दिया। जिस दिन हम लोगों के अलग अलग चूल्हे जले, मैं ही जानता हूं, मेरा दिल खून के आंसू रोया था। हम दोनों भाई एक दूसरे के शत्रु हो गए। एक भाई रोएगा और दूसरा हंसेगा, एक के घर में मातम होगा और दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन सब टूट गया।
2: उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक ना देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो।
0: ये क्या हुआ, 5 बीघे जमीन अब आधी रह गई, बस एक बैल। ऐसे में खेती क्या मैं खाक करूंगा। नौबत ये आ गई है कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई है और जीविका का भार सारा मजूरी पर आ गया है।

0: सात वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने उसे टोक कर कहा,
1: अरे शंकर।
2: जी महाराज।
1: ओ कल आकर अपने बीज का हिसाब कर ले।
2: हाँ?
1: अरे तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। अजम करने का मन है क्या?
2: महाराज मैंने आपसे कब गेहूं लिया?
1: अच्छा,
2: जो 5.5 मन हो गया, आपसे कोई भूल हो रही है। मेरे यहाँ तो किसी का छटांक भर भी अनाज ना है, मैंने तो किसी का 1 पैसा भी उधार नहीं देना।
1: बस बस इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ रहा। क्या तुम्हें वो 1.25 शेर गेहूं की याद नहीं रही जो तुमने आज से 7 वर्ष पहले लिया था?
2: हे भगवान, महाराज मैंने आपको कितनी बार खलियानी दी, जब पोथी पत्रा देखने साहित सगुन विचारने आप द्वार पर आते थे तो कुछ ना कुछ दक्षिणा लेके जाते थे। महाराज इतना स्वार्थ, 1.25 शेर अनाज को अंडे के भांति सेक कर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निकल जाएगा। महाराज इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोल कर दे देता, क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? महाराज नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानी में शेर शेर 2-2 शेर दिया है। महाराज अब आप 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा महाराज।

0: शंकर, लेखा जो जो और बक्सी सौ सौ, तुमने जो कुछ दिया होगा ना उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे एक की जगह चार पसेरी क्यों ना दे दी हो। अरे तुम्हारे नाम पर बही में 5.5 मन तो लिखा हुआ है
1: महाराज।
0: हाँ, जिससे चाहो हिसाब लगवा लो। देखो, दे दोगे तो तुम्हारा नाम काट दूंगा, और नहीं तो ये दिन पर दिन बढ़ता ही रहेगा।
1: अरे महाराज, क्यों गरीब को सताते हो? मेरे तो खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा महाराज?
0: जिसके घर से चाहो लाओ, मैं तो छटाक भर ना छोड़ूंगा, याद रखना। अरे यहां ना दोगे तो भगवान के घर दोगे।
1: आज के युग का पढ़ा लिखा आदमी होता तो कह देता, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे दूंगा। वहां की तोल यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता।
2: किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर ना था। उसने सोचा, एक तो ऋण भी महाराज का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाएगा। इस ख्याल से उसे रोमांच हो आया।
1: महाराज, आपका जितना होगा ना यही दूंगा।
0: अच्छा,
1: ईश्वर के यहां क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए कोई कांटे नहीं बोऊंगा। मगर ये उचित नहीं है महाराज, आपने राई का पर्वत बना दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तक अदा करते तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ ना होता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन ऊपर जाकर आपको जवाब देना पड़ेगा।
0: अरे शंकर, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? अरे वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी देखेंगे, सब संभाल लेंगे। तो बताओ कब दोगे?
1: महाराज, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा ना।
0: ना ना ना, मैं ये ना मानूंगा। पहले ही 7 वर्ष बीत चुके हैं शंकर, अब एक दिन की भी मोहलत ना दूंगा तुझे। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो।
1: मुझे तो देना है महाराज, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे?
0: बाजार का भाव 5 शेर का है तो मैं 5.25 शेर का काट दूंगा।
1: ना ना ना महाराज, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं?
3: हिसाब लगाया तो गेहूं का दाम 60 रुपए हुए, 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपया सैकड़े सूद, साल भर में ना देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी।
2: गांव भर ने विप्र की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं, महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह पर कौन आए?
3: शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की, मियाद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी कभी चूल्हा ना जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हुआ, केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। कपड़े पहले ही त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए थे। उसने समझा और सोचा,
1: महाराज ये रुपए रख लीजिए, बाकी भी जल्दी ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या महाराज जी इतना भी नहीं मानेंगे? मान जाएंगे। महाराज।
0: हाँ भाई शंकर।
1: बाकी रुपए मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर कर दूंगा,

0: बस 15 रुपए की तो बात है, मान जाइए ना। ये लीजिए महाराज, ये पैसे मैं आपके चरण कमलों पे अर्पण कर रहा हूँ।
1: हाँ, लेकिन ये किसी से तुमने उधार लिए हैं क्या?
0: नहीं नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली।
1: अच्छा, लेकिन लेकिन ये तो 60 रुपए ही है।
0: हाँ महाराज, मैंने वही तो बोला, अभी इतना लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरिन कर दीजिए।
1: ना ना ना ना शंकर, उरिन तो तुम तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाओ, जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ।
0: महाराज इतनी दया करो, अब तो सांझ की रोटियों का भी ठिकाना ना रहा, गांव में ही हूं ना महाराज, तो कभी ना कभी तो दे ही दूंगा।
1: ना ना ना ना, ना ये रोग मैं नहीं पालता और ना ही बहुत बातें करना जानता हूं। देखो, अगर पूरे रुपए नहीं मिलेंगे ना, तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा
0: महाराज।
1: हाँ, और चाहो तो अपने रुपए अपने घर में रखो और चाहो तो मेरे यहाँ छोड़ जाओ।
0: अच्छा महाराज, जितने लाया हूं ना आप उतने रख लीजिए, मैं जाता हूँ और कहीं से 15 रुपए और लाने की कोशिश करता हूँ।
1: हाँ ठीक है,
0: ठीक है महाराज।
2: शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास ना था या किसी के पास रुपया ना था, बल्कि इसलिए कि विप्र जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत ना थी। क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। साल भर तक तपस्या करने के बाद भी शंकर ऋण से मुक्त ना हो सका तो उसका संयम डोल गया। उसने सोचा,
0: इतने कष्ट सहने के बाद भी साल भर में सिर्फ 60 रुपए ही जमा कर सका, समझ नहीं आ रहा अब कौन सा उपाय करूं। जब सिर पर ऋण का बोझ लाद ही लिया है तो क्या मन और क्या सभा मन।
2: उसका उत्साह भंग हो गया, उसे मेहनत से घृणा हो गई। जब आशा ही ना रही तो उत्साह भी समाप्त हो गया। शंकर उदासीन हो गया। वे जरूरतें जिनको उसने अपने साल भर तक टाल रखा था, अब छाती पर सवार हो गई। इस भांति 3 वर्ष बीत गए। विप्र महाराज ने एक बार भी तकादा ना किया। वो चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। फिर एक दिन
1: तीन वर्ष बीत गए, मैंने शंकर से एक बार भी तकादा नहीं किया। मैं चतुर शिकारी की भांति उस पर अचूक निशाना लगाना चाहता हूं। पहले से अगर शिकार चौकन्ना हो जाएगा तो यह मेरी नीति के विरुद्ध होगा।
2: फिर एक दिन,
1: अरे भाई शंकर
0: जी। महाराज,
1: ये देखो, ये रहा तुम्हारा हिसाब। देखो, तुम्हारे जो 60 रुपए जमा थे उसका हिसाब लगाने के बाद भी तुम्हारे नाम पर 120 रुपए निकलते हैं।
0: महाराज, इतने रुपए तो अगले जन्म में ही दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता।
1: ना ना ना ना, ना। मुझे तो इसी जन्म में चाहिए भाई। अरे मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा।
0: एक बैल है महाराज, वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो भी ले लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है?
1: मुझे बैल बचिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है।
0: और क्या महाराज?
1: कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो
0: महाराज।
1: हाँ, और मुझे खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है, तो सूद में हमारे यहाँ ये काम किया करो
0: है?
1: और जब भी सुविधा हो मूल दे देना।
0: मगर महाराज,
1: सच तो यो है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने जा ही नहीं सकते
0: महाराज।
1: हाँ, और जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो, तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? हाँ, कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने

0: मुझे ऐसी गरज नहीं है भाई, मैं तो तुझे अपने रुपए भरने के लिए ही रख रहा हूँ।
1: महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई।
0: अरे गुलामी समझ चाहे मजूरी समझ, मैं तो अपने रुपए भराए बिना तुझे छोड़ूंगा नहीं। और सुन, तू कहीं भागा ना तो तेरा लड़का ये रुपए भरेगा, और हाँ जब कोई ना रहेगा तब की तब देख लूंगा।
2: इस निर्णय की कहीं अपील ना थी, मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण ना थी, भागकर कहां जाता। दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सवा सेर गेहूं के बदले उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वो ये था कि ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे लेकिन शंकर चुपचाप देखता रहता, कुछ कर नहीं पाता था। गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति आजीवन उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहां 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस असार संसार से प्रस्थान किया।
3: शंकर ने विप्र जी के यहां 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस असार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सर पे सवार थे। महाराज ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। वे इतने अन्यायी और इतने निर्दयी ना थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी, आज तक वो विप्र जी के यहां काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। आप लोग इस कथा को कपोल कल्पित ना समझें, ये सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है।
4: बोलती कहानी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सवा शेर गेहूं पर आधारित रेडियो नाटक। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशन काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे निखिल दीवान, नितिन भसीन, अन्नू शर्मा और राहुल दक्ष।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी शाम 4 बजे आप हिंदी में समाचार सुन सकते हैं और 4:05 पर अंग्रेज़ी में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। शाम 4:10 पर आप गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में जानकारी सुन सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ये शाम 4:20 पर सुन सकते हैं और हमारे द्विभाषी न्यूज़ मैगजीन शो परिक्रमा इस कार्यक्रम को आप आज शाम 4:30 पर सुन सकते हैं।

लोक रंजनी लोक संगीत पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आज शाम 5:10 पर, वहीं शाम 5:30 का समय होता है हमारे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का।

चहल पहल इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर और शाम 6:20 पर आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। ग्राम संसार हमारे ग्रामीण भाई बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम आप ये सुन सकते हैं शाम 6:30 और शाम 7:05 पर हमारे किसान भाई बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत का प्रसारण किया जाएगा।

और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर और 7:45 मिनट पर प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम मुशायरा, जो कि आधारित होगा जश्न आकाशवाणी 90 वर्ष के अवसर पर। मुशायरा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप रात्रि 8:30 पर सुन सकते हैं।

रात्रि 9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। वहीं रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: हमारे श्रोता अपनी पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन सकते हैं आज रात्रि 11:10 पर। तो ये थी जानकारी हमारे आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 4 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के धुंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती हुई युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकी बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय 1:00 PM निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश की वजह से टॉस अब तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा।

देते हैं कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। रीमा व पत्नी सुकेन दास, निवासी बाल मकरपुंद गांव गुरुग्राम हरियाणा। इनकी उम्र 20 साल है। रंग गेहुआ, हष्ट पुष्ट शरीर, गोल चेहरा, 4 फुट 10 इंच लंबाई है। और ये गुमशुदा हो गई हैं आर पुलिस स्टेशन चकरपुर। और इनकी परिवार वालों के मुताबिक ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सेक्टर 29 DLF गुरुग्राम में दर्ज करा दी गई है। अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो आप DLF पुलिस स्टेशन सेक्टर 29 गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। अगले खोए हुए व्यक्ति का नाम है खुशी, पत्नी कुलदीप, निवासी ग्राम खबरा, थाना खुर्जा, जनपद बुलंदशहर। इन्हें आखिरी बार 12 मई 2026 को ग्राम खबरा, थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलंदशहर में देखा गया था और इन्हें खोजने का काफ़ी प्रयास किया गया और जब ये नहीं मिली तो इनकी पुलिस में रिपोर्ट 15 मई 2026 को दोपहर में दर्ज करा दी गई। खुशी ये गुमशुदा व्यक्ति का नाम है और इनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। नाम खुशी, उम्र 22 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, सामान्य शरीर, गोल चेहरा, रंग सांवला। और अगर आप इनके बारे में कोई जानकारी देते हैं तो आपको पुरस्कार स्वरूप 1,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। अगर इनके बारे में आपको कोई जानकारी मिले तो आप जांच अधिकारी रामवीर सिंह, थाना खुर्जा देहात, बुलंद शहर के मोबाइल नंबर 7830988664 पर संपर्क कर सकते हैं। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है भरत, पुत्र श्री उमेश चंद्र शर्मा, ये दिनांक 3 जून 2026 से लापता है और इनकी उम्र 11 वर्ष है, 4 फीट लंबाई है, आँख कान नाक औसत, रंग गेहुआ, चेहरा गोल। और अगर इनकी बारे में कोई जानकारी आपको मिलती है तो आप थाना प्रभारी, थाना AHTU जनपद बुलंदशहर में दे सकते हैं और इनाम की धनराशि 5,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे अगले खोए हुए व्यक्ति के बारे में। नाम मानवी सिंह, पुत्री गजेंद्रपाल सिंह, निवासी मोहल्ला चंद्रलोक कॉलोनी गली नंगली के सामने, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर। इन्हें आखिरी बार कस्बा खुर्जा में दिनांक 12 मई 2026 को देखा गया था। इनको खोजने का काफ़ी प्रयास किया गया और इनके नहीं मिलने पर इनके परिजनों ने 15 मई 2026 को सुबह 9:30 बजे इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली खुर्जा जनपद बुलंदशहर में दर्ज करा दी है। खोए हुए व्यक्ति का नाम मानवी सिंह है और इनका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। नाम मानवी सिंह, पिता का नाम गजेंद्रपाल सिंह, निवासी मोहल्ला चंद्र लोक कॉलोनी, थाना खुर्जा, जनपद बुलंदशहर।
सामान्य शरीर, गोल चेहरा, रंग गोरा।

और उम्र 21 वर्ष है। यदि आप इनके बारे में कोई जानकारी देते हैं तो आपको पुरस्कार स्वरूप 1,000 रुपये मिलेंगे। और इनके बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो आप जांच अधिकारी संदीप कुमार, थाना खुर्जानगर, ज़िला बुलंदशहर में संपर्क कर सकते हैं, या फिर इनके मोबाइल नंबर 7839854755 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं अगले खोए हुए व्यक्ति के बारे में। ये मेरठ के रहने वाले हैं और इनका खोए हुए व्यक्ति का नाम है अक्सा परवीन, पुत्री मोहम्मद अफजल, निवासी ग्राम पबला, थाना इचौली, ज़िला मेरठ, और इनका मोबाइल नंबर है 7417199241। इनकी उम्र लगभग 20 साल हैं, 5 फुट लंबाई हैं, और इनके पिता ने इनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई है थाना सदर देहात जनपद मेरठ में। तो अगर आपको इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं सुधीर सिंह, जांच अधिकारी सदर देहात जनपद मेरठ में। और इनके परिजनों के मुताबिक इनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है, और ये 4 अप्रैल 2026 की शाम 6 बजे से लापता हैं, और इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इनके परिजनों ने इनके खोजने का काफ़ी प्रयास किया है, अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों वगैरह से भी जानकारी ली है, लेकिन इनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो अगर आपको इनके बारे में यानी अक्सा परवीन, पुत्री मोहम्मद अफजल, निवासी ग्राम पबला, थाना इचौली, मेरठ के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप इनके परिजनों के फ़ोन नंबर 7417199241 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर जांच अधिकारी पुलिस स्टेशन सदर देहात जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। अगले खोए हुए व्यक्ति का नाम है इकराम, पुत्र याकूब अली, निवासी ग्राम रोहटा, थाना रोहटा, ज़िला मेरठ, और इनकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना रोहटा जनपद मेरठ में दर्ज करा दी गई है। ये दिनांक 10 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजे से कहीं लापता है, और इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 अप्रैल 2024 को दर्ज करा दी गई थी, और आँख कान नाक औसत हैं, 5 फुट 7 इंच लंबाई है, 35 वर्ष की उम्र है, और हरी शर्ट और लोअर पहनकर ये कहीं चले गए हैं। इनको स्थानीय स्तर पर ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया गया है, इनके रिश्तेदारों में, दोस्तों के पास, और स्थानीय बस स्टैंड, होटल, ढाबा, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी खोजने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक ये मिल नहीं पाए हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप थाना रोहटा जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। सोनिया, ये नाम है हमारे अगले गुमशुदा व्यक्ति का, और ये निवासी हैं ग्राम चिंदौड़ी, थाना रोहटा, ज़िला मेरठ के। इनके पति का नाम है श्री इंतजार, और इनका मोबाइल नंबर है 8534083067। 18 वर्ष की उम्र है, 5 फुट 4 इंच लंबाई है, सामान्य चेहरा है, आँख कान नाक औसत है, सांवला रंग है, पीले कलर का सूट सलवार और काले रंग का दुपट्टा पहनी हुई है, और इनको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया गया है। अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो आप जांच अधिकारी थाना रोहटा से संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। हम आकाश

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
2: J&K Development Finance Corporation, a government-owned financial institution in Jammu and Kashmir, has invited applications for the post of a manager legal on regular basis. The vacancy is unreserved and carries a pay scale of 60 to 1,80,000 IDA pattern. Candidates must possess a full-time LLB degree with at least 50% marks from recognized universities and should have 15 years of post-qualification executive experience. Maximum age limit is 50 years as on 30th April 2026. Applications in the prescribed format must be submitted by 19th June 2026 through registered post or speed post to the corporation's Jammu office. Detailed eligibility conditions and application format is available on the corporation's website, that is at www.jkdfc.org. The Indian Pharmacopoeia Commission, IPC, an autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has announced recruitment for 4 scientific assistant posts, 3 unreserved, 1 OBC through direct recruitment. The positions are placed in pay level 6 as per the 7 CPC. IPC plays a key role in developing and updating the Indian pharmacopoeia, coordinating the pharmacovigilance program in India and ensuring drug safety standards nationwide. Candidates should not exceed 35 years of age, with age relaxations applicable as per government rules. Applications along with supporting documents must reach IPC Ghaziabad within 45 days of publication of this advertisement. Detailed qualification and application forms are available on the IPC website. Do refer to www.ipc.gov.in. The Institute of Serology, Kolkata, under the Ministry of Health and Family Welfare, has invited applications for 2 laboratory technician positions on a purely contractual basis under the project Implementation of Water Waste Surveillance for Multi-Pathogens Across India at the National Polio Laboratory. The engagement is initially for 2 years with a consolidated remuneration of 18,000 rupees per month plus HRA. Candidates should possess 12th pass with MLT and DMLT qualifications from a recognized institute and 2 years of relevant experience. The upper age limit is 28 years. Applications must reach the institute within 10 days of publication of this notification. The positions are temporary and do not confer any claim for regular employment. For details, do refer to the website, that is at www.dghs.mohfw.gov.in. The Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, IHM Goa, an autonomous institution under the Ministry of Tourism, Government of India, has announced a vacancy for assistant lecturer cum assistant instructor, 1 unreserved post. IHM Goa has also invited applications for 5 teaching associate positions on a contractual basis, comprising 3 unreserved, 1 OBC and 1 SC vacancies. The institute is looking for hospitality professionals and educators capable of teaching hotel management and catering subjects. Interested candidates should carefully review the eligibility requirements, application procedure available on the institute's website. Detailed eligibility criteria, qualifications and selection procedures available on the institute's website, that is at www.ihmgoa.gov.in. Mera Yuva Bharat, MY Bharat, an autonomous body under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, has invited online applications for the post of Assistant Director, District Youth Officer. The posts are placed in pay level 10 as per the 7 CPC. Recruitment is open to eligible candidates appearing in UPSC Civil Services Examination 2024. Disclosure list available through the Pratibha Setu portal. Selected officers will contribute to youth engagement, leadership development, community participation and implementation of youth-centric government programs across districts. Detailed eligibility conditions, application procedures and important dates are available on the ministry's website. Please do go on to the website, that is at www.yas.gov.in. I repeat, it is www.yas.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
3: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड दूर संचार संवर्ग में कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पद हेतु प्रत्यक्ष भर्ती योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए BSNL की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका पता है www.bsnl.co.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग सहायक, परीक्षा सहायक नियंत्रक, उप नर्सिंग अधीक्षक, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, लेखाधिकारी, सहायक भंडार अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, चालक ग्रेड 2। इसके अतिरिक्त अनुबंध के आधार पर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, सीनियर प्रोग्रामर, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, विधि अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता, स्वच्छता अधिकारी, बायोमेडिकल इंजीनियर, लॉन्ड्री मैनेजर और परफ्यूजनिस्ट। इच्छुक उम्मीदवार एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.aimsdevghar.edu.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है पुस्तकालय अध्यक्ष, अधीक्षण अभियंता, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, उप कुल सचिव, कार्यकारी अभियंता, सहायक कुल सचिव, सहायक कार्यकारी अभियंता, खेल अधिकारी और उप कुल सचिव। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है जिनमें विशेषज्ञता के आधार पर निर्धारित विभाग हैं एनाटॉमी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। वेतन संरचना, आयु, योग्यता शर्तें, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, शोध प्रकाशन और अन्य शर्तों के बारे में विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.esic.gov.in। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 27 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नज़र और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ जया भारती और आपके साथ और हमारे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार सिन्हा। हेलो प्रशांत।
1: हेलो एंड गुड डे जया। लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम प्रशांत कुमार सिन्हा एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट जया भारती। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। सो ऑल ऑफ दीज कमिंग योर वे ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
0: बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी विल आल्सो अटेंड G7 समिट एट एवियन इन फ्रांस।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
1: इंडिया लॉजेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू द यूएस ओवर यूएस नेवी स्ट्राइक्स ऑन ऑयल शिप इन द गल्फ, किलिंग 3 इंडियन सेलर्स।
0: वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त।
1: एंड इन मेंस क्रिकेट, टॉस फॉर द फर्स्ट ओडीआई ऑफ 3 मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान डिलेड ड्यू टू रेन इन धर्मशाला। And listeners, now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about Antyodaya in action. When we speak of development, what are we really talking about? Is it the infrastructure we build, the wealth we create, or the records we break?
0: बिल्कुल प्रशांत, और ये उपलब्धियां निश्चित रूप से मायने रखती हैं, लेकिन शायद किसी देश की तरक्की का असली पैमाना एक साधारण सवाल में छिपा है, जब मौका आता है तो क्या वे हर किसी तक पहुंचता है?
1: Absolutely. Does it reach the last household in the remotest village? Does it create opportunities for those who have long remained on the margins? Because development is meaningful only when no one is left behind.
0: और लंबे समय तक बहुत से लोग भारत की विकास गाथा के किनारे पर खड़े रहे, उन्होंने अपने आसपास बदलाव होते देखा, लेकिन अक्सर वे इसकी पहुंच से बाहर ही रहे।
1: And today that story is changing, and at the heart of this transformation lies a powerful idea, Antyodaya, the belief that development must begin with those who need it most.
0: बिल्कुल, और अंत्योदय का मानना है कि जो व्यक्ति कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उसे अवसर मिलने में सबसे आगे रहने का हक है। और पिछले 12 वर्षों में यह विचार धीरे धीरे एक सोच से आगे बढ़कर असल काम में बदल गया है। भारत भर में, यानी कि पूरे देश भर के गांवों और समुदायों में कितने ही ऐसे बेहतरीन हुनर मौजूद हैं जिन्हें कभी पहचान नहीं मिल पाती।
1: Indeed, how much knowledge silently passes from one generation to another without ever becoming an opportunity. In tribal communities, traditional wisdom has existed for centuries. Knowledge of herbs, knowledge of medicinal plants, knowledge about nature's healing systems, isn't it?
0: और सालों तक कई आदिवासी परिवार जंगल से मिलने वाली उपज को उसी कीमत पर बेचते रहे जो व्यापारी उन्हें देते थे। हालांकि इसकी जानकारी तो उन्हीं के पास थी, लेकिन दुख इस बात का है कि इसका मुनाफा अक्सर उन्हें नहीं मिलता था।
1: Soon the story took a different direction. In a tribal community, women who had inherited generations of knowledge about medicinal herbs came together through a Vandhan Vikas Kendra.
0: और कच्चा माल बेचने के बजाय उन्होंने आयुर्वेद तेल, दवाइयां और हर्बल उत्पाद बनाना शुरू किया। उन्हें उद्यमिता की ट्रेनिंग, डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग और मार्केटिंग में मदद मिली।
1: एंड टुडे दे रन अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज अंडर द ब्रांड छत्तीसगढ़ हर्बल्स। दिस इज सो फैसिनेटिंग, इजंट इट? एन एज ओल्ड क्राफ्ट नर्चर्ड विद इन होम्स एंड कम्युनिटीज इज नाउ बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इनकम एंड लोकल ग्रोथ।
0: और पूरे देश में ऐसे कितने ही छुपे हुए हुनर हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए बस सही सहारे की जरूरत है। पीएम जनमन जैसी पहले ठीक इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं।
1: There was a time when many particularly vulnerable tribal groups or people

0: SVTGs, settlements, lacked basic necessities. Well, when geography stands in the way of progress, the solution is simple: bringing opportunities closer to people rather than asking people to travel great distances in search of them.
1: पीएम जनमन योजना के पीछे ठीक यही सोच है। आदिवासी इलाकों में पीएम जनमन पहल बेहतर आवास, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका में मदद जैसी सुविधाओं के जरिए बदलाव ला रही है।
0: The impact extends far beyond infrastructure because a road is never only a road. Sometimes a road means a safer journey to the hospital for a pregnant woman. Sometimes it means a student no longer missing classes because the school is too far away.
1: और श्रोताओं, अब आइए आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसे एक ऐसे ही छोटे गांव की ओर जहां सर्दियां बहुत कड़ाके की होती है। अक्सर सड़कें बर्फ के नीचे दब जाती हैं, बिजली की सप्लाई में भी कभी कभी अनिश्चितता आ जाती है। बहुत से बच्चे यह मानते हुए बड़े होते हैं कि मौके कहीं दूर दराज की जगहों पर ही मिलते हैं।
0: However, everything begins to shift when a good school is no longer a distant dream. Let's introduce our listeners to Jatin. Jatin enrolled in an Eklavya model residential school nearby. The school offered structured learning, dedicated teachers, laboratories, academic guidance, among others.
1: बिल्कुल, और पढ़ाई के दौरान पिता को खोने पर जिंदगी ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। ऐसे हालात में कई छात्र शायद हार मान लेते, लेकिन जतिन के आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी, प्रेरणा दी। उन्होंने जी जान से पढ़ाई की और आखिरकार जी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक हासिल की।
0: एंड टुडे ही स्टडीज एट IIT जोधपुर। व्हाट डज जतिन्स जर्नी टेल अस? It is actually a message that talent can emerge from any corner of the country, no matter how remote. Across thousands of villages, countless young minds carry dreams of becoming scientists, doctors, engineers, and innovators. The missing link was often not ability, but access. Today, that reality is beginning to change.
1: और ऐसे ही परिवर्तन और उम्मीद से भरी कहानियों को सुनते हुए प्रशांत, मुझे कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
0: How beautiful. We too should remember that Walt Whitman once said, keep your face always towards the sunshine and the shadows will fall behind you.
1: और इमारतें कुछ ही महीनों में बनाई जा सकती है, सड़कें कुछ सालों में बन सकती है, लेकिन क्या खोई हुई भाषा को फिर से जीवित किया जा सकता है? क्या भूली बिसरी परंपराओं को आसानी से वापस लाया जा सकता है? विरासत को बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरीकों से भविष्य को आकार देते हैं।
0: That is why tribal research institutes and tribal freedom fighter museums are playing an important role. They are preserving languages, traditions, indigenous knowledge, and the stories of heroes who fought for freedom long before many history books acknowledged them.
1: तो श्रोताओं, क्या आप हमारे आसपास नए दिन की शुरुआत के संकेतों के बारे में सोच सकते हैं? सड़कें साफ सुथरी हैं, कचरा उठा लिया गया है, अपने आकर्षक गाने के साथ कचरा उठाने वाली जानी पहचानी गाड़ी पहले ही गुजर चुकी है।
0: However, none of this happens on its own. It is the result of the dedication of thousands of sanitation workers who start their day while most of us are still asleep. Yet for years, many of them face unsafe and hazardous working conditions.
1: क्या शहरों को साफ सुथरा रखने वाले लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? इसका साफ जवाब है, नहीं। इसलिए मशीनीकरण, सुरक्षा उपकरणों, ट्रेनिंग और आजीविका के वैकल्पिक मौकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आखिरकार विकास का मतलब सम्मानजनक जीवन भी तो है।
0: Should a child's future depend on the district where he or she was born? Should a village remain disadvantaged because it is difficult to reach? The Aspirational Districts program was built around this very idea. Geography should not determine destiny. Across some of India's most underserved districts, local solutions have produced remarkable outcomes.
1: बिल्कुल, और अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहने वाले एक जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट और नाव क्लिनिक के जरिए दूर दराज के गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई। वहीं दूसरे जिले में डिजिटल मॉनिटरिंग के इस्तेमाल ने गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के तरीकों को बदला, जिससे स्वास्थ्य के नतीजों में जबरदस्त सुधार हुआ है।
0: Listeners, these are not one size fits all.

0: Research Institute under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. In its early days of formation, this institute played an important role by conducting outstanding research work for the Sukkur Barrage in Sindh, the largest irrigation project in the world from 1927 to 1932. With the dawn of independence and launching of planned development of water resources of the nation, CWPRS became the principal central agency to cater to the research and development needs of hydraulics and allied disciplines for evolving safe and economical designs of hydraulic structures. Involved in water resources projects, river engineering, power generation and coastal engineering projects, advisory services are offered to the government within the sphere of its activities by participation in various expert committees. CWPRS campus, situated downstream of Khadakwasla Dam in southwesterly part of Pune, occupies an area of about 450 acres. CWPRS has been recognized as the regional laboratory of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP, since 1971. The institution, with multidisciplinary approach in its activities, thus represents unique services available to the country and the ESCAP region. For Parikrama, Manoj क्षीरसागर, पुणे।
1: श्रोताओं, पुणे से अब आपको आंध्र प्रदेश की ओर लिए चलते हैं, जहां मछली पालन और एक्वाकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलने वाला है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से घोषित कई उपायों का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की आजीविका को मजबूत करना है। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: A series of initiatives announced by both governments pointing to a long-term strategy aimed at increasing seafood exports, improving infrastructure, and creating new economic opportunities for coastal communities in Andhra Pradesh. A key highlight is the center's decision to provide 72 crore rupees for the modernization of Kakinada port. The project is expected to strengthen export infrastructure, improve logistics and support the growing seafood industry in the state. The state government has also agreed to allocate land for a regional office of the Union Fisheries Department, which is expected to improve coordination and speed up implementation of fisheries related schemes. At the state level, Andhra Pradesh plans to develop an integrated aqua corridor connecting Amaravati, Bhimavaram, Kakinada, Vishakhapatnam, Krishnapatnam and Nellore. The proposed corridor will bring together research institutions, technology providers, startups and processing units to improve productivity in the aqua sector. The government has also announced the Andhra Shrimp India Seafood Branding Initiative to increase the global visibility of Indian seafood products. The center is also supporting efforts to expand seafood processing, improve market access and boost exports. With Andhra Pradesh already accounting for a major share of India's shrimp production and seafood exports, the growing center-state partnership is expected to drive investment, generate employment, and strengthen the state's role in India's blue economy ambitions. Allu Murli for Parikrama, Akashvani News, Vishakhapatnam.
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जहां महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया।
3: एंड इन मेंस क्रिकेट, द टॉस फॉर द फर्स्ट ओडीआई ऑफ द थ्री मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान हैज बीन डिलेड ड्यू टू रेन इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। द मैच वाज अर्लियर शेड्यूल्ड टू बिगिन एट 1:30 PM। स्टार इंडियन बैटर एंड फॉर्मर स्किपर रोहित शर्मा इज एक्सपेक्टेड टू बी इन एक्शन इन टुडेज match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai.
1: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी नरुथ नाथ का स्मरण कर रहे हैं, जो 13 जून 1930 को शहीद हुए थे। गुजरात के सूरत जिले के नरुतनाथ ने मई 1930 में धरसाना नामक सत्याग्रह में भाग लिया था।
5: 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी ने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर छापा मारने का निर्णय लिया, तो उन्हें वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और उन्हें अपनी योजना की जानकारी दी। गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। हालांकि गांधी

0: आज हम स्वतंत्रता सेनानी गणेशी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। शुरुआत में गणेशी सिंह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान सेना की नौकरी छोड़ दी और विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को भी अंग्रेजों पर हमले के लिए प्रेरित किया और अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने को ललकारा।
1: अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए वे पकड़ लिए गए और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 जून 1858 को उनका निधन हो गया। इस महान शहीद को हमारा शत शत नमन।
0: 13 जून 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश शासन समाप्त करने के अपने लक्ष्य का उद्घोष किया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसके लिए 2 जुलाई को सिंगापुर गए।
1: अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के प्रसिद्ध कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी। नेताजी ने उद्घोष किया, संघर्ष की शुरुआत और संचालन अस्थायी सरकार का दायित्व होगा, जिससे भारत की धरती से ब्रिटिश और उनके सहयोगियों का निष्कासन सुनिश्चित होगा। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी।
2: आज का दिन भारतीय सैन्य इतिहास में शौर्य की उस कहानी का गवाह है जिसने 1999 के करगिल युद्ध का पूरा रुख पलट दिया था। आज तोलोलिंग फतह का दिन है, लेकिन इस फतह की कीमत देश ने अपने 2 जांबाज बेटों को खोकर चुकाई थी। आज देश मेजर मनोज तलवार और महावीर चक्र विजेता मेजर विवेक गुप्ता के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है।
3: Today is the death anniversary of freedom fighter Nanak Bhil. Hailing from the Bundi district in Rajasthan, he played a pivotal role in Indian independence movement in Bundi during British colonial rule in India.
2: जब भी देशप्रेम की बात होती है तो हमारे जहन में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का चेहरा उभर आता है, या फिर इन सभी शहीदों की बात करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में इन शहीदों के जज्बे को अपनी कलम से अमर कर देने वाला जादूगर कौन था? वो महान शख्सियत थे प्रेम धवन। आज उनकी जयंती है। प्रेम धवन सिर्फ एक गीतकार नहीं बल्कि आजादी के लड़ाई में शामिल एक सच्चे देशभक्त भी थे। उनकी आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली है।

प्रेम धवन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे जितने कमाल के गीतकार थे उतने ही बेहतरीन संगीतकार और कोरियोग्राफर भी थे। और दिलचस्प बात यह है कि प्रेम धवन ने जहां एक तरफ जोशीले देशभक्ति गीत लिखे, वहीं दूसरी तरफ चंदा मामा दूर के जैसी कोमल और प्यारी लोरी भी रची, जो उनकी लेखनी की विविधता को दर्शाती है। यह गीत दशकों से भारत में हर घर का हिस्सा रहा है और आज भी बच्चों को सुलाने के लिए सबसे प्रसिद्ध लोरी मानी जाती है। इसके अलावा फिल्म उपकार का वो सदाबहार गाना कस्मे वादे प्यार वफा सब भला कौन भूल सकता है।

0: 1980 में 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी का बेहद लोकप्रिय गीत सुनते हैं, जिसके बोल आशा और पुरानी बातों को भूलकर भविष्य की ओर बढ़ने के संकल्प को दर्शाते हैं। सुनते हैं छोड़ो कल की बातें।
1: छोड़ो

0: कहानी।
1: Listeners, today is the birthday of Arjuna Awardee, archer Deepika Kumari. Born in 1994 on today's date, she is a four-time Olympian and two-time World Championships silver medalist. She is one of the most decorated Indian archers and the first Indian archer to rise to the top of the world rankings, reaching the world number one ranking in 2012. She has been honored with the Arjuna Award in 2012 and the Padma Shri in 2016 for her contribution to Indian sports. So, happy birthday once again.
0: आज ही हिंदी के विख्यात उपन्यासकार, नाटककार, समीक्षक और पत्रकार मुद्रा राक्षस साहब की भी पुण्यतिथि है। 21 जून 1933 को लखनऊ के पास जन्मे मुद्रा राक्षस जी का असल नाम सुभाष चंद्र गुप्ता था, लेकिन साहित्य की दुनिया उन्हें उनके उपनाम मुद्रा राक्षस से ही जानती है। वे सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि शोषितों और वंचितों की बुलंद आवाज थे। उनकी लेखनी में एक अद्भुत धार थी। वे मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को जगाना और उसे आईना दिखाना भी है। उनके इसी अनूठे योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया।
1: Listeners, today is the birth anniversary of William Butler Yeats, a renowned Irish poet, writer and literary critic who was one of the foremost figures of 20th century literature. Widely known for many of his works, including the most relatable poem, An Irish Airman Foresees His Death, he was a driving force behind the Irish literary revival. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1923.
0: Now let's talk about art. Art is not only the art that lives on the walls. Art is the art that lives in the stones and stones and stones of life. ऐसे ही थे पद्मश्री से सम्मानित महान मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमकर। उनकी कला की सबसे बड़ी खासियत थी सजीवता। जब आप उनकी बनाई मूर्तियां देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो वो अब भी बोल पड़ेंगी। आज ही के दिन साल 1967 में देश ने अपने इस जादुई कलाकार को खोया था, जिन्होंने अपनी मूर्तिकला से देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा किया था। आज ही हिंदी साहित्य की एक महान लेखिका कवयित्री कीर्ति चौधरी की भी पुण्यतिथि है। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने महादेवी वर्मा के बाद हिंदी कविता में आए खालीपन को अपनी मौलिकता से भरा। उनकी कविताओं में गांव की सौंधी खुशबू भी थी और शहर की आपाधापी का यथार्थ भी था। उनकी एक बेहद खूबसूरत कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। बरसते हैं मेघ झरझर, भीगती है धरा उड़ती गंध, चाहता मन छोड़ दो निर्बंध तन को, यहीं भीगे भीग जाए देह का हर रंध्र। और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के इस अंक को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए जया भारती और प्रशांत कुमार सिन्हा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। अगर आप हमारा कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप हमारा न्यूज मैगजीन शो परिक्रमा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र

0: फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्नि वीर वायु हेमाराम कुमावत और अग्नि वीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 6ठे ओवर में 1 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit today to France and Slovakia to further deepen bilateral ties with the 2 European countries. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. The two leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. Indian Air Force IAF said a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. The IAF has expressed grief at the loss of lives. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief over the loss of 5 air warriors. In a social media post, Mr. Singh said their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. Principal Secretary to the Prime Minister P.K. Mishra today said that India's cities must be economically productive, environmentally sustainable, socially inclusive, technologically advanced and institutionally resilient. Mr. Mishra said this while addressing the Golden Jubilee celebrations of the National Institute of Urban Affairs, NIUA, in New Delhi. The Principal Secretary said the NIUA has contributed significantly to shaping India's urban discourse, strengthening institutional capacities and supporting cities through evolving development transitions. Mr. Mishra said that India's progress in digital public infrastructure, financial inclusion, renewable energy, logistics and public service delivery has demonstrated both capability and confidence in managing large-scale transformation under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
3: This milestone today is not only an occasion to celebrate an institution, but also an opportunity to reflect on India's urban transformation and the path ahead as we move forward to achieve our goal of Viksit Bharat, envisioned by our Prime Minister. India's development journey today is defined by confidence, aspiration, and unprecedented transformation across infrastructure, technology, governance, and urbanization.
2: Union Transport Minister Nitin Gadkari today said the Ministry of Transport is emphasizing on employment generation alongside infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing a press conference organized in Nagpur to highlight the achievements and developmental initiatives undertaken during the last 12 years of the central government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Mr. Gadkari, while reviewing various welfare initiatives of the central government, stated that more than 58 crore bank accounts have been opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana during the last 12 years. In the wake of the Nipah outbreak in Kerala, experts from the National Centre for Disease Control reached Kozhikode district today to review the containment measures. A 43-year-old man from Ramanattukara who tested positive for the Nipah virus is undergoing ventilator support at Kozhikode Medical College Hospital. The first dose of monoclonal antibody treatment has been administered to the patient following the recommendation of the medical board. In the ICC Women's T20 World Cup, the Group B clash between Scotland and Ireland is currently underway at Old Trafford in Manchester. The Indian women's team will begin its campaign against arch rivals Pakistan at Edgbaston in Birmingham tomorrow. Meanwhile, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. And with that, we end this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. संध्या के 5:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबिता शर्मा से ये लोकगीत, और आइए एक और लोकगीत आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं राजेंद्र जाटव।

रुपए दिए सौ और दस के तो मैं गेहूँ ले आई दस के लाई जो, दस के तो मैं गेहूँ ले आई दस के लाई जो।

रुपए बचे चालीस और दस के तो मैं जूते लाई दस की होगी पालिश। दस के तो मैं जूते लाई दस की होगी पालिश।

रुपए बचे 20, और 10 की तो राजेंद्र जाटव काफी लाया, 10 की दे दी 20, और 10 की तो राजेंद्र जाटव काफी लाया, 10 की दे दी 20, हिसाब मेरा।

श्रोताओं सुन रहे थे आप राजेंद्र जाटव से ये लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको एक और लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: पुष्पा गोसाई द्वारा गाए गए इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार साथियों, मैं अभिनव कुमार झा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी
3: शिवांश रक्षित।
2: खेल जगत की तमाम गतिविधियां और खबरें लेकर हम फिर आ गए हैं, तो अगले आधे घंटे अपने रेडियो सेट्स के पास बैठे रहिए और सुनते रहिए खेल खिलाड़ी।
3: श्रोता, आज जानेंगे हम लोग फीफा से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, फिर हम चलेंगे T20 क्रिकेट विश्व कप के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आर्चरी की, फिर करेंगे ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन की, फिर इंडियन एथलेटिक्स सीरीज की।
2: और अब श्रोताओं, बिना समय बिताए हुए बात चालू कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप से। जी हाँ, तो फीफा वर्ल्ड कप का बुखार, फुटबॉल का बुखार पूरे विश्व में छाया हुआ है। क्या कुछ गतिविधियां कल हुई और आज होने वाली हैं, इस पर एक

0: सपनों की उड़ान, जुनून की पहचान और करोड़ों दिलों की धड़कन, फीफा विश्व कप एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर है। हर पास, हर बचाव, हर गोल और हर जीत के पीछे छिपी होती है वर्षों की मेहनत, संघर्ष और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने की चाह। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल का सबसे बड़ा मंच सच चुका है और अब नजरें टिकी हैं उन पलों पर जो आने वाले दिनों में इतिहास बनेंगे। आइए जानते हैं फीफा विश्व कप 2026 में आज क्या रहा खास और किन टीमों ने अपने अभियान का शानदार आगाज किया। तो आइए श्रोताओं जानते हैं कल के खेले गए मैच के बारे में जो कि कनाडा और बोस्निया के बीच में खेला गया था। कनाडा और बोस्निया के बीच फीफा वर्ल्ड कप का 2026 का तीसरा मैच खेला गया था। 1-1 से यह मैच ड्रॉ रहा और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। इसी के साथ कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अंक अर्जित किया। जी हाँ, इससे पहले सह मेजबान कनाडा ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला जिसमें उन्हें सभी 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। ये पहला मौका है जब कनाडा फीफा वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल पाया है। ये उनके लिए एक ड्रीम स्टार्ट है। कनाडा ने इससे पहले 1986 और 2022 में 2 वर्ल्ड कप खेले थे। कनाडा ने शानदार शुरुआत की और खचाखच भरे घरेलू दर्शकों की एनर्जी का फायदा उठाने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन शुरुआती जोश उस समय गायब हो गया जब बोस्निया ने सबको याद दिलाया कि वर्ल्ड कप सिर्फ अच्छी वाइब्स से नहीं जीते जाते। विजिटर्स ने 21वें मिनट में कॉर्नर से गोल किया। इवान बेसिक ने बॉक्स में एक टिनजिंग बॉल डाली, सीड ने उसे गोल के पार फ्लिक किया और जोवो ने सबसे तेजी से रिएक्ट करते हुए पास से गोल कर दिया जो उनके करियर का पहला इंटरनेशनल गोल था। इस गोल ने मैच का रिदम बदल दिया। बोस्निया और नीचे बैठकर अपने बॉक्स की डिफेंड करने और कनाडा को उन्हें हराने की चुनौती देने में खुश था। मेजबानों ने पोजीशन और टेरिटरी का मजा लिया, लेकिन विजिटर्स के बॉल के पीछे लोगों का जमा होने से साफ मौके मिलना मुश्किल हो गया। हाफ टाइम तक कनाडा के पास काफी पोजीशन था लेकिन बोस्निया लीड में था। दूसरे हाफ जल्द ही घेराबंदी में बदल गया। कनाडा ने और जोर लगाया और तेजी से अटैक किया और उन मौकों को बनाना शुरू किया जो ब्रेक से पहले नहीं मिल रहे थे। उन्हें सबसे अच्छा मौका 53वें मिनट में मिला जब स्टीफन ने रिची लारिया को गोल करने के लिए स्लाइड किया। लारिया ने गोलकीपर निकोला को छकाया और गोल करने का पक्का इरादा लग रहा था। किसी तरह कोला सिनाक ने संभल कर शॉट को क्रॉस बार पर मारा और फिर बच निकला। ये उस तरह का इंटरवेंशन था जिसके बारे में डिफेंडर अपने देखते हैं और स्ट्राइकर उसके बारे में बुरे सपने देखते हैं। कुछ ही देर बाद बोस्निया ने अपनी बढ़त लगभग 2 गुना कर ली जब एमर्टन ने आगे बढ़कर गोल किया, लेकिन मैक्सिम अपनी लाइन से दौड़कर आए और एक जरूरी इंटरवेंशन किया। जैसे जैसे समय खत्म हो रहा था खेल कनाडा की निराशाजनक हार की ओर बढ़ता दिख रहा था। फिर जैसी मार्श अपने बेंच की ओर मुड़े लारिन का असर तुरंत हुआ। प्रॉमिस डेविड ने स्ट्राइकर के रास्ते में एक चालाक पास दिया और कनाडा के अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ने बाकी काम कर दिया। एक तेज टर्न लेकर उन्होंने 78वें मिनट में निचले कोने में एक लो स्ट्राइक मारने से पहले अपने लिए जगह बनाई। पूरी रात गेम का पीछा करने के बाद कनाडा को आखिरकार अपना इनाम मिला। लॉरिन ने स्टॉपेज टाइम में भी लगभग टर्न अराउंड पूरा कर लिया था, लेकिन तारिक ने बोस्निया का पॉइंट बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। अब मेक्सिको और कनाडा के बाद मेजबान अमेरिका ने भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है। यूएसए ने अपने पहले मैच में पैराग्वे को 4-1 से हराया। अमेरिका की जीत के हीरो फोलारेन बालोगुन रहे जिन्होंने 2 गोल दागे।
1: The world of football has come to the nation of soccer and the FIFA World Cup 2026 co-hosts the USA face off against Paraguay in the first match. In Group D by the USA, trying to stretch the Paraguay back line. They've certainly done that. It's a big chance. It's an own goal. Looked like it came off Demian Bobadilla, but the USA hit the front.
0: वो इसी के साथ मेजबान टीम के लिए नए हीरो बन गए। बता दे कि बालोगुन 3 में से किसी भी देश के लिए खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने

अमेरिका को चुना और अब विश्व कप फुटबॉल में पहले मैच में उन्होंने 2 गोल करके अपनी टीम को पैराग्वे पर 4-1 से शानदार जीत दिलाई। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम की मौजूदगी में बालागुन 1930 के बाद वर्ल्ड कप के किसी मैच में 2 गोल करने वाले पहली अमेरिकी खिलाड़ी बन गए। इस समय बर्ट ने पैराग्वे के खिलाफ ही अमेरिका की 3-0 की जीत में 3 गोल किए थे, जो वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली हैट्रिक थी। अमेरिका की विश्व कप में यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उसने इस टूर्नामेंट में कभी 3 से अधिक गोल नहीं किए थे। यही नहीं, अमेरिका की टीम ने पहले हाफ में 3 गोल दागे, जो विश्व कप में उसका रिकॉर्ड है। अमेरिका ने 4 साल पहले कतर में खेले गए विश्व कप में अपने 4 मैचों में कुल मिलाकर केवल 3 गोल किए थे। नए कोच मॉरिशियो के मार्गदर्शन में अलग शैली में खेल रही अमेरिका की टीम ने अपने खेल से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बालागुन का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में नाइजीरियाई माता पिता के घर हुआ था। उनके जन्म के 1 महीने बाद उनके माता पिता इंग्लैंड चले गए, जहां वह लंदन में पले बढ़े। उन्होंने 8 साल की उम्र में आर्सेनल की अकादमी में दाखिला लिया। उन्होंने युवा स्तर पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही अमेरिका की अंडर-18 टीम के लिए भी खेला। इस तरह से बालागुन के पास अमेरिका के अलावा इंग्लैंड और नाइजीरिया की तरफ से खेलने का भी मौका था। इंग्लैंड की टीम में स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं है और इसलिए हो सकता था कि उन्हें टीम में जगह नहीं मिलती, जबकि नाइजीरिया इस विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही। उन्होंने सही समय पर सही फैसला किया और इसका परिणाम यह है कि अब अमेरिका के प्रत्येक फुटबॉल प्रेमी की जुबान पर एक ही नाम है, बालागुन। फीफा वर्ल्ड कप में पहली जीत से यूएसए ग्रुप डी में शुरुआती तौर पर मजबूत स्थिति में है। मेजबान टीम का अगला मुकाबला 19 जून को सिएटल में ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि पैराग्वे उसी दिन बाद में तुर्की से भिड़ेगी। टूर्नामेंट के तीसरे दिन यानी आज 13 जून फुटबॉल प्रेमियों को एक के बाद एक 3 बेहद रोमांचक ग्रुप स्टेज मैच देखने को मिलने वाले हैं। आज के दिन ग्रुप बी और ग्रुप सी की टीमें मैदान पर उतरकर सुपर राउंड में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। पहला मैच ग्रुप बी के टीमों के बीच खेला जाएगा, जहां कतर और स्विट्जरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। दूसरा और तीसरा मैच ग्रुप सी की टीमों के बीच खेला जाएगा। दिन का पहला मुकाबला ग्रुप बी से है, जहां कतर का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। स्विट्जरलैंड की मजबूत डिफेंस के सामने कतर के स्ट्राइकर्स की असली परीक्षा होने वाली है। इसके बाद ग्रुप सी के सबसे बड़े मुकाबले में फुटबॉल जगत की सबसे मजबूत टीमों में से एक ब्राजील की भिड़ंत मोरक्को से होगी। न्यू जर्सी के फेमस मेटलाइफ स्टेडियम में स्थानीय समय अनुसार शाम 6 बजे होने वाले इस मैच पर पूरी दुनिया की नजर टिकी होगी। फैंस भारत में ये मैच 14 जून को सुबह 3:30 बजे से देख पाएंगे। मोरक्को की टीम पिछले वर्ल्ड कप के अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, जबकि ब्राजील की टीम अपनी 5 सितारा साख को मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तीसरे दिन का आखिरी मैच भी ग्रुप सी का है, जिसमें हैती और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मैसाचुसेट्स के फॉक्सबरो स्थित बॉस्टन स्टेडियम में यह मुकाबला स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमों के लिए ग्रुप स्टेज की दौड़ में बने रहने के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए ये सभी मुकाबले देर रात और कल सुबह लाइव प्रसारित किए जाएंगे। भारत में ये मुकाबला 14 जून को सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। इसी के बाद रविवार यानी कल ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच रोमांचक भिड़ंत होगी। टूर्नामेंट के तीसरे दिन होने वाले इस मुकाबले तक ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन की स्थिति या तो साफ हो चुकी होगी या बहुत कांटे की टक्कर वाली स्थिति बन चुकी होगी। ऐसे में कनाडा के वैंक्यूवर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की का यह मुकाबला निर्णायक हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया को इसमें तुर्की से सावधान रहने की जरूरत होगी।

0: फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक चलने वाला है साथियों, और बहुत लंबा समय ये टूर्नामेंट चलेगा। तो हमारे मन में कुछ प्रश्न थे, कुछ क्वेश्चंस थे, जिसको लेके हम अपने एक विशेष विशेष विशेष कमेंट्रेटर और फॉर्मर गोलकीपर गौस मोहम्मद से हमने बातचीत की। फॉर्मर गोलकीपर और कमेंट्रेटर हैं गौस मोहम्मद, उनसे हमने बातचीत की। तो क्या कुछ कहा उन्होंने फीफा विश्व कप के बारे में, आइए सुनते हैं।
1: फीफा अपने आप में एक ऐसा नाम है कि कोई भी

0: अगर आप इस वक्त किसी भी चाट की दुकान पे जाएंगी या किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगी या किसी स्पोर्ट्स के अदर देन फुटबॉल के भी स्पोर्ट्स पे जाएंगे, चर्चा होती है फीफा कप की। तो फीफा कप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि जो वार चल रही है उसके अंदर थोड़ी रुकावट आई है। फीफा से कोई भी शरारत नहीं करेगा, अगर कर भी रहा होगा तो कुछ दिन के लिए रोकेगा वो।
1: सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार 3 देश फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, तो क्या इन टीमों को अपने घरेलू मैदानों का फायदा मिलेगा? और जैसा हमने कल के मैच में देखा कि अमेरिका और पैराग्वे का मैच हुआ था और अमेरिका 4-1 से जीती है।
0: नहीं, अमेरिका हमेशा एक गति की फुटबॉल खेलता है और अमेरिका कभी भी किसी भी टीम के लिए मुश्किल है। और पिछले काफी अरसे से अमेरिका ने बहुत सीरियस गंभीरता से फुटबॉल को लिया है। वैसे तो वो कोई भी चीज मजाक में नहीं लेते, पर यह है कि फुटबॉल में अमेरिका एक तो स्पीडी रहते हैं और मौसम का जो आपने बताया वो उनका बड़ा गजब का एडवांटेज रहेगा, खास करके मैक्सिको को भी रहेगा। तो उन्होंने जो ये मैच जीता, ये दूसरी टीमों के लिए चुनौती है कि देखिए ये मेजबान को फायदा हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि फुटबॉल जो है माइंड गेम भी है, फिजिकल गेम भी है, टैक्टिकल बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे अपना स्टेमिना को बरकरार रखते हुए नो रिस्क जोन में जाना पड़ेगा। अगर आपकी चोट लग गई वो ठीक होना इतना आसान नहीं है। तो फिट जो आधा अनफिट खिलाड़ी अपनी चोट को छुपा के जाएगा वो इस वेदर में एक्सपोज हो जाएगा, उसकी पोल खुल जाएगी।
1: पूरे विश्व में तो फीफा का बोलबाला है ही और भारत में भी इसके कम फैन नहीं हैं, लेकिन भारत में ये बस फैन तक ही बात क्यों रुक जाती है? खिलाड़ी क्यों नहीं निकल पा रहे?
0: देखिए, ये हर फीफा कप में ये सवाल उठता है, आपने भी किया, आकाशवाणी हमेशा ये सवाल करती रही है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, आगाह कर दूं और चेतावनी पूरे विश्व को दे दूं कि आने वाले वक्त में एट एनी कॉस्ट भारतीय टीम फीफा कप खेलेगी, क्योंकि टीम बढ़ने से एशिया का कोटा भी बढ़ गया है, 8 तक पहुंच गया है। और इस ये पॉसिबल है कि भारतीय टीम पहले 8 में आ सकती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय मूल के खिलाड़ी दुनिया की अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं, केरला का हो या तमिलनाडु से हो, कहीं से भी हो। तो मुझे लगता है कि आपको अगले विश्व कप नहीं, उससे अगले में भारतीय टीम नजर आएगी फीफा में और बहुत बेहतरीन खेलेगी, सबको हैरानी में भी डालेगी। वो पहले की बात थी कि फीफा कप का एक सवाल होता था और हम खेल कहते थे कि 10 साल 20 साल, लेकिन अब टीमें बढ़ने से भारतीय टीम के चांस अच्छे हो गए, क्योंकि जो टारगेट भारतीय टीम देखेगी उस पर मेहनत करेगी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे हैं मांडविया साहब, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, कल्याण चौबे भी काफी मेहनत कर रहे हैं, और असली मेहनत खिलाड़ियों को करनी पड़ेगी। तो जब तक ये ग्रास रूट पे हर स्कूल में लोगों को ये चाहिए कि वो फुटबॉल खेलें, ग्राउंड हो, और मेरे ख्याल से आने वाले उसमें ये एक खाली एक डायलॉग नहीं रह जाएगा, ये सत्य होगा और भारतीय टीम विश्व कप खेलेगी आगामी।
2: तो श्रोताओं, ये तो बात हुई फुटबॉल से जुड़ी हुई। इसके बाद हम बात करते हैं आर्चरी से जुड़ी हुई खबरों की। तो अभिनव, बताइए क्या कुछ है हमारे श्रोताओं के लिए।
1: तुर्की में खेले जा रहे अंटालिया 2026 तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में भारतीय तीरंदाजों का प्रदर्शन उतार चढ़ाव से बढ़ा रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में आई, जो कल आई, जहां सेना के तीरंदाज धीरज बोमा देवर ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। धीरज ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईरान के मोहम्मद हुसैन गोलशानी को 6-2 से और फिर क्वार्टर फाइनल में इटली के मासा मिलियानो मंदिया को 6-2 से हराकर अंतिम 4 का टिकट पक्का किया। हालांकि कल धीरज को छोड़कर बाकी सभी भारतीय तीरंदाजों का निराशा हाथ लगी। महिला रिकर्व वर्ग में पूर्व नंबर एक तीरंदाज दीपिका कुमारी प्री क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन वहां उन्हें स्पेन की एलिया कनालेस से 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। जबकि एशियाई खेलों की टीम में शामिल कुमकुम महतो, अंकिता भगत और कीर्ति शर्मा राउंड ऑफ 32 में ही बाहर हो गईं। कंपाउंड वर्ग में तो भारत का अभियान बेहद निराशाजनक रहा और इस बार भारतीय कंपाउंड तीरंदाज बिना किसी पदक के खाली हाथ लौटे। आज का दिन टूर्नामेंट के शेड्यूल के अनुसार पूरी तरह से कंपाउंड तीरंदाजी के फाइनल मुकाबले

0: के लिए रिजर्व है। चूंकि भारत की कंपाउंड चुनौती कल ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए आज के मुख्य मैदान और मेडल मैचों के एक्शन में कोई भी भारतीय खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करता हुआ नजर नहीं आएगा। भारतीय फैंस की नज़रें आज के इस गैप के बाद सीधे कल होने वाले बड़े मुकाबलों पर टिकी है। कल यानी 14 जून को विश्व कप का आखिरी और सबसे रोमांचक दिन होने वाला है, क्योंकि कल रिकर्व वर्ग के सभी फाइनल मैच खेले जाएंगे। भारत के पास कल इतिहास रचने और 2 स्वर्ण पदक जीतने का सुनहरा मौका होगा। धीरज बोमदेवरा कल दोपहर 3:25 पर पुरुष व्यक्तिगत सेमीफाइनल में जर्मनी के मोरित्ज विजर से भिड़ेंगे और उनका लक्ष्य गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाना होगा। वहीं कल का सबसे बड़ा मुकाबला रिकर्व मिक्स टीम का फाइनल सुबह 11:30 शुरू होगा। इस गोल्ड मैच में धीरज बोमदेवरा और युवा प्रतिभा कुमकुम महतो की भारतीय जोड़ी का सामना तीरंदाजी की महाशक्ति दक्षिण कोरिया की टीम से होगा, जहां भारत कम से कम एक रजत पदक पक्का कर चुका है और उसकी नजरें देश के लिए गोल्ड जीतने पर होंगी। और अब आर्चरी के बाद हम आपको लिए चलते हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की ओर, जो कि कल से शुरू हो चुका है। और वहां कल श्रीलंका बनाम इंग्लैंड का मैच हुआ था, तो उसमें क्या कुछ जानकारी थी, आइए सुनते हैं।
1: मेजबान इंग्लैंड की धमाकेदार जीत के साथ आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुआ। शुक्रवार 12 जून की रात टूर्नामेंट का पहला मैच इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ खेला, जिसे उन्होंने आसानी से 87 रनों से जीता। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लिश टीम ने ओपनर डैनी वॉयर हॉस के शतक के दम पर 219 रन बोर्ड पर लगाए 219 रन बोर्ड पर लगाए। डैनी ने 62 गेंदों पर 105 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 13 चौकों और एक छक्का लगाया। वहीं कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने 22 गेंदों में 46 रनों की धमाकेदार पारी खेल दी और ओपनर एमी जोन्स ने 53 रन बनाए। 219 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 132 रनों पर सिमट गई। 21 साल की फ्रेया कैंप ने अपने T20 वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में 4 विकेट चटकाए। मैच के दौरान कई रिकॉर्ड्स टूटे, आइए एक नजर डालते हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका की आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच के दौरान कुल 351 रन बने। ये दोनों टीमों द्वारा एक T20 वर्ल्ड कप मैच में बनाए गए दूसरे सबसे ज्यादा रन है। पहले नंबर पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2018 का मैच, जब दोनों टीमों ने मिलकर 354 रन बनाए थे। अगर श्रीलंका 4 और रन बना लेता तो यह रिकॉर्ड टूट सकता था। फ्रेया कैंप अपने पहले ही T20 वर्ल्ड कप मैच में 4 विकेट चटका, वो ऐसा करने वाली दुनिया की तीसरी और इंग्लैंड की दूसरी प्लेयर बन गई। डैनी वायट ने 2010 में अपने डेब्यू T20 वर्ल्ड कप मैच में 4 विकेट चटकाए थे। वही भारत की डायना डेविड का नाम भी लिस्ट में है, जिन्होंने 2010 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था। तो आइए श्रोताओ, आपको दूसरे मैच की ओर ले चलते हैं, जो कि आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में होने वाले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मैच के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया मजबूत तो मानी जा रही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका महिला टीम भी उन्हें टक्कर देने का मादा रखती है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 2009 में पहली बार आमना सामना हुआ था। इसके बाद से ही दोनों ही टीमों के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का पलड़ा एक तरफा भारी रहा है और उन्होंने 9 मैच जीते हैं। प्रोटियस टीम है वो केवल 2 मैच ही जीत सकी है। तो इसके बाद हम दूसरे मैच के बारे में भी बात करते हैं, जो कि खेला जा रहा है वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में। तो ये जो मैच है ये खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और अपने न्यूजीलैंड के बीच में, और ये भी इंग्लैंड में ही चल रहा है। हमारा T20 का मैच है ना अभिनव, और ये जो मैच है ये भी काफ़ी रोमांचक रहने वाला है। और इसके बाद हमारे पास एक और जानकारी है क्रिकेट से जुड़ी हुई, जो है बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के बीच में भी ये मैच खेला जाएगा, जो कि कल होगा 3 बजे के करीब। बांग्लादेश और नेदरलैंड्स भिड़ेगी एक दूसरे के सामने, और ये जो मैच है वो बर्मिंघम में खेला जाएगा। और इसी के साथ आपको एक लाइव खबर भी बता देते हैं, जो कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड विमेन टीम के बीच में खेला जा रहा है। ये जो मैच है ये खेला जा रहा है अपना

0: बैडमिंटन से जुड़ी हुई आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2026 की ओर। जो टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों का सफर वहां पे काफी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा साथियों, और अंततः सेमीफाइनल में जाकर के भारत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को महज 27 मिनट में 21-6, 21-9 से मात दी थी, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें जापान की अकाने यामागुची के हाथों हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी यामागुची ने सिंधु को 22-20, 21-12 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैच के पहले गेम में सिंधु ने शानदार शुरुआत की और मिड गेम ब्रेक तक बढ़त बना रखी थी, लेकिन ब्रेक के बाद यामागुची ने लगातार 6 अंक जीतकर पासा पलट दिया। सिंधु ने जुझारूपन दिखाते हुए 20-19 पर एक मैच पॉइंट भी बचाया, लेकिन अंततः वह पहला गेम 22-20 से हार गई। इसके बाद दूसरे गेम में जापानी खिलाड़ी ने सिंधु को कोई मौका नहीं दिया और शुरुआत में ही 13-6 की मजबूत बढ़त बनाते हुए 43 मिनट में मैच अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में भारतीय चुनौती पूरी तरह समाप्त हो गई। इसी वर्ग में भारत की उभरती हुई युवा शटलर तन्वी शर्मा ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल तक जगह बनाई, जहां उन्हें भी अकाने यामागुची के हाथों ही 21-14, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा था साथियों। वहीं पुरुषों के वर्ग में मेंस डबल्स में भारत की एकमात्र उम्मीद एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्कारुन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चोट या किसी अन्य कारण से रिटायर्ड हर्ट हो गई। वे चीनी ताइपे के चेन चेंग कुआन और लियू कुआंग हिंग के खिलाफ पहला गेम 21-19 से हारने के बाद दूसरे गेम में 16-9 से पीछे चल रहे थे, जब उन्होंने मैच से हटने का फैसला किया। इस तरह सिडनी में खेले गए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय शटलरों ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन वे खिताबी दौर में प्रवेश करने से चूक गए। बहरहाल शिवांश, बैडमिंटन की बात को ही आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलते हैं कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए भारतीय कंटिंजेंट की घोषणा हो गई है। मिक्स डबल्स में एक जोड़ी डी कपिला और टी क्रेस्टो की होगी, और वहीं दूसरी जोड़ी आर कपूर और जी आर शिवानी की। मेंस डबल्स में स्टार जोड़ी सात्विक सिराज रैंकी रेड्डी तो रहेंगे ही, और साथ में उनके चिराग सेट्ठी, और दूसरी जोड़ी एच अमाला सुरनन और एम आर अर्जुन की जोड़ी को भी चुना गया है। वहीं वुमेन्स डबल्स में पहली जोड़ी टी जॉली और जी फुलेला की होगी, और दूसरी जोड़ी के सेल्वम और एस सिंघी की। और बात करें मेंस सिंगल्स की, तो मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भारत की ओर से चुनौती रखेंगे, और वुमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा। तो शिवांश, एक और कंटिंजेंट की अनाउंसमेंट हुई है, कौन सा कंटिंजेंट है?
1: इसके बाद हम आपको बताते हैं एशियन गेम्स 2026 की टीम्स के बारे में। टीम चैंपियनशिप में जो मेंस हमारी टीम रहेगी भारतीय, उसके अंदर लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, प्रणय, किदांबी श्रीकांत, थरुन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन, एम आर अर्जुन और ध्रुव कपिला। और आपको बता दें कि विमेंस टीम में पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, देविका, तानवी शर्मा, ईशा रानी, ट्रेसा जॉली, गायत्री गोपीचंद, कवली प्रिया, सिमरन और तनिषा। और इसके बाद आपको बता देते हैं इंडिविजुअल चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स की टीम के बारे में, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी, और विमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा, मेंस डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और सी शेट्टी, और अमसा करुणन और मिस्टर अर्जुन, एम आर अर्जुन माफी चाहता हूँ, विमेन्स डबल में होंगी ट्रेसा जॉली और जी जी पुलेला, के सेल्वम और एस सिंघी। तो इसके साथ मैं ले चलता हूँ अपने अभिनव की पास।

0: तेजस्वी से रहे जिन्होंने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में 13.27 सेकंड का समय निकालकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 13.41 सेकंड को तोड़ दिया और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करके एक नया इतिहास रच दिया। वहीं बात करें दो और भारतीय जेवलिन थ्रोअर्स ने CWG 2026 क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को पार किया। दोनों ने लाइफ टाइम बेस्ट प्रदर्शन किया। रोहित यादव और यशवीर ने चल रही इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 9 में क्रमशः गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। दोनों एथलीटों ने कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क को शानदार तरीके से पार किया। रोहित यादव ने जहां 83.76 मीटर का अपना लाइफ टाइम बेस्ट थ्रो किया, वहीं यशवीर ने भी अपना लाइफ टाइम बेस्ट थ्रो 82.93 मीटर का किया और भाला फेंक कर इन दोनों ने CWG 2026 के क्वालिफिकेशन के लिए अपने आप को चुनवा लिया है। वहीं बात करें आगे की तो अन्य प्रदर्शन में उन्नति बोलैंड ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में 23.66 सेकंड का समय लिया। हालांकि वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। वहीं दूसरी ओर निश्चय ने अंडर 20 डिस्कस थ्रो में 59.12 मीटर का थ्रो किया। इस चैंपियनशिप ने न केवल उभरते हुए एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मंच दिया बल्कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारत की मजबूत तैयारी को भी दुनिया के सामने पेश किया है। और अब आपको बताते चलते हैं एक लाइव अपडेट की ओर, जहां भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला खेला जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान का ओडीआई मुकाबला खेला जा रहा है, जहां अफगानिस्तान 13 रन पे खेल रही है और एक विकेट उसका गिर चुका है और बारिश होने के कारण ये मैच 50 ओवर से 25 ओवर तक का कर दिया गया है।
1: तो अभिनव कल एक और रोमांचक मैच होने वाला है T20 विश्व कप का, जिसमें भारत भिड़ेगी पाकिस्तान के साथ। तो अभिनव कल का मैच किस तरीके का रहने वाला है आपके हिसाब से?
0: भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो धड़कनें तो तेज होंगी ही शिवांश, और हम भी कल का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की महिला टीमें T20 विश्व कप में किस तरीके से अपने अपने प्रदर्शन को दिखाती हैं।
1: जी बिल्कुल सही। और श्रोता, अब घड़ी का इशारा आ रहा है कि हमको आपसे विदा लेना पड़ेगा, तो चलते चलते आपको बता दें कि हमारे प्रोड्यूसर है शहनवाज खान, तो इसी के साथ मुझे यानी शिवांश रक्षित और मेरे साथी
0: अभिनव कुमार झा को
1: दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

तो श्रोताओं, अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा पंजाब के लुधियाना में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज का 9 संस्करण भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस प्रतियोगिता को विशेष रूप से ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक क्वालिफिकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में आयोजित किया गया है, ताकि रांची में खराब मौसम के कारण जो खिलाड़ी क्वालिफाई करने से चूक गए थे, उन्हें एक और मौका मिल सके। इस मीट का सबसे बड़ा आकर्षण भारतीय बाधा दौड़ एथलीट

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट

0: में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit to France and Slovakia today to further deepen bilateral ties with the two European countries. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight. Mr. Modi will hold bilateral talks with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will jointly inaugurate the Bharat Innovates event. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit to France will be on boosting economic as well as cultural linkages between the two countries. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: Nearly 10,000 Indian students are today studying in France, with both countries working towards 30,000 by 2030. In conversation with Akashvani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sankla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
3: There is a core belief that key partnerships, for instance with France we have now special global strategic partnership, they have to be driven by people-to-people relationship. There is only a certain point up to which the governments can push the relationship. So the relationship has to become much more organic, and that's why increasingly there's a focus on deepening these ties. They span a number of areas.
2: It is precisely the spirit of research, innovation and people-to-people connect that Bharat Innovates brings to Nice tomorrow, and with it the promise of a partnership that only grows stronger. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और नीति आयोग द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन। 8 जून सोमवार को आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी ने शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा,
1: जो बीजारोपण संस्कृति का आकाशवाणी ने किया है वो अतुलनीय है, वो हमारे स्पंदन में जीवित रहता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हाउ मच वी ओ टू आकाशवाणी इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग अप, हाउ इट इज एम्बेडेड इन अस, हाउ डीप डाउन इन अवर सबकॉन्शियस इट हैज टिपटोड, इट हैज रिजाइडेड देयर फॉर मेनी इयर्स। ये रहता है वहां पे, हमारे सूक्ष्माति सूक्ष्म का हिस्सा है जो हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। आज के युग में वी हैव मोर स्टोरी टेलर्स देन ऑडियंस, बदल रहा है। मैं स्वागत करता हूं ऐसे युग का। इट्स डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिककरण है स्वर का, उसको मुखरित कर रहे हैं आप, उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबके पास अधिकार है, सबके पास। ऐसे समय में हम किस तरह प्रासंगिक रहें, ये चुनौती तो जरूर रहेगी हमारे साथ। हमारे पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात जो है वो एक संतुलन के साथ कहें, एक गरिमा के साथ कहें, उसमें गुरुता हो, गुरुत्व हो, उसमें संस्कृति हो, उसमें मिट्टी की गंध हो। और जड़ों से जुड़ा रहना मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने एक बार लिखा था कि

0: उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओ, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम्हारी आओगे। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, जितना झुकना तुम सीखोगे उतने ही तुम लहराओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, तुम तक पत्थर आते हैं सौभाग्य तुम्हारा, तुम तक पत्थर आते हैं सौभाग्य तुम्हारा, तुम कुछ दे सकते हो ऐसा भाग्य तुम्हारा। यदि तुम पर यौवन आएगा पुष्प खिलेंगे, तभी एक दिन महकेगा वैराग्य तुम्हारा। शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष, शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष, मुरझ जाओगे, जितना अश्रु नहाओगे तुम उतने ही खिलते जाओगे। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है, जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो, जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो, चुप हो जाना और चुप रहना अलग अलग है। शब्द बिना तुम अर्थहीन हो, खो सकते हो। सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष, बिखर जाओगे, ये शाखाएं नृत्य करेंगी हवा से जब तुम बतियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। बहुत गहरी जड़ें हैं आकाशवाणी की, बहुत हरियाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
1: इस आयोजन में सांगीतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है आकाशवाणी के चुने हुए कलाकारों की प्रस्तुति नाद @90 की एक झलक।

0: 11 जून गुरुवार को नेशनल मीडिया सेंटर सभागार में नीति आयोग द्वारा गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने संवाददाताओं को बताया,
1: वी आर हैप्पी टू टेल यू द टॉपिक फॉर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग वाज इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047 एंड इट वाज अबाउट डिटेल्स। The states talked about what they are doing. And mind you, this inclusive human development covers all the four stages of life, from childhood to youth to working life to old age. And it covers education, health, employment, all aspects of life. And it's very important. A skilled population is the key to success. Some people say that in Japan, during the Tokugawa, after the Tokugawa period in Meiji Restoration, Japan started taking off when literacy reached 40%. And our literacy is above 70% already. A literate population, a healthy population, a well-educated population is the key to success. So we had long discussions. We benefited from the comments of the chief ministers.
0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यही संपन्न होता है।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। तेनोक्तं यत् इयं यात्रा फ्रांस देशेन सह आर्थिक सांस्कृतिक संबंधान्, स्लोवाकिया देशेन च सह द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं केन्द्रिता भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरे आयोज्यमाने G7 शिखर सम्मेलने अपि भागं भजिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीमवर्ती जनपदेषु जनसांख्यिकीय परिवर्तन विषये उच्चस्तरीयोपवेशनस्य आध्यक्षम् अकरोत्। असमस्य जोरहाट वायुसेना केन्द्रे भारतीय वायुसेनायाः N-32 विमानं दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अपि च धर्मशालायां भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडायां पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। गमनात् प्राक् प्रदत्ते एकस्मिन् वक्तव्ये तेन प्रोक्तं यत् भारतस्य रणनीतिक दृष्टिकोणे फ्रांस देशस्य विशिष्ट स्थानं वर्तते। तेनोक्तं यत् अस्याः यात्रायाः मुख्यलक्ष्यं भारत फ्रांस देशयोः आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणम् इत्यस्ति। भारतीय समयानुसारं रात्रौ 10:30 वादने प्रधानमंत्री फ्रांस देश

ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले बहन भाइयों, आपको बता दें कि जीवन में सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है हमारा स्वास्थ्य। इसीलिए हमें स्वस्थ रहने के भरसक प्रयास करते रहना चाहिए और ऐसी कोई भी आदत या शौक नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो। और हमारे जो ग्रामीण बहन भाई हैं, कभी ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जिनको सही कराने में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, तो इन सब खर्चों से आपको बचाने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है और इसमें से एक योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन। बहन भाइयों, राष्ट्रीय आयुष मिशन ने भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के संरक्षण और संवर्धन, साथ ही उन्हें मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए देश भर में आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
1: बिल्कुल शशि भाई, राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे आयुष मंत्रालय संचालित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में आयुष चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी को सुलभ, किफायती और सशक्त बनाना है।
0: बिल्कुल, और बहन भाइयों आपको बता दें कि इस मिशन के अंतर्गत दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में किफायती आयुष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके अलावा प्राथमिक, सामुदायिक और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह स्थापना करना है।
1: बिल्कुल, और इस योजना में भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष क्षेत्र का विस्तार शामिल है। ये मिशन देश में विशेष रूप से कमजोर और दूर दराज के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल को संबोधित करता है।
0: बिल्कुल, साथ ही ये मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का एक अभिन्न अंग है जो आम जनता के स्वास्थ्य के बोझ और जेब खर्च को कम करने में सहायक है। तो बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही राष्ट्रीय आयुष मिशन की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार सती भाई।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: जितेंद्र सोलंकी, गांव करकोरा, महाराजपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
0: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: राजेश कुमार अट्टा को सुनना चाहेंगे जी।
0: जरूर सुनवाएंगे,
2: नाम बोलूंगा जी। लकी, संजना, अंशिका, टिंकल, कन्नू, प्राची, प्रतीक्षा, पिताजी श्री मेघराज सिंह सोलंकी, माताजी श्रीमती निर्मला देवी, गाँव करकोरा से गजेंद्र प्रधान जी, श्याम चौहान, सतवीर सिंह बैच जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो जी ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं चंद्रपाल सिंह जाखड़ बोल रहा जी, नबीपुर मुरादनगर से।
0: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: राजेश कुमार अट्टा को सुनवाओ।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: दो चार नाम हो रहे हैं जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: विनय चौधरी, चांद, कुसुम और गोलू और निर्मला जी, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: माजी दौड़ा हेर गाँव है, जिला महेंद्र हरियाणा से, पंडित यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज सुनवाओ जी, राजेश वरट्टा को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और बच्चों के नाम भी है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
4: भवेश शर्मा, यश भारद्वाज, स्वानी शर्मा, जागृति शर्मा, प्रगति शर्मा।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: मैं सोनू गाँव ढोड़ जिला हरियाणा से बोल रहा हूँ।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज सुनना चाहेंगे राजेश कुमार अट्टा को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: दो एक नाम है।
0: हाँ बोल दीजिए।
5: मेरे मम्मी फूलवती, मेरे पिताजी अमल भरवास है, नमस्कार।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: सत्यदेव सागर, ग्राम सरवन्ना, थाना जबारी, जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर।
0: सागर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: राजेश कुमार अट्टा की आवाज में कोई रागिनी या भजन सुनवा दीजिएगा सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: तो एक नाम लेना चाहूंगा।
0: हाँ बोल दीजिए।
6: पत्नी संतोष देवी, बेटा शिवदत्त सागर, सुधीर सागर, अंकित सागर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो नमस्कार जी, मैं करमवीर सिंह बोल रहा हूँ, ढिलोड़ मुरादनगर गाजियाबाद से।
0: करमवीर जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: राजेश कुमार अट्टा जी को सुना देना जी। और दो नाम है जी, मेरी बेटी है रोनिका और मेरा भाई है सूरजमल ढिलोड़।
0: हेलो ग्राम संसार।
8: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: राजेश अट्टा को सुना देना सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
8: बच्चों के नाम है सर जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
8: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
9: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
9: मैं ब्रिजपाल बोल रहा हूँ, गांव राम सावड़ा, जिला सहारनपुर से सर जी।
0: ब्रिजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
9: राजेश

0: आकर सुना दो जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
0: एक नाम लूंगा सर, हमारे बड़े भाई हैं रंडेड़ी से, बच्चे सर बटार राम राम जी।
1: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर राजेश कुमार अट्टा से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: रामलाल साहब
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज ब्रजेश सुरखा को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।

0: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। हेलो ग्राम संसार।
2: शशि भैया नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव चौधरी वास से रजू अग्रवाल।
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ब्रजेश सोरखा को सुना देना जी।
1: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार।
1: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: इंद्रवीर तेवतिया, गांव नट्ठूगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: तेवतिया जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ब्रजेश सोरखा जी गाई हुई बढ़िया सी रागिनी सुनवा देना, कुछ नाम लेना चाहूंगा।
1: हाँ बोल दीजिए।
3: सुमित तेवतिया, प्रिंस छोटू, प्रत्यक्ष, हमारी बुआ जी राजवीरी भटौना से, जयपाल सिंह तेवतिया, गांव खुशियालपुर से शेर सिंह मोदी मास्टर जी और पंडित रतनलाल, और गांव मंडौना से मुंशी जी विक्रम सिंह।
1: हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं गांव पंचायत से विनोद बोल रहा हूँ जी।
1: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ब्रजेश सोरखा की सुनवा दीजिए जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
4: बच्चों के नाम जी, साहिल दैया, रोहित, कविता, ममता, राम राम जी।
1: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार सर।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ, जिला नालंदा।
1: अनवर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: ब्रजेश सोरखा की आवाज में एक लोकगीत सुना दीजिए।
1: जरूर सुनवाएंगे।
5: हमारे दोस्त शीश पाल अकेला जी, भवनी कुमार प्रजापति जी और राजेंद्र सैनी।
1: हेलो ग्राम संसार।
6: शशि भाई नमस्कार, कंशी पंडित जी बोल रहा हूँ, आचा बंधैया गौतम भद्र।
1: पंडित जी कार्यक्रम में स्वागत है, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: ब्रजेश सोरखा को सुनवा देना।
1: जरूर सुनवाएंगे।
6: भाई है छोटा सतपाल, बेटा है पवन, प्रिया और नंदनी और टीना।
1: हेलो ग्राम संसार।
7: राम राम सर।
1: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: हवलदार जयप्रकाश, ग्राम पाचाता, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: ब्रजेश सोरखा को सुनवा दीजिए साहब।
1: जरूर सुनवाएंगे।
7: नाम नोट कर लो साहब।
1: हाँ बोल दीजिए।
7: करण, खुशी, नंदनी, राधिका, पितृज्ञा, राम राम साहब।
1: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ब्रजेश सोरखा से ये रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: जी भाई जी, राम राम। दरभंगा
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: नए वहां से घनश्याम बोल रहा हूँ। बलराम
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: जी को नाम
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: ले लू।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: मेरी बहन ज्ञानपति आनंदी है, प्रधान जी ज्ञानदार, सब आकाश पाठी को राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: राजेंद्र जाटल, आबिदपुर मानकी पोस्ट, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
0: राजेंद्र जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: बलराम बैसला।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: और कुछ नाम है असालत नगर से है, नरेंद्र जाटव, कमलेश जाटव, प्रशांत जाटव, निशांत जाटव और शिवानी जाटव, और आदिपुर गांव मानकी से हैं, महेंद्र, शारदा, रामकिशोर, शीला, सचिन, अनुष्का, मानसी, शिवम, और ये पूरे आदिपुर गांव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: जी मैं कवि लड्डन सिंह के गाँव खेड़ी सगान से इलियास अंसारी बोल रहा जी।
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज बलराम बैसला को सुनना चाहते हैं जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: इकबाल अंसारी है, जुल्फुकार अंसारी है, सईद अंसारी है, शकील अंसारी, नसीम अंसारी, और ये रही सब एगम है जी हमारे घर वाली।
0: हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं हरी सिंह सैनी, पशुआ नंगला, जिला अमरोहा से बोल रहा हूँ जी।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: बलराम बैसला को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी, देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश, डॉक्टर है, नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छब्बीस, निशा, कंचन, और कुछ मेरे भांजा मनोज, हरिचंद, गोविंद, और कुछ रिश्तेदार है जी, संजीव, ज्योति। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो सचिव भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गांव बरहाना, जिला बुलंद शहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: बलराम बैसले को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: और मेरे साथी आरती भारती स्वाती मिसेस कविता देवी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम जुड़ाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: बलराम बैसला जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
6: मास्टर ब्रह्म सिंह, जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बहादुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो, राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: जी मैं शरीफ अंसारी बोल रहा जी, सोरम के बाद गोला गाँव से जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज बलराम बैसला को सुनना चाहते हैं जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: और हमारे साथी है जी सुनने वाले, अनीश अंसारी है जी, जमील अंसारी, हनीफ अंसारी और फत्तन है जी।

0: नाम है,
1: हाँ बोल दीजिए।
0: बलदेव सिंह आर्य, कृष्ण पाल दलाल, आदेश दलाल, अनुज दलाल, नितिन दलाल, अर्पित दलाल, प्रियांशु दलाल, निकिता चौधरी, दीपू चौधरी और विक्की चौधरी। नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बलराम बैसला से ये

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112347331 और दूसरा नंबर है 0112347332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 7 बजने को है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और

0: इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहाँ 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अलमुर्गन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, इन दिनों पूरे भारत में एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। खासकर ये अभियान हमारे किसान बहन भाइयों को जागरूक करने के लिए है कि वो अपने जो खेत की मिट्टी है, मृदा है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करें, क्योंकि हमारे जो किसान बहन भाई हैं बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल खेती में करने लगे हैं, रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसकी वजह से जो मृदा का स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा है और जो भी उत्पाद हमें मिलते हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत। ये अभियान मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करने, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
1: बिल्कुल शशि भाई, खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मिट्टी की जाँच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, उन्नत बीज, बीज उपचार, हरी खाद और आधुनिक बुवाई तकनीकों और पानी की बचत करने वाली खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है और ये अभियान नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के खिलाफ जागरूकता पैदा करता है और साथ ही किसान भाइयों को सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रमों का लाभ उठाने में भी मदद करता है।
0: बिल्कुल, और ये अभियान मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ, किसान बचाओ के विचार पर आधारित है। ये इस बात पर जोर देता है कि

0: उत्पादक कृषि, सशक्त किसानों और दीर्घकालिक राष्ट्रीय समृद्धि के लिए स्वस्थ मिट्टी बेहद आवश्यक है।
1: बिल्कुल, और ये अभियान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देता है ताकि उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की वास्तविक पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर किया जा सके। इससे लागत को कम करने और उत्पादकता में सुधार करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद मिलती है। और इस अभियान के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक, ICAR संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग के अधिकारी और जन प्रतिनिधि किसानों को शिक्षित करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए गांवों का दौरा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और इस अभियान के अंतर्गत सोयाबीन, धान और दलहन जैसी फसलों के लिए खेतों में सजीव प्रदर्शन शामिल हो रहे हैं। हमारे किसान बहन भाइयों को लेजर लेवलर, स्थानीय कृषि, जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल चयन और जल कुशल कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हम भी अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप अपने खेत की जो मृदा है उसका ध्यान रखें, उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो कृषि में आधुनिक तकनीकी आ गई हैं उनका उपयोग करके आप खेती करें ताकि जो खेती में लागत है वो कम हो और जो आपकी आमदनी है वो बढ़े। तो नीलम बहन, ये तो बात रही खेत बचाओ अभियान की। और हमारे वो किसान बहन भाई जो अब टमाटर, बैंगन और मिर्च की उन्नत खेती करना चाहते हैं, उनके लिए सुनवाते हैं एक बातचीत। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गोपाल सिंह तोमर और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। अब जब हम सब्जी फसलों की बात करते हैं तो उसमें टमाटर है, बैंगन है, उसकी तो महत्ता बढ़ जाती है। और साथ साथ अगर चाहे हरी मिर्च की बात करें और चाहे मसाले की बात करें तो मिर्च दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। तो आज हम बात करेंगे टमाटर, बैंगन और मिर्च की किस तरीके से उन्नत खेती की जाए, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी को, जो कि अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों के बाद बरसात आएगी, तो इस बीच जो हमारे किसान भाई हैं सब्जी की खेती करते हैं, किस तरीके से प्लान करें कि खाने वाले को लगातार सब्जियां मिलती रहें और किसान को कुछ उसका लाभ मिलता रहे।
3: निश्चित रूप से सब्जियां हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमें प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियां खाने की सिफारिश हमारे पोषण के जो विशेषज्ञ हैं वो करते हैं, ताकि हर एक के जो पोषण तत्वों की आवश्यकता है, उनकी इम्यूनिटी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल्स की जो आवश्यकता है वो उनसे पूर्ति हो जाए। अब बात आती है निरंतर उपलब्धता की। अभी आप देखेंगे कि जो बहुत सारे किसान भाइयों ने गर्मी के मौसम में टमाटर लगाया था फरवरी में, मिर्ची लगाई थी और बैंगन भी लगाया था, लेकिन अब वो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। यानी कि अब जो गर्मी की जो फसल थी वो अब खत्म हो रही है, और इसलिए अब समय आ गया है कि हम मिर्ची की और बैंगन की अभी पौधशाला की तैयारी करें। इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि भई आप पौधशाला का निर्माण करें और पौधशाला कहाँ बनाएं और क्या क्या सावधानी रखें। पौधशाला का निर्माण उस स्थान पर करें जहाँ आपके पास पौधशाला में पौधों की मांग के अनुरूप पानी देने की व्यवस्था हो, आपकी पौधशाला होनी चाहिए। दूसरी, जिस स्थान पर आपने पिछले साल पौधशाला बनाई थी उस स्थान पर इस वर्ष पौधशाला ना बनाएं, यानी कि स्थान बदलना भी उसके लिए आवश्यक हो जाता है। और ऐसा करने से उनको दो फायदे होते हैं। एक तो जो मृदा जनित बीमारियां हैं जो संभवतः पिछले साल आई हों या नहीं आई हों, तो इस साल वो बीमारियां ना आए, इसलिए स्थान बदलना आवश्यक हो जाता है।
2: यानी डॉक्टर साहब, क्रॉप रोटेशन के साथ साथ प्लेस रोटेशन भी करना चाहिए।
3: बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर हम निरंतर एक ही स्थान पे बराबर वहीं पे पौधशाला का निर्माण करते हैं तो धीरे धीरे उसमें डंपिंग ऑफ आने लगता है, उसमें बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप बढ़ने लगता है और किसान को पौध तैयार करने में ज्यादा परिश्रम और खर्च करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा स्थान परिवर्तन करने से इस समस्या से हम कुछ हद तक निपट सकते हैं। अब बात आती है कि भाई पौधशाला का निर्माण कैसे करें। पौधशाला का निर्माण जो करना है वो पौध हमेशा उथली क्यारियों पे बुआई करें, क्योंकि ऐसे में बारिश एक साथ आ जाएगी। अगर हम समतल क्यारी में बिजाई पौध तैयार करेंगे तो किसान को उसमें नुकसान होने की संभावना है, इसलिए उथली क्यारी में पौध की तैयारी करें। और उथली क्यारियों का जो आकार है, जिनको हम रेज बेड बोलते हैं, अंग्रेजी में रेज बेड बोलते हैं, हिंदी में उठी हुई क्यारी या उथली क्यारियां, जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे

0: पौधशाला का निर्माण करें और बेड की जो चौड़ाई है वो 60 से 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और उसके ऊपर उसमें फिर सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें, नीम की खली है उसको भी मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, बीज की बिजाई से पहले उसको मिला करके उसका पानी दे के प्लेवा कर दें और वो 5 से 7 दिन में तैयारी करने के लिए खेत बता हुआ आ जाएगा और उसमें फिर उसकी खुदाई करके समतल करके और उसमें रासायनिक उर्वरक DAP MOP अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसकी मात्रा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर बिजाई पंक्तियों में करें और लाइन से लाइन का जो फासला रखेंगे, अगर आप बैंगन की पौध तैयार करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर दो लाइनों के बीच में और मिर्ची के बीच में भी लगभग इतना ही फासला रखना बेहतर रहेगा। तो ऐसे में बीज की जो गहराई है वो कितनी रहनी चाहिए, बीज की कम से कम 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज को डालना है और बीज डालने के बाद उसको मिट्टी से या गोबर की छनी हुई खाद से वर्मी कंपोस्ट के मिट्टी के साथ मिलाकर और उसको कवर भी करना है क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए जो हमारे गेहूं के जो बचा हुआ वो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, धान की पुआल को इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं या हमारी जो लुसिनिया स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली एक झाड़ीनुमा पौधा होता है उसकी पत्तियों को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है ताकि वो किसी तरह से खरपतवार की और करने के बाद फिर एक पानी उसमें फुहारे से दे दें, पहला पानी फुहारे से दें और दूसरा पानी जब दें वो नालियों के बीच में दें और पानी की मात्रा इतनी रखें कि वो एक बेड के ऊपर से पानी तैरना नहीं चाहिए। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं,
1: आलू में देते हैं,
0: जैसे आलू में देते हैं कि आधी ऊंचाई तक दें, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई उनकी क्यारी की ऊंचाई तक पानी रख दें ताकि वो सीपेज से नमी अपने आप अंदर तक चली जाएगी और इससे जो है अधिक पानी की मात्रा नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है, गर्मी का मौसम है, चाहे मिर्ची हो, बैगन हो या टमाटर की पौध किसान भाई जो तैयार करते हैं तो उसमें दो समस्याएं आने की संभावना रहती है, एक तो डंपिंग आप आर्द्र गलन रोग और उस रोग का प्रमुख कारण है गर्मी और ज्यादा आर्द्रता, और अगर पुरानी जगह पौधशाला बनाई है जहां बार बार आप बना रहे हैं तो उसमें इनोकुलम बिल्टअप होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमें वहां पे पहले से ही बीज को उपचारित करके बोना है और बीज उपचार के लिए हमारे किसान भाई आजकल जो बीज हैं वो उपचारित ही मिलते हैं, बाविस्टिन से या कैप्टान से या थीरम से बीज उपचारित होते हैं, अगर नहीं है तो आप उनको उपचारित कर सकते हैं 2 ग्राम से 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से लेकर के उनको ड्राई ड्रेसिंग करें और उसके बाद बिजाई करें या ट्राइकोडर्मा 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे जो किसान भाइयों ने पहले बिजाई की थी या जो गर्मियों की फसल लगाई थी वो किस्में अलग थी और जो इस समय लगाएंगे क्या अलग होंगे या वही किस्में लगाएंगे?
0: गर्मी के मौसम में अगर हम देखें टमाटर और मिर्ची, इनमें विषाणु के रोग ना के बराबर आते हैं, लेकिन बारिश में इन दोनों फसलों में विषाणु के रोग का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो मिर्च की और टमाटर की किस्में गर्मी के मौसम में सफलतापूर्वक हो जाती हैं वो सभी किस्में बारिश के मौसम में सफलतापूर्वक नहीं होती। तो यहाँ किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखें कि जब बीज खरीदते समय ये जरूर सुनिश्चित करें जिस भी स्रोत से लें कि भाई ये विषाणु रोग के प्रतिरोधी है या नहीं है या कितनी मात्रा में इसमें विषाणु के रोग आते हैं। टमाटर के अंदर बहुत सारी किस्में विषाणु रोग के प्रतिरोधी विकसित की गई हैं, हमारे संस्थान ने भी टमाटर की पूसा टोमेटो हाइब्रिड 6 एक किस्म विकसित की है वो विषाणु रोग के प्रतिरोधी है और बहुत सारी प्राइवेट क्षेत्रीय कंपनियों ने भी इस दिशा में काम किया है, लेकिन मिर्ची के अंदर कोई भी किस्म ऐसी नहीं जिसके अंदर पूर्णतः 100% हम ये कह दें कि इसमें विषाणु का रोग नहीं आता, लेकिन बहुत सारी ऐसी किस्में हैं, संकर किस्में भी हैं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की किस्म है, हमारे संस्थान की किस्म पूसा सदाबहार पुरानी किस्म है, इनके अंदर विषाणु के रोग मात्रा में आते हैं, यानी कि किसान की 100% नुकसान होने से हम बचा सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ पौधों में आ सकता है या देर की अवस्था में आ सकता है, लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें विषाणु रोग आने की संभावना ज्यादा रहती, तो उन किस्मों को ना बारिश के लिए इस्तेमाल करें पौध तैयार करने के लिए ना उनकी रोपाई करें, ये बात हमें सुनिश्चित करनी होगी जब बीज खरीदते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो पौधशाला की बात हो गई, लेकिन पौधशाला में बीज उगने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी क्या देखभाल की जा सकती
0: है? उसमें 2-3 बातें ध्यान रखने की, ऐसे तो हमारे जो किसान निरंतर सब्जी उगाते हैं वो उसमें दक्ष होते हैं, परंतु मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि गर्मी का मौसम में डंपिंग ऑफ आने की जो संभावना आर्द्र गलन वो ना आए उसके लिए पहला पानी दिया और दूसरा पानी जो आपने क्यारियों में दिया, तीसरा जो पानी दें या दूसरे पानी में उसमें फुहारे से घोल बना ले बाविस्टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना ले ड्रम और फुहारे से अच्छी प्रकार से उसे गीला कर दें ताकि आर्द्र गलन आने की संभावना को पूरी तरह से नकारा जा सके। बीज उपचार के अलावा ये करना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो है उसमें एक कीड़ा आता है, सुरंग बनाता है, उसे टनल बोरर बोलते हैं, पौधशाला की जो क्यारी होती है उनमें भुरभुरी मिट्टी कर देता है और पौधों की जड़ों के नीचे को भी जाता है, तो उससे क्या है जहां पौधे की जड़ को मिट्टी और हवा का संपर्क हो गया वहां पे पौधे मर जाते हैं या पौधों को उलट देता है, तो टनल बोरर से बचाव करना बहुत जरूरी है। गर्मी और

0: बारिश के मौसम जब हम पौध तैयार करते हैं, चाहे पत्ता गोभी करें, फूल गोभी की, बैंगन की, टमाटर मिर्ची करें, ये टनल बोरर एक हमारे किसानों के लिए समस्या है। उसका निदान ये है कि मिथाइल डस्ट आती है, एक मिथाइल डस्ट को अगर हम उसमें बुरक दें, बुआई के समय मिला दें उसमें, तो टनल बोरर को हम बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। टनल बोरर के कारण जो नुकसान होता है उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। और फिर एक से दो बार उसमें गुड़ाई करनी है, खरपतवार निकालना है, और अभी वातावरण में आर्द्रता और तापक्रम की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि बुआई के 28 से 30 दिन के अंदर पौध रोपाई के लिए निश्चित रूप से तैयार हो जाएगी।
1: जैसे आपने बताया कि पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी, जब हमारे किसान भाई पौध दूसरे खेत में रोपेंगे तो उस समय क्या सावधानी रखें?
0: बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बारिश का मौसम है तो ऐसे खेतों की चयन करें किसान भाई जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था है, यानी कि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, यानी कि किसान भाई उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था करें, अगर बारिश हो जाए तो पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। पहली तो एक ही बात है,
1: डॉक्टर साहब, या तो ऊंचाई वाले खेत हों वहां करें,
0: निश्चित
1: या
0: रूप
1: थोड़ा
0: से
1: ढालदार हो वहां कर
0: ढालदार
1: सकते
0: हो जहां मतलब पानी निकल सकता है, या तो ऊंचे में ज्यादातर सब्जियां खड़े पानी को सहन करने की क्षमता नहीं रखती, चाहे मिर्ची हो, टमाटर हो, बैंगन हो, या अन्य कोई भी फसल हो, तो इसलिए ऊंचाई वाले खेत, जल निकास की खेत, अभी मौका है किसान के पास। अगर खेत खाली है उसकी गहरी जुताई करें, दो बार उसकी जुताई करें, उसका सूरज की गर्मी से उसका जो है विकिरण के माध्यम से उसका उपचार
1: सौरीकरण
0: करें,
1: करें।
0: सौरीकरण करें, तो उससे खरपतवार, कीड़े, बीमारियों की जो रोगजनक हैं उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। अगर किसान भाई निरंतर अपने खेत में, मैं कहता हूं हर फसल के साथ तो किसान के पास भी संभव नहीं है, क्योंकि इतने पशु नहीं होते कि वो इतनी मात्रा में गोबर की खाद हर फसल की बुआई से पहले इस्तेमाल करें, लेकिन साल में एक बार, क्योंकि अधिकतर किसान आजकल सघन खेती करते हैं,
1: जी
0: दो से तीन फसल लेते हैं, तो हर एक फसल में तो गोबर की खाद डालना किसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन साल में एक बार खेत में 15 से 20 गाड़ी गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ हमारे जो सूक्ष्म जीवी हैं, जो जमीन में रहने वाले माइक्रोब्स हैं, जो हमारे लाभकारी हैं, तो उसको भी संख्या में वृद्धि होती है, और जल धारण क्षमता अच्छी होती है, फसल की वृद्धि होती है, और जो हम नत्रजन, फास्फोरस, पोटास वाले उर्वरक इस्तेमाल करें उनकी उपयोग क्षमता को भी कार्बनिक तत्व की उपलब्धता बेहतर करती है, बढ़ाती है। तो हमारे लिए तीन तरह के फायदे, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या दूसरी जो कंपोस्ट खाद है इस्तेमाल करें, तो हमारे किसान भाई उसमें ये फायदे उठा सकते हैं कि जल धारण क्षमता में विकास होगा, जो पोषक तत्व तो आप इस्तेमाल करेंगे उन उपयोगिता बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो आपकी जल की उपयोगिता बढ़ेगी और फसल का बेहतर वृद्धि और विकास होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, रोपाई के कितने दिनों बाद फसल तुराई के लिए लगभग तैयार हो जाएगी?
0: अब जैसे ही हमने बताया कि 28 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाएगी, फिर किसान भाई उसको पंक्तियों में रोपाई करें, रोपाई भी मेड़ों पर करें, क्योंकि समतल क्यारियों में ना करें, क्योंकि जल भराव की स्थिति से हमें हर हालत में बचना है, क्योंकि ये कोई भी फसल उसको सहन नहीं करेगी। तो आपने जैसे रोपाई कर दी, रोपाई के बाद अगर हम बैंगन की बात करते हैं तो 40 से 42 के दिन के बाद बैंगन पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो सकता है, और मिर्ची लगभग 60 से 65 दिन में पहली तुड़ाई के लिए रोपाई के बाद तैयार हो जाती है, और कुछ संकर किस्में 50 दिन के बाद भी तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वो किस्म विशेष के ऊपर निर्भर करेगा कि बुआई के कितने दिन बाद पहली तुड़ाई हो जाएगी।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से टमाटर, बैंगन और मिर्च की उन्नत खेती कर सकते हैं अगर किसान भाइयों आप उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और उन्नत तरीके से पौधशाला तैयार करके रोपाई करेंगे और समय समय पर अपनी फसल की देखभाल करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप इन फसलों से अच्छा उत्पादन लेकर के लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पे किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: टमाटर, बैंगन और मिर्च की उन्नत खेती। किसान बहन भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गोपाल सिंह तोमर, और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश, कलाकार हैं पप्पू भारती।
3: संध्या भजन साधना हो भई शुद्ध आत्मा नर की भव सागर से।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये उपदेश, और कलाकार थे पप्पू भारती।
1: नीलम बहन, कई बार पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी हमारे किसान भाई दे देते हैं। इससे पौधे खराब होने लगते हैं और साथ ही फसल पर कीड़े लगने का डर सताने लगता है। फिर इसी फसल को बचाने के लिए हमारे किसान भाई कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन सब से कैसे बचा जा सकता है? तो इन सब का समाधान है जो कृषि में आजकल आधुनिक सिंचाई पद्धति अपनाई जा रही हैं, उनका हमारे किसान भाई प्रयोग करें ताकि कम पानी में अच्छा फसल उत्पादन उनको मिल जाए। और इन सब तकनीकों के लिए एक सरकार बहुत ही अच्छी योजना चला रही है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
0: बिल्कुल शशि भाई, और इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है, और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करके पानी की बचत करना है। और इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि तक पानी की भौतिक पहुंच सुनिश्चित करना, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई

0: नालियों को बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी को रोकना है और साथ ही वर्षा के पानी का संचयन करके भूजल स्तर को बढ़ाना है।
1: बिल्कुल। और अब बात करते हैं कि जो भी हमारे किसान बहन भाई इन उपकरणों को खरीदना चाहते हैं तो सरकार उनकी क्या वित्तीय सहायता करती है? तो आधुनिक सिंचाई उपकरणों की खरीद पर हमारे किसान बहन भाइयों को सरकार अनुदान देती है यानी कि सब्सिडी देती है। इसके अंतर्गत लघु और सीमांत हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए कुल इकाई लागत का 55% तक का अनुदान उनको मिलता है और अन्य किसान भाइयों के लिए लागत का 45% तक का अनुदान दिया जाता है। तो हमारे जो भी किसान बहन भाई इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ जनसुविधा केंद्र के माध्यम से भी वो आवेदन कर सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो बात रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा? इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। श्रोताओं, शाम के 7:30 हुए हैं और अब समय है गज़ल का। लीजिए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: चंदन दास की आवाज़ में अभी आप गज़ल सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा, पश्चिमी एशिया संकट के चलते ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम पड़ा है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने दीप विहार क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नई दिल्ली में नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% की छूट की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से मुलाकात की और जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों से समस्याएं सुनी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार रोहिणी के प्रत्येक नागरिक की सुविधा और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि किसी भी शहर का वास्तविक मूल्यांकन केवल उसकी भव्य अवसंरचना से नहीं बल्कि नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली जीवन गुणवत्ता से होता है। उन्होंने कहा कि विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, जो नागरिक जीवन को अधिक

0: सुगम और बेहतर बनाते हैं। इसलिए रोहिणी में सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गुप्ता ने नवनिर्मित शौचालय सुविधा और मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाहरपुर गाँव में नवनिर्मित सड़कों को भी जनता को समर्पित किया। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ईंधन की कीमतों में वृद्धि की हुई है। इससे पिछले एक महीने में बिजली खरीद की लागत भी लगभग 31% बढ़ी है। श्री सूद ने संवाददाताओं को बताया कि इस वृद्धि के बावजूद दिल्ली सरकार के प्रयासों से उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव कम पड़ा है।
1: सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्धता है कि कंज्यूमर पर बिजली के दामों का यथासंभव असर नहीं पड़ने देंगे। देश भर में बिजली कानूनों के चलते पीपीएसी की कॉस्ट लगातार हर महीने अलाउ की जाती है। उसी के अंतर्गत पिछले 14.5% जो 31 मार्च तक था ईंधन की कॉस्ट वेस्ट एशिया संकट के कारण, अब इस महीने 2.4% की बढ़ोतरी उसमें दी गई है। इसलिए हम पूरी तरह इस पे निगाह रखे हैं, जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष भारत के युवाओं के सपनों को साकार करने वाले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस सेवा काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक कौशल से जोड़ा गया, जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि देश में रिकॉर्ड संख्या में बने नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, विश्वविद्यालय और मेडिकल संस्थान युवाओं के उच्च शिक्षा के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। वहीं युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने के लिए रोजगार मेले शुरू किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाखों युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्टार्टअप से लेकर खेल के मैदानों तक और डिजिटल क्रांति से लेकर बड़े अनुसंधानों तक देश की युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को गति दे रही है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने आज दीप विहार क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़कों और नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बवाना विधानसभा क्षेत्र में बेहतर और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को भारत की बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताएं लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह उपलब्धि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी और वैश्विक स्तर पर उसकी रणनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मालवीय नगर और सैदुलाजाब में आग लगने की घटनाओं के दौरान बहादुरी और तत्परता से कार्रवाई करने वाले नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम भी शामिल है। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस को और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल

मीडिया पोस्ट में कहा कि इन जवानों ने राष्ट्र की सेवा में अद्भुत साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए iGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें परीक्षा कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को

0: में संपूर्ण परीक्षा को कवर करने वाले 4 मॉड्यूल हैं। दिल्ली में कल यमुना स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर 500 से अधिक गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी और सामाजिक संगठन राजधानी के यमुना घाटों की सफाई करेंगे। यह आयोजन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगा। दिल्ली के जल और सिंचाई मंत्री परवेश साहब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने यमुना के घाटों और तटों को स्वच्छ रखने में जनता से भी सहयोग की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% छूट की घोषणा की है। परिषद ने बताया है कि यह छूट उन करदाताओं को प्रदान की जाएगी जो अपने संपत्ति कर का भुगतान 30 जून या उससे पहले कर देंगे। NDMC ने अपने क्षेत्र के सभी संपत्ति धारकों से इस लाभकारी योजना का लाभ उठाते हुए समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि NDMC क्षेत्र के करदाता परिषद के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल अथवा परिषद द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों के जरिए भी अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज ने लगभग 4 दशकों के अपने विशिष्ट सैन्य करियर में सेना की युद्ध क्षमता और दीर्घकालिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईमी स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार।
0: दक्षिण दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के सरकारी आवास पर आज TB यानी तपेदिक जांच अभियान चलाया गया। इस अवसर पर श्री बिधूड़ी ने लोगों से नियमित रूप से TB की जांच कराते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के लक्षणों के प्रति अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि टीबी का समय पर पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत जिला और यातायात पुलिस की सड़कों पर मौजूदगी बढ़ेगी। पुलिस आयुक्त ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को संयुक्त पैदल गश्त के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दफ्तर के काम और आंतरिक बैठकों से बचने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिला और यातायात पुलिस की टीमें सप्ताह में 4 दिन संयुक्त रूप से गश्त करेंगी ताकि सड़क अवरोधों को हटाया जा सके और यातायात जाम की समस्या का समाधान हो सके। केंद्र सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय का लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा शाम के दौरान गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के चलते ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम पड़ा है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने दीप विहार क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% छूट की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। लीजिए प्रस्तुत है मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन आइए शायरी की बात करते हैं। शायरी लतीफ़ जज्बात और एहसासात को लफ्ज़ों में पिरोने का नाम है। एक शायर इसमें अल्फाज को इस सिलसिले और तरतीब से यकजा करता है कि उसमें मुसीकियत पैदा हो जाती है जो दिलों को लुभाती है और जज्बात को दूसरों के दिल में उतार देती है। शायरी को मुशायरे आवाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। आकाशवाणी में मुशायरे अक्सर मुनाकिद किए जाते रहे हैं जिनमें मुल्क के मारूफ शुआरा शिरकत करते रहे हैं। इसी रिवायत के तहत आकाशवाणी के स्टूडियो में एक मुशायरा मुनाकिद हुआ जिसमें शायरी से शगफ रखने वाले भी शरीक हुए। ये मुशायरा ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल मुकम्मल होने पर मुनाकिद किया गया। इस मुशायरे की निजामत जनाब मुइन शादाब ने अंजाम दी। आइए उसी मुशायरे का दूसरा हिस्सा सुनते हैं।
2: आज का ये जश्न जो आकाशवाणी के 90 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़द किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आज के जो हमारे शुराए कराम हैं उनको आवाज़ दी जाए। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ मुमताज़ इकबाल साहब से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ कराऊँ, जो बहुत अच्छे शायर हैं। उनके कुछ शेर पढ़ता हूँ कि रात की गोदी में सर रख कर बहुत रोते हैं हम, याद आता है हमें एक घर बहुत रोते हैं हम, ध्यान से सुनते हैं उसका गम खामोशी की तरह, चीख पड़ता है वो जब हम पर बहुत रोते हैं हम। तो आइए इस्तकबाल करें मुमताज़ इकबाल साहब के, जो आज के पहले शायर हैं, कि तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुशायरे का आगाज़ करें मोहतरम मुमताज़ इकबाल साहब।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला देखें कि आँखों में उसकी दीद के ख्वाबों की आग है, आँखों में उसकी दीद के ख्वाबों की आग है, वो यूं के इश्क खाना खराबों की आग है। आँखों में उसकी दीद के ख्वाबों की आग है, वो यूं के इश्क खाना खराबों की आग है, ये नूर मेरे सर्द लबों पर उतार दे, ये नूर मेरे सर्द लबों पर उतार दे, सुर्खी तेरे लबों की गुलाबों की आग है। ये नूर मेरे सर्द लबों पर उतार दे, सुर्खी तेरे लबों की गुलाबों की आग है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर यूं देखें कि दरिया नजर आए कभी सहरा नजर आए,
2: दरिया नजर आए कभी सहरा नजर आए,
3: दरिया नजर आए

0: कभी सहरा नजर आए, देखूं तेरी आंखों में तो क्या क्या नजर आए।
1: वाह,
0: दरिया नजर आए, कभी सहरा नजर आए, देखूं तेरी आंखों में तो क्या क्या नजर आए। सोचूं तेरे बारे में तो होते हैं करिश्मे, सोचूं तेरे बारे में तो होते
1: होते हैं
0: हैं
1: करिश्मे।
0: करिश्मे, हर शय में तेरा अक्स उतरता नजर आए।
1: आहा,
0: सोचूं तेरे बारे में तो होते हैं करिश्मे, हर शय में तेरा अक्स उतरता नजर आए। और एक शेर यूं देखें कि बेखुदी में इस कदर सरशार हो जाते हैं हम, बेखुदी में इस कदर सरशार
1: हो
0: हो
1: जाते
0: जाते
1: हैं
0: हैं
1: हम।
0: हम, अहले बीनिश के लिए असरार हो जाते हैं हम। बेखुदी में इस कदर सरशार हो जाते हैं हम, अहले बीनिश के लिए असरार हो जाते हैं हम। वजद में हम धार लेते हैं उसी का रंग रूप,
1: वाह, क्या बात है।
0: वजद में हम धार
1: धार
0: लेते
1: लेते हैं उसी
0: हैं
1: का रंग रूप।
0: उसी का रंग रूप। रक्स करते हैं तो मिसले यार हो जाते हैं हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: बहुत शुक्रिया। वजद में हम धार लेते हैं उसी का रंग रूप, रक्स करते हैं तो मिसले यार हो जाते हैं हम। बेतकल्लुफ वस्ल बेमानी सा लगता है हमें,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बेतकल्लुफ वस्ल बेमानी
1: बेमानी
0: सा
1: सा
0: लगता
1: लगता
0: है
1: है हमें।
0: हमें, और तकल्लुफ से बहुत बेजार हो जाते हैं हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बेतकल्लुफ वस्ल बेमानी सा लगता है हमें, और तकल्लुफ से बहुत बेजार हो जाते हैं हम। शेर होते हैं वो जब आता है माजी की तरह,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शेर होते हैं वो जब आता है माजी की तरह, हाल बनकर दाखिले अशार हो जाते हैं हम।
1: क्या कहने हैं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: बहुत
1: वाह वाह,
0: शुक्रिया। शेर होते हैं वो जब आता है माजी की तरह,
1: बहुत खूब।
0: हाल बनकर दाखिले अशार हो जाते हैं हम। और एक गज़ल के चंद शेर देखें। खुश्क बहुत हो जाते हैं जब हम सहरा हो जाते हैं,
1: वाह,
0: खुश्क बहुत हो जाते हैं जब हम
1: सहरा हो
0: सहरा हो
1: जाते
0: जाते
1: हैं।
0: हैं, सहरा में गिरिया करते हैं फिर दरिया हो जाते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह
0: खुश्क
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: हो जाते हैं जब हम सहरा हो जाते हैं, सहरा में गिरिया करते हैं फिर दरिया हो जाते हैं। रात को उसके दर पर रोते रोते मर जाते हैं हम, रात को उसके दर पर रोते रोते
1: मर
0: मर
1: जाते
0: जाते
1: हैं
0: हैं
1: हम।
0: हम। सुबह को वो कुम कह देता है फिर जिंदा हो जाते हैं।
1: हाँ, भाई वाह वाह वाह वाह
0: बहुत बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया। रात को उसके दर पर रोते रोते मर जाते हैं हम, सुबह को वो कुम कह देता है फिर जिंदा हो जाते
1: जाते हैं
0: हैं।
1: हम।
0: आंखें वो जिंदान हैं जिनमें एक चेहरा रह जाता है,
1: वाह वाह वाह,
0: आंखें वो जिंदान हैं जिनमें
1: एक चेहरा रह
0: एक
1: जाता
0: चेहरा
1: है।
0: रह जाता है। रोशनी मंजर नींदें आंसू ख्वाब रिहा हो जाते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: आंखें
1: वाह,
0: वो जिंदान हैं जिनमें एक चेहरा रह जाता है। रोशनी मंजर नींदे आंसू ख्वाब रिहा हो जाते हैं। और बतौर ख़ास ये शेर देखें। मिट्टी की ताज़ीम करो तो और तकब्बुर करती है।
1: वाह,
0: ये शेर आप तमाम लोगों की नज़र।
1: मिट्टी की
0: मिट्टी
1: ताज़ीम करो
0: की
1: तो और तकब्बुर करती
0: ताज़ीम
1: है।
0: करो तो और तकब्बुर करती है, कंकर पत्थर जैसे आदमजाद खुदा हो जाते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: मिट्टी की ताज़ीम करो तो और तकब्बुर करती है,
1: वाह वाह वाह
0: कंकर
1: वाह
0: पत्थर जैसे आदमजाद खुदा हो जाते हैं।
1: वाह,
0: और एक शेर यूं देखें कि शहरे दिल्ली जिंदगी की एक बेहतर याद है,
1: क्या कहने हैं,
0: शहरे दिल्ली जिंदगी की
1: एक
0: एक
1: बेहतर
0: बेहतर
1: याद है।
0: याद है, एक इदारा एक लड़की एक दफ्तर याद है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शहरे दिल्ली जिंदगी की एक बेहतर याद है, एक इदारा एक लड़की एक
1: दफ्तर
0: दफ्तर
1: याद है।
0: याद है। दौड़ता जाता हूँ उसकी समत बच्चे की तरह,
1: वाह,
0: दौड़ता जाता हूँ उसकी समत
1: बच्ची की
0: बच्चे
1: तरह।
0: की तरह, दर बदर हूँ और एक बुला हुआ घर याद है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: दौड़ता
1: वाह
0: जाता
1: वाह,
0: हूँ उसकी समत बच्चे की तरह, दर बदर हूँ और एक भूला हुआ घर याद है।
1: वाह।
0: जीतने से पेशतर जिस शहर पर टूटा था मैं,
1: जीतने से
0: जीतने
1: पेशतर
0: से पेशतर
1: जिस
0: जिस
1: शहर पर
0: शहर पर
1: टूटा था मैं।
0: टूटा था मैं, उसका साहिल याद है उसका समुंदर याद है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: जीतने से पेशतर जिस शहर पर

0: टूटा था मैं, उसका साहिल याद है, उसका समुंदर याद है। और आखिरी दो शेर देखें, ला मकानी में बहुत जोरे मकान देखते हैं, ला मकानी में बहुत जोरे मकान देखते हैं, कोई तामीर खला है कि जहां देखते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ला मकानी में बहुत जोरे मकान देखते हैं, कोई तामीर खला है कि जहां देखते हैं। गुफ्तगू में बहुत आती है हमें शर्म उससे, गुफ्तगू में बहुत आती है हमें शर्म उससे, हम के जब यार के होठों पे जबां देखते हैं।
1: वाह वाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत खूब मोहतरम मुमताज इकबाल साहब, बहुत खूबसूरत शायरी और कई शेरों पर जहाँ आपको महसूस हुआ कि ये आपके एहसास को छू रहा है, उस पर आपने दादो तहसीन से भी नवाजा, आपका बहुत शुक्रिया। आइए एक शायरा को इस वक्त समाप्त करते हैं, शायरात की क्या अहमियत है और किस तरह से वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। मैं उनका एक शेर सुनाता हूँ पहले आपको, उससे उनके लहजे का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले से राजा कहा गया। हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया। ये शेर है माधवी शंकर साहिबा का, जिनकी एक किताब बाकी इश्क में सब अच्छा है मंजर आम पर आ चुका है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ज्यादा वक्त उनकी शायरी के लिए देता हूँ पर इसे मैं कम वक्त लेता हूँ। तशरीफ लाए माधवी शंकर साहिबा।
2: मतलब समाप्त करें कि हम जैसे सुन रहे हैं, हम जैसे सुन रहे हैं उसी तौर से सुने।
1: वाह, हम जैसे सुन रहे हैं उसी तौर से,
2: हम जैसे सुन रहे हैं उसी तौर से सुने, हम चाहते हैं आप हमें गौर से सुने।
1: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: ये दोस्त तो हमारी तरफ हैं शुरू से, ये दोस्त तो हमारी तरफ हैं शुरू से, जलवे हम अपने अब के किसी और से सुने।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया। एक गजल देखें कि दर्द को शौक बताते हुए, दर्द को शौक बताते हुए गाते हुए हम, रोशनी करते हुए खुद को जलाते हुए हम।
1: क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह वाह।
2: दर्द को शौक बताते हुए गाते हुए हम, रोशनी करते हुए खुद को जलाते हुए हम, जैसे शिद्दत से निभाता है कोई दीनो धर्म, जैसे शिद्दत से निभाता है कोई दीनो धर्म, ऐसे एक तरफा मोहब्बत को निभाते हुए हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: और शेर देखें कि बारे दुनिया नहीं उठता है हमारे दिल से, बारे दुनिया नहीं उठता है हमारे दिल से, और हंस हंस के तेरे नाज उठाते हुए हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: ख्वाब देखा कि वो उस पार कहीं रहता है, ख्वाब देखा कि वो उस पार कहीं रहता है, ख्वाब में भी उसे इस पार बुलाते हुए हम।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: और दौरे हाजिर में किसी पर भी भरोसा ना करें, दौरे हाजिर में किसी पर भी भरोसा ना करें, रोने लगते हैं ये बच्चों को सिखाते हुए हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: और शेर देखें कि कर भी लें वादा मगर वादा निभा सकते नहीं, कर भी लें वादा मगर वादा निभा सकते नहीं, साथ अच्छा है तुम्हारा साथ आ सकते नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: साथ अच्छा है तुम्हारा साथ आ सकते नहीं, और दिल तो कहता है जरूरत है किसी हमदर्द की, दिल तो कहता है जरूरत है किसी हमदर्द की, पर जरूरत के लिए तो दिल लगा सकते नहीं।
1: वाह वाह।
2: पर जरूरत के लिए तो दिल लगा सकते नहीं।
1: बहुत अच्छा है भाई।
2: दिल तो कहता है जरूरत है किसी हमदर्द की, पर जरूरत के लिए तो दिल लगा सकते नहीं, और हर कोई चेहरे पे पढ़ना चाहता है दुख वही, हर कोई चेहरे पे पढ़ना चाहता है दुख वही, और हम उस दुख को अफसाना बना सकते नहीं, और हम उस दुख को अफसाना बना सकते नहीं। मतलब देखें कि हम गमजदा हुए तो तमाशा कहा गया, हम गमजदा हुए तो तमाशा कहा गया, आंसू को सिर्फ पानी का कतरा कहा गया।
1: वाह।
2: हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप,
1: वाह।
2: हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया।
1: वाह वाह वाह।
2: यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया, और कहना था मुझसे दूर न जाना कभी कहीं, कहना था मुझसे दूर न जाना कभी कहीं, इतनी सी बात कहने को क्या क्या कहा गया। और माँ बाप खुश हैं बेटियां काबिल जो हो गईं, माँ बाप खुश हैं बेटियां काबिल जो
1: हो गईं,
2: बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया।
1: वाह वाह।
2: बेटी का एक दुख उसे

0: बेटा कहा गया। बहुत शुक्रिया। रास्ता कठिन है
1: भाई, फिर पढ़।
0: माँ बाप खुश हैं, बेटियां काबिल जो हो गईं। बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया। रास्ता कठिन है हम पे ये जाहिर किए बगैर। रास्ता कठिन है हम पे ये जाहिर किए बगैर। चलना संभल संभल के बस इतना कहा गया। चलना संभल संभल के बस इतना कहा गया। शेर देखें कि देखकर अश्क इमकान खुशी होती है।
1: देखकर अश्क इमकान खुशी होती है।
0: देखकर अश्क इमकान खुशी होती है। वक्त पर आए जो मेहमान
1: खुशी होती,
0: खुशी
1: है।
0: होती है। और कितना डरते हो जमाने की नजर लगने से।
1: वाह।
0: कितना डरते हो जमाने की नजर लगने से। करके देखो कोई ऐलान खुशी होती है।
1: वाह।
0: करके देखो कोई ऐलान खुशी होती है। और दुख को अपना लिया घबरा के अकेलेपन से। दुख को अपना लिया घबरा के अकेलेपन से। और फिर आया मुझे ध्यान खुशी होती
1: है। क्या कहने हैं।
0: और फिर आया मुझे ध्यान खुशी होती है। और मैं तुम्हें देख के नाशाद नहीं दोस्त मेरे। मैं तुम्हें देख के नाशाद नहीं दोस्त मेरे। बस इस बात पे हैरान खुशी होती है। बस इस बात पे हैरान खुशी होती है। और बेअसर होती है इस दिल पे हर एक बात मगर। बेअसर होती है इस दिल पे हर एक बात मगर। तुम जो कहते हो मेरी जान खुशी होती है। और शेर देखें कि इतनी ज्यादा मोहलत उसने दे दी है।
1: इतनी ज्यादा मोहलत उसने दे दी है।
0: इतनी ज्यादा मोहलत उसने दे दी है। खुद को साबित करना अब मजबूरी है। और हमने अपनी आंखें जब कासा कर ली।
1: वाह वाह वाह।
0: हमने अपनी आंखें जब कासा कर ली तब उसने दीदार की दौलत बख्शी। तब उसने दीदार की दौलत बख्शी है। और एक आवाज से मिट सकती है ये दूरी। एक आवाज से मिट सकती है ये दूरी। खामोशी है बीच में झगड़ा थोड़ी है। खामोशी है बीच में झगड़ा थोड़ी है। एक आवाज से मिट सकती है ये दूरी। खामोशी है बीच में झगड़ा थोड़ी है। सब किरदार ख्याली हैं इस नाटक के। सब किरदार ख्याली हैं इस नाटक के। लेकिन घटना सोलह आने सच्ची है। लेकिन घटना सोलह आने सच्ची है। और कुछ शेर। मेरे नजरिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ। मेरे नजरिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ। कबूल कर लूं जो जैसा कह दे जो अपनी रखूं तो मैं गलत हूँ। कभी मोहब्बत कभी जरूरत के नाम कर दूं हर एक लम्हा। कभी मोहब्बत कभी जरूरत के नाम कर दूं हर एक लम्हा। किसी घड़ी जो मैं खुद से बातें दो चार कर लूं तो मैं गलत है। असल में ये कि लड़कियों को सही है क्या ये पता नहीं है। है असल में ये कि लड़कियों को सही है क्या ये पता नहीं है। हर एक लड़की ये सोचती है मैं कुछ भी चाहूं तो मैं गलत हूं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: हर एक तराजू में तौल कर तुम मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दो।
1: वाह।
0: हर एक तराजू में तौल कर तुम मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दो। जो मैं भी तुमसे तुम्हारे सच का सबूत मांगू तो मैं गलत हूँ। बहुत शुक्रिया। आखिरी कुछ शेर है बस फिर मैं अपनी जगह लेती
1: हूँ। वाह वाह वाह वाह।
0: ये दर्द के झरने हैं ठहरने के नहीं हैं। ये दर्द के झरने हैं ठहरने के नहीं हैं। जो जख्म दिए आपने भरने के नहीं हैं। तुम जाओ कोई और हुनर सीख के आओ। तुम जाओ कोई और हुनर सीख के आओ। हम दिल पे लगी चोट से मरने के नहीं हैं।
1: वाह वाह वाह।
0: हम दिल पे लगी चोट से मरने के नहीं हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और उल्टी नहीं बहती है कभी धार नदी की।
1: क्या कहने की।
0: उल्टी नहीं बहती है कभी धार नदी की। अब हम तो यकीन आप पे करने के नहीं हैं। और दे ही नहीं पाओगे मोहब्बत का बदल तुम। दे ही नहीं पाओगे मोहब्बत का बदल तुम। तुमसे ये मेरे कर्ज उतरने के नहीं है।
1: क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। बहुत खूब। दिल तो कहता है ज़रूरत है किसी हमदर्द की। अब ज़रूरत के लिए दिल तो लगा सकते नहीं। मोहतरमा माधवी शंकर साहिबा अपनी शायरी से नवाज रही थी। अब माधवी शंकर साहिबा ने बहुत अच्छे शेर सुनाए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस शेर में उस माइक से जाकर एक शायर के तौर पर पढ़ देता हूँ। मेरा नाम मुईन शादाब है, यही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ साहब स्टेज से। कुछ शेर जहाँ जहाँ से याद आ रहे हैं पढ़ देता हूँ। बड़ा मियारी और पुरवकार मुशायरा है। जाहिर है रेडियो की अपनी एक शान होती है और यहाँ इंतखाब भी करना पड़ता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो अर्ज करता हूँ कि होशियार मेरे यार खबरदार मेरे यार होशियार।

0: यार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। एक नाजुक सा शेर आ गया है, अर्ज करता हूं कि होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसुल, होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसुल, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार, खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है, खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है, तू ढूंढता रह जाएगा ये दोस्त निरे यार,
1: निरे यार
0: कि तू ढूंढता रह जाएगा ये दोस्त निरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब हैं तेरे यार। एक ताज़ा मतलब पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ, मतलब कि धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, और फिर वो इस कदर बरसा में जलथल हो गया। ये धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, और फिर वो इस कदर बरसा में जलथल हो गया। अब बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत, बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत, ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। कि बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत, ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। बहुत शुक्रिया, ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। और एक मुहावरे के साथ तोड़फोड़ करने की जसारत की है, लेकिन ठीक है, खूबसूरत तोड़फोड़ है। अर्ज करता हूँ कि पहले आंखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो, पहले आंखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो, और फिर एक रोज वो दिल से भी ओझल हो गया, और फिर एक रोज वो दिल से भी ओझल हो गया। धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, और फिर वो इस कदर बरसा मैं जलथल हो गया। एक ताज़ा गजल के चंद शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। शेर मुलाहजा करें कि कहाँ कहाँ वो बसर कर रहा है अब खुद को, कहाँ कहाँ वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। कि कहाँ कहाँ वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। कि कहाँ कहाँ वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। और ये शेर मैं आकाशवाणी की नजर कर रहा हूँ, शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ, किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ। अब एक सदाओं का जंगल है उसके, बहुत शुक्रिया, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, बहुत शुक्रिया, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ। एक गजल का शेर हो गया है, अर्ज करता हूँ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ, सवादे जिस्म में तहलील हो गए कई लब। अर्ज करता हूँ, अब एक सदाओं का जंगल है उसके चारों तरफ, वो नाम पहले पहल का मेरा पुकारा हुआ, सवादे जिस्म में तहलील हो गए कई लब, बस एक लम्स तुम्हारा था जो सितारा हुआ। सवादे जिस्म में तहलील हो गए कई लब, बस एक लम्स तुम्हारा था जो सितारा हुआ, बस एक लम्स तुम्हारा था जो सितारा हुआ। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ वो बसर कर रहा है अब खुद को, वो एक शख्स मेरी रूह का गुजारा हुआ। और शायर कितनी मेहनत करता है, पेश करता हूँ कि चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, अर्ज करता हूँ कि चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ। कि चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ। कि मेरे लिबास पे करता है, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ। मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे ख़त्म करें, मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे ख़त्म करें।

0: न कोई जीता हुआ है न कोई हारा हुआ। ये मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे ख़त्म करें, न कोई जीता हुआ है न कोई हारा हुआ, किसी का रहने दिया और न खुद हमारा हुआ, किसी की बातों में आकर बड़ा खसारा हुआ। एक गज़ल के चंद शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है,
1: बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती
0: है। अर्ज करता हूँ कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है। बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है। और शेर मुलाहिजा करें कि घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, घाटा है सस्ते लोगों से मिलने में, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। और शेर मुलाहिजा करें कि पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान। अर्ज करता हूँ इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है, पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, बहुत शुक्रिया। पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। पहले एक दवा खाना फिर कब्रिस्तान, इसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, अर्ज करता हूँ कि रिश्तों की ये हद है आगे मत बढ़ना, रिश्तों की ये हद है आगे मत बढ़ना, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है। कि रिश्तों की ये हद है आगे मत बढ़ना, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है। बेदारी ख्वाबों को महंगी पड़ती है, सोता हूँ तो रात के लिए पड़ती। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। आलम खुर्शीद साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ,
2: मतलब देखें गजल का, कि जाने किन जहानों से हर्फो लफ्ज आते हैं,
0: जाने किन जहानों से हर्फो लफ्ज आते हैं,
2: जाने किन जहानों से हर्फो लफ्ज आते हैं, जाने कैसे महफिल में शेर खिलखिलाते हैं।
0: वाह,
2: जाने किन जहानों से हर्फो लफ्ज आते हैं, जाने कैसे महफिल में शेर खिलखिलाते हैं। और खुद ही कब मैं सोता हूँ, खुद ही जागता हूँ कब,
0: खुद ही कब मैं सोता हूँ,
2: खुद ही कब मैं सोता हूँ,
0: खुद ही जागता हूँ कब,
2: खुद ही जागता हूँ कब, ख्वाब ही सुलाते हैं,
0: ख्वाब ही जगाते हैं,
2: ख्वाब ही जगाते हैं।
0: वाह, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह।
2: खुद ही कब मैं सोता हूँ,
0: खुद ही जागता हूँ कब,
2: खुद ही जागता हूँ कब,
0: ख्वाब ही सुलाते हैं,
2: ख्वाब ही सुलाते हैं, ख्वाब ही जगाते हैं। और रोज वादा करते हैं अब नहीं मिलेंगे हम, रोज वादा करते हैं अब नहीं मिलेंगे हम, तुम भी भूल जाते हो।
0: वाह, वाह,
2: रोज वादा करते हैं अब नहीं मिलेंगे हम, तुम भी भूल जाते हो, हम भी भूल जाते हैं। और अब यहाँ पे आते हैं यार दोस्त अक्सर ही, अब यहाँ पे आते हैं
0: यार दोस्त अक्सर ही,
2: यार दोस्त अक्सर ही, अब कहीं पे मिलने की और जगह बनाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं यार दोस्त अक्सर ही, अब कहीं पे मिलने की और जगह बनाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: और तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम,
0: तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम,
2: तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम, आईना बनाते थे,
0: आईना बनाते हैं,
2: आईना बनाते हैं।
0: वाह,
2: तुझको पेश करने को और क्या बनाए हम, आईना बनाते थे, आईना बनाते हैं। और ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या,
0: ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या,
2: ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या, हम इधर भी जाते हैं, हम इधर भी जाते हैं, ढूंढते ही रहते हैं खो गया है जाने क्या, हम इधर भी जाते हैं, हम उधर भी जाते हैं।
0: वाह वाह वाह।
2: और सिलसिला जमाने का यूं ही चलता रहता है,
0: क्या कहने,
2: सिलसिला जमाने का यूं ही चलता रहता है, जाने वाले

0: आते हैं,
1: आने वाले आते हैं।
0: वाह वाह,
1: सिलसिला जमाने का यूं ही चलता रहता है, जाने वाले जाते हैं,
0: आने वाले आते हैं,
1: आने वाले आते हैं।
0: वाह,
1: और कब किसी के आने का इंतजार है आलम,
0: कब किसी के आने का इंतजार,
1: कब किसी के आने का इंतजार है आलम। अब गरीब खाने को हम कहाँ सजाते हैं, कब किसी के आने का इंतजार है आलम। अब गरीब खाने को हम कहाँ सजाते हैं।
0: बहुत शुक्रिया जनाब आलम खुर्शीद साहब। और इसी के साथ ये मैं अर्ज कर दूँ कि मुशायरा AIR@90 यानी 90 बरस मुकम्मल होने पर यह मुशायरा मुनक्कद किया गया। आप लोग इस तारीखी वाक़े का हिस्सा बने। मैं ये दुआ करूँगा कि जब हम 100 बरस मनाएं आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो के, तब भी आप जो प्रोग्राम मुनक्कद उसमें शामिल हों। बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाक़िदा मुशायरे का दूसरा हिस्सा सुन रहे थे। निज़ामत कर रहे थे जनाब मुईन शादा। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। रात्रि के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म यारा दिलदारा से।

इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।

0: की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 25,00,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे

0: reckless rains delayed the start. In reply, India were 91 for 1 in 10.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारी के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामिये को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ़ और खेती बाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे के बाद से इस बरेआजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवैल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 5:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुँचेंगे, जहाँ आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शुबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर मैक्रों मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमाकारों, सीईओज और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस एयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मुनक़िद की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्को तबादला ख्याल में दिफा, मसनूई ज़हानत, खला, तजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कानात हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज़ के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ दूसरी खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ब्रेटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेज़बानी के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियाँ कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफ़ीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी

0: ठोस नतायज के मौजू पर नई दिल्ली में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब के दौरान कही। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि उनकी वजारत बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ रोजगार वजह करने पर जोर दे रही है। जनाब गडकरी नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत की क्यादत में पिछले 12 सालों के दौरान हासिल कामयाबियों और तरक्याती इकदाम को उजागर किया। जनाब गडकरी ने बताया कि सड़क नकलो हमल और शाहराहों की वजारत ने मुल्क भर में ड्राइविंग के लिए तरबियती मराकज़ कायम करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इन मराकज़ से तकरीबन 10 लाख अफराद तरबियत हासिल कर चुके हैं। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रूनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम भारत की सकाफती रिवायत का जश्न मनाने और इसे फरोग देने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत के सकाफती सफर में नुमाया तरक्की हुई है। हुकूमत ने कौमी और बैन अवी सतह पर मुतद इकदाम किए हैं। इन इकदाम ने अवाम में मुल्क के सकाफती विरसे के हवाले से फख्र और वाबस्तगी के जज्बे को मजबूत किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तामीर, महाकाल लोक प्रोजेक्ट, माँ कामाख्या मंदिर की असर नौ तामीर और तरक्की, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मोदी हुकूमत की नुमाया कामयाबियाँ हैं। म्यूजियम ग्रांट स्कीम के तहत मुल्क के सकाफती ढांचे को मजबूत बनाया गया है। इस स्कीम के जरिए 21 नए अजायब घर कायम किए गए हैं, जबकि 23 मौजूदा अजायब घरों को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया है। वक्त के साथ ये स्कीम नागालैंड में सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए एक अहम सहारा बनकर उभरी है। इसी तरह कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट भी वजारत सकाफत के अहम प्रोग्रामों में शामिल हो गई है, जो मुल्क भर में सकाफती सरगर्मियों की मुआवनत कर रही है। मणिपुर की सबसे कदीम थिएटर तंजीम मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन नई माली इमदाद मिलने के बाद कई नए थिएटर ड्रामे पेश करने की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए तंजीम के सेक्रेटरी सोरो खैबम सरस चंद्र ने इलाकाई फनून के फरोग के लिए मजबूत माली मुआवनत फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
2: इस बेदारी की खास बात से हमें सकाफत की वजारत से मुख्तलिफ किस्म की माली इमदाद हासिल हुई। सकाफती इमदाद के तहत हमें इस साल 1.25 लाख रुपए मौसूल हुए हैं। हमें मंजूर शुदा रकम का 75% हासिल हुआ है। मैं भारत सरकार और सकाफत की वजारत का शुक्र गुजार हूँ।
1: ने अपने सकाफत के तहफ्फुज़ और इसे दुनिया भर में मुतारफ कराने के लिए अहम इकदाम किए हैं। आज भारत की भरपूर सकाफती रिवायत न सिर्फ मुल्क के अंदर रोशन है, बल्कि अपनी रोशनी दुनिया भर में भी फैला रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाली बैन अल-अक़वामी सूरत हाल ने पेट्रोलियम के शोबे में चैलेंजों में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि कीमतों में इस इजाफे से मुल्क के शहरियों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
3: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल? पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की।
0: आज लुधियाना में मीडिया से बात करते हुए जनाब पुरी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 12 साल मुद्दत खिदमत को अवाम मरकूज और तरक्यात पर मबनी करार दिया। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को फौजी अमले का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वो इस महीने की 30 तारीख से अपना ओहदा संभालेंगे। वो इस वक्त फौजी अमले के नायब सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फौजी अमले के मौजूदा सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने ओहदे से इसी रोज सुबुकदोश हो रहे हैं। वजारत खारजा ने इसराइल की वजारत खारजा की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक खिदमात अंजाम देने वाले भारत के वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात के लिए तशक्कुर का इजहार किया। پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3-1 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلواکیا کے دو ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں۔ وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے۔ آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अविज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन, और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
2: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
3: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है, और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
2: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा किया, इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया, और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
3: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे, और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
2: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को, और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
3: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। साफ स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिरता, तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएँ, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया, और वहाँ से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूँ कहूँ कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
2: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीज़ें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
3: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
2: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
3: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहाँ लेवल अच्छा नहीं होगा, जहाँ चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
2: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
3: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
2: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
3: मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा।

0: जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूज़ॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूज़िक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे, और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फ़ी खा रहा था वहाँ पे, फिर वो बोला कि यार कुल्फ़ी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है,
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है।

0: वो हम वहां पे कर करके परख परख के।
1: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते।
0: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूज़िक वेन्यूज़ की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
1: ऐसा क्यों?
0: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूज़िक वेन्यूज़ थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें। तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
1: सॉरी, आप बताइए।
2: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट
1: कुछ एग्जांपल
2: गेट।
1: दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
2: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे
1: हाँ, वो
2: 500
1: लोग
2: रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
0: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूज़िक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं
1: तो अभी आप लोगों ने
0: एक
1: क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र
0: जी
1: आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
0: जी
1: राधर
0: हैं,
1: देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
0: बिल्कुल हैं। पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी फाइव डेट।
1: जैसे भी आपने एक एग्जांपल दिया, संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे
0: जी
1: आपने एक नया
0: जी
1: टच दिया।
0: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नज़रिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज़ व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं। बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो

वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारे

0: कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबें, भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like Mahabharat. और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शेरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे
0: हैं। मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakas.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful pallava.
0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन,

इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इंटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adita.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: साथ में रत्ना पांडे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अराइव्ड इन द फ्रेंच

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम।

संगीत आपकी फरमाइश है। और इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूँ आज आपके साथ तरन्नुम जहाँ, होगी बहुत प्यार भरी बातें, आपके मैसेजेस और खूबसूरत नगमे, खूबसूरत गाने और कुछ जाने पहचाने लोगों की बातें जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं घर कर गए हैं। कभी वो ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं तो कभी यादों में, बस आप कह सकते हैं कि बस यादों में ही उनका जो किस्सा है वो आप महसूस कर सकते हैं। उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी हर कहानी को आप जो है दिल से याद कर सकते हैं इन गानों को सुनकर। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर किसी के एक ऐसा मोड़ भी आता है जब कोई किसी से मिलता है, कुछ एहसास बनकर, कुछ ख्याल बनकर, कुछ मोहब्बत बनकर, और कभी-कभी ये किस्सा जो है वो पूरा हो जाता है आपकी कहानी बनकर, ज़िंदगी के उस पड़ाव पर, उस मंजिल तक आपके हम सफ़र बनकर आपके साथ चलता है। और कहीं ऐसे ही किस्से अधूरे रह जाते हैं, कोई अजनबी, कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में यूं आता है और बस आपके दिल को छू कर यूं ही चला जाता है। और इस बात को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि वो अजनबी था, मुझे अच्छा लगा बहुत, मलाल ये है कि वो शख्स बदल गया अपनों की तरह। कभी-कभी मलाल रह जाना भी दिल की मासूमियत छीन लेता है, लेकिन उस एहसास को ज़िंदा रखें, उस मोहब्बत को ज़िंदा रखें, तो ये जो कहानी है वो अपने आप में मुकम्मल हो सकती है। लीजिए सुनिए ये खूबसूरत गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

यहाँ बहुत खूबसूरत नगमा था ये, और हमारे पास मैसेजेस भी बहुत आ चुके हैं और उनके नाम मैं जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। और ये मैसेज हमारे पास आया है अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापरसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हमें मैसेज किया है। बिटिया आमना नसरीन आसमा परी राबिया मंतशा आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार। और इसी के साथ एक और मेल हमारे पास आया है, और सलाम तरन्नुम बहन जी, आपको भी बहुत बहुत सलाम, और प्रोग्राम में जी आपका भी इस्तकबाल है। चंडीगढ़ सिटी से हमें मेल किया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, और उम्मीद है कि इनका जो गाना है, जो फरमाइशी गीत है, वो सुनाने की कोशिश करूँगी। हिंगोली महाराष्ट्र से हमें मैसेज किया है शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े ने हमें ये मैसेज किया है। और एके झा जी ने हमें मैसेज किया है, दुर्गा प्रसाद सैनी जी, और इनके साथ हैं आर एल चंद्रवंशी जी। और गाने के बोल भी ज़रूर आप बताते हैं, लेकिन हमारे पास कभी कभी ऐसे गीत नहीं होते, तो हम अपनी ही पसंद का कोई गीत आप सुनाते हैं, और कोशिश यही रहती है कि वो आपको पसंद ज़रूर आए। और अगला जो मैसेज है, एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हुदा का, और ये लिखने वाले हैं गुमला झारखंड से। और अगला मेल है पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने हमें ये मैसेज किया है। और मुंबई का बाबू फिल्म का कोई गीत अगर हम मुझे ज़रूर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर सुनवाती हूँ। और इसके साथ जो अगला मेल है वो है कल्पना मदन झा का, और इनके साथ है मानव और मयंक, और ये लिखने वाले हैं नरोली फाटक भिलाड़ी वापी गुजरात से। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और मैंडी शर्मा ने हमें मेल किया है। और अगला मेल हमें मिला है सुरेश गंगेजा, पूनम गंगेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित का मेल आया है। और

कोशिश यही रहती है कि आपके नगमों को ज़रूर हम इस प्रोग्राम में शामिल करें, सुनवाएं, और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप जो हमें इतने प्यार से मेल करते हैं, आपका नाम हम ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे साथ भी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, ऐसी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है कि आपके मेल जो है वो कई बार आते हैं। तो कोशिश करिए कि एक बार में एक ही बार आप मेल करें और मैं आपके नाम को ज़रूर लूँगी। और कहते हैं कि मोहब्बत में जो है वो तड़प बहुत होती है। अगर कोई ख़ास आपका है ज़िंदगी में, आप जिसे बहुत चाहते हैं, आपसे वो बहुत दूर चला गया है और उसकी जुदाई आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा एहसास होता है कि जब मोहब्बत होती है तो वो अंदर तक समा जाती है, कहते हैं रूह तक उतर जाती है। और ऐसे में जो एक पल का भी, जुदाई का जो पल होता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे सदियां बीतती जा रही हैं, ऐसा लगता है कि हर पल जो है वो हाथ से फिसलता जा रहा है। एक पल भी आपसे जुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाती है। ऐसे में जब आप किसी को दिल से चाहने लगते हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से चाहने लगते हैं और चाहते हैं कि बस वो साथी हमें मिल जाए, वो सफ़र हम सफ़र जो है हमें मिल जाए, बन जाए, और ज़िंदगी की ताउम्र जो है ऐसे ही प्यार भरे बातें करके हम यूं ही वक्त निकालें, तो वक्त की कमी तो रहती है और साथ ही साथ जो जुदाई का आलम है वो भी बहुत दर्द देता है। और कुछ ऐसा ही दर्द महसूस हम करते हैं जब हम सुनेंगे ये अगला गीत। कहते हैं इश्क में जब कोई हद से गुजर जाता है, हर लम्हा बस उसी का ख्याल आता है। सांसें तो चलती रहती हैं मगर ज़िंदगी का वजूद उसके बिना बिखर जाता है।

जी हाँ, एहसास मोहब्बत भी ऐसा एहसास है कि जो आप किसी पे जाहिर करें, किसी को अपने दिल की बात बताएं, तो ही आपको सुकून मिलता है। ऐसी मोहब्बत जो आप किसी से दिल ही दिल में करें और फिर इस मोहब्बत को सारी दुनिया से छुपा कर रखें, तो भी कहीं ना कहीं आप जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ महसूस करते हैं कि अपने दिल की बात जब आप अपने महबूब तक नहीं पहुंचा सकते और फिर किसी को बता नहीं सकते, तो वो दिल ही दिल में बस दबी हुई एक एहसास बनकर रह जाती है। एक प्यार है तो जाहिर ज़रूर करें, और जैसे आपके जो मैसेजेस हमें मिलते हैं तो हमें ये जाहिर होता है कि आपको भी

हमसे कितनी मोहब्बत है, कितनी शिद्दत से आप इंतज़ार करते हैं अपने प्रोग्राम का, अपने इस मैसेजेस का जो आप हमें मेल करके भेजते हैं, और आपको इंतज़ार रहता है अपनी फरमाइश के गीत सुनने का। अगला जो मैसेज हमारे पास आया है वो है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे और साथी हैं इनकी स्वाति प्रयाग चौधरी। और इन्होंने कहा है कि हमें कोई भी गीत सुनाए तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपनी पसंद का गीत सुनाएं। जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि प्यार शब्द ही इतना मीठा है कि इसमें जितना रस घोलो उतना मीठा होता चला जाता है। जी बहुत खूबसूरत बात आपने कही है, प्यार वाकई बहुत खूबसूरत है और जिस तरह आप शिद्दत से प्यार करें तो आपकी मोहब्बत भी मुकम्मल हो जाती है। और रेशमी नगरी मुबारकपुर आज़मगढ़ से ये हमें भेजा है जावेद अख्तर साहब ने, ये खूबसूरत बात लिखकर भेजी है। और एक और मैसेज आया है हमारे पास मुकेश बट्टा का, जो लिखते हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से, और इनके साथ हैं मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, निहारिका, हार्दिक और वंश बट्टा। जसपुर उत्तराखंड से हमें मैसेज किया है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफाकत ने। और आइए सुनते हैं अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, आपकी फरमाइश।

जी अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई इंसान किसी ऐसी शख्सियत से प्यार कर बैठता है कि जो उसकी ज़िंदगी में शामिल ना हो पाया, तो हम उसे बेवफा कह देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास जो है, उसको हमें अपने दिल से समझना भी चाहिए कि हर हर कोई ज़िंदगी में आपके साथ यूं ही बेवफाई नहीं कर लेता। कुछ तो वजह रही होगी, उस वजह को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस प्यार को पाने की कोशिश करने के बजाय। आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा मोहब्बत का लम्हा है। आपके साथ बिताया हुआ हर वो पल, जिस पल में वो आपके साथ है, आपके पास है, वो कहीं ना कहीं असली मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है। लेकिन ये क्या हुआ कि जब जुदाई का आलम आया, तो आपने उसे बेवफाई का रुख दे दिया। कभी कभी इन बातों को दिल से, गहराई से सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देते हैं ऐसे ही कुछ नगमे। कहते हैं ना कि मोहब्बत भी एक अजीब एहसास है। जब किसी से होता है, तो ज़िंदगी का हर लम्हा ऐसा होता है कि बस उसी के नाम कर दें, उसी के साथ जिए, उसी के साथ मरें, ज़िंदगी की हर शाम उससे के साथ बिताएं, हर सुबह उसी से शुरू हो। उसके बिना न सुबह अच्छी लगती है, न धूप अच्छी लगती है, न चांद की चांदनी सुहाती है। और सच कहें तो प्यार में जब कोई होता है, तो ऐसा लगता है कि उसके बिना जो है सांस लेना भी बहुत मुश्किल है, और न जीने की चाहत होती है, न मरने का खौफ होता है। कहते हैं ना कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बहुत ही खूबसूरती से इस बात को बशीर बद्र साहब ने अपने शब्दों में ऐसे पिरोया कि ये हमारे जहन में, हमारे दिल में एक गहरी अमिट छाप छोड़कर चला गया।

जी, तेजाब से फिल्म से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की फरमाइश भी बहुत से लोगों ने की थी। फिलहाल उन लोगों के नाम हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं जिन्होंने हमें बड़े प्यार से मेल किया है। जसपुर उत्तराखंड से हमें मेल किया है रियासत हुसैन सिद्दीकी ने, और इसके साथ ही हमें मैसेज किया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर, इनसे लिखने वाले हैं परी कार्तिक और गणेश खर्चे। बहुत सारे हमारे मैसेज जो हैं वो आप दो बार भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमें मैसेज किया है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा, नायाब और लड्डू ने हमें मैसेज किया है, और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है, जिस घर में हंसी होती है उस घर की प्रॉब्लम भी कोने में पड़ी रहती है। जी हाँ, मुश्किल कभी भी आ जाए, बस अगर मुश्किल का सामना आप हंस कर करते हैं तो फिर ज़िंदगी आसान बन जाती है। और अगला मैसेज है मित्रनगर बीट शहर महाराष्ट्र से रेखा बंसोड़े, विकास बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे का। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे ने हमें मैसेज किया है। चिरमुरी कुरसिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे ने हमें मैसेज किया है। जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार का हमें मैसेज आया है। और अगला मैसेज है चिरमिरी कुरसिया से, इनका नाम तो मैंने ले ही लिया है, और मैसेज जो अब आप करते हैं तो कोशिश रहती है कि आपके सभी मैसेजेस को मैं लेने की कोशिश करूं, लेकिन कभी कभी मैसेज रिपीट हो जाते हैं। और अगला जो मैसेज है वो है कस्बा गुन्नौर यूपी से हमें मैसेज किया है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिर ने। और लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का हमें मैसेज आया है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। और इसी के साथ हमें अगला मैसेज मिला है मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से, और सोनम सिंह के साथ हैं अनामिका सिंह। और सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, हीरामण शिंदे जी और इनके साथ है प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा और गुंडाने जिन्होंने हमें मैसेज किया है। और बहुत प्यार भरे मैसेजेस हमें आप करते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी रहती है और आपके फरमाइशी कुछ गीत भी हमें सुनाने पड़ते हैं। तो फिर शुरू करते हैं, कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ ऐसी बातें बस जहन में आ जाती है जब भी आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, आपकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कभी-कभी उन लोगों को शिकायत भी हो जाती होगी कि जिनके मैसेजेस में ना ले पाऊँ। तो ख़ास तौर पे ये बात तो उन लोगों के लिए है कि शिकवे तो बहुत हैं तुझसे ज़िंदगी, मगर जो तूने दिया वो भी कम नहीं। माना कि राहों में कांटे हैं बिछे, पर मुस्कुरा कर चलने में कोई गम नहीं। तो बस गम ना कीजिए, आज नहीं तो कल आपके नाम को ज़रूर अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आइए सुनते हैं अगला गीत, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का, आपकी फरमाइश।

यहाँ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जल्दी से उन लोगों के नाम भी हम ले लेते हैं जिन्होंने बड़े प्यार से हमें मैसेज किया है। और ये मैसेज जो है अगला मैं लूँ, और कहते हैं कि नमस्कार तरन्नुम जी, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से ये मैसेज किया है अनिल मोहन ने, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। और इसके साथ ही मैसेज हमें बहुत आ रहे हैं, उन लोगों के नाम लेने की कोशिश करती हूँ जिन्होंने मैसेज, जिनके नाम मैंने नहीं लिया है। और कई जो नाम हैं, कई जो मैसेजेस हैं, वो हमें रिपीट होते हैं। और मोहम्मद रफ़ीक पवार, बेनज़ीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमाज बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंग राडे, वनिता गंग राडे और मोहम्मद हसनैन पवार का हमें मैसेज मिला है। और अगला जो मैसेज है वो है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, और इनके साथ हैं कमला रानी और गीतिका भानु। और प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा ने हमें मैसेज किया है छत्तीसगढ़ बलारी से। और अगला जो मैसेज है वो मैसेज आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, लिखने वाले हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, और डांगरी से बाबू राम जयपाल, और खलीफा खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। ये सब बहुत हमारे प्यारे श्रोता हैं, और इन्होंने बड़े प्यार से ये मैसेज किया है कि जब रेडियो पर गूंजती है आपकी तरन्नुम, भूल जाता है दिल आपके सारे अपने सारे गम, अल्फाजों में छुपा है वो गहरा एहसास, बना देता है हर शाम को बेहद खास। कहने को तो वो सिर्फ चंद लाइनें होती हैं, पर आपकी आवाज़ में आकर वो मोती है। दर्द हो या मोहब्बत, आप उसे ज़िंदा कर देती हैं, खामोश दिलों में भी एक नई हलचल भर देती हैं। यूं ही गूंजती रहे ये सुरीली सदा आपकी, सुनती रहे सुकून से ये दुनिया सारी, आपकी आवाज़ सीधे रूह में उतर जाती है, आज ये तरन्नुम जहाँ आपकी हर बात दिल को छू जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो लगता है मेरा दिन बना दिया। और बहुत ही खूबसूरत एहसासों के साथ आप हमें ये खत लिखते हैं, मैसेज करते हैं। चलते चलते बस एक लम्हा ही हमारे पास बचा है, आइए सुनते हैं ये अगला गीत। और इसी आखिरी गीत के साथ मुझे तरन्नुम जहाँ को दीजिए इजाज़त इस कार्यक्रम से।

0: तो ज़िंदगी को यूं ही जीते रहिए, खुश रहिए। और अब समय हो रहा है हमारे हिंदी और अंग्रेज़ी समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड गेफ्रे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, एल्प्स मैरीटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसो एडब्ले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सियोटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना

0: जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ओर से ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी हेड पोस्ट ऑफिस और रहधर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच शुरू की गई। ये पहल केंद्रीय मंत्री की ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ बातचीत के दौरान मिले फीडबैक पर आधारित है, जिसमें दूर दराज और मुश्किल इलाकों में तेज और बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत पर जोर दिया गया था। अमेरिका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए डेब्यू करने वाले हर्ष दुबे और गुरनूर बड़ार ने 3-3 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. The Prime Minister will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron today. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. on the second leg of his

AIR लाइव न्यूज 24x7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। और इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आज आपके साथ तरन्नुम जहां। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा के अंतर्गत एक महान शख्सियत के बारे में जिनकी कलम का जादू जो है वो आज सिर चढ़कर बोल रहा है। और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ उनके चुनिंदा फिल्मी गीत जो उन्होंने लिखे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ज़िंदगी के दाव पेच से शुरू हुई

इनकी लेखनी आज हमारे लिए एक नयापन लेकर आई है जिंदगी में, और कार्यक्रम सुरों के सफरनामे में उनके ही कुछ गीत, कुछ नगमों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज हम बात करेंगे एक महान शख्सियत की, जिनकी मखमली आवाज़ तो नहीं कहेंगे, शब्दों का जादू जो है वो हमारे दिल में बसा गया है। और उनकी जज्बातों की बात करें तो उनकी जज्बातों में एक रूहानी खुशबू है जो कलम में उतर कर हमारे दिल तक पहुंचती है। जी हाँ, जब हम बॉलीवुड के उस सुनहरे दौरों के गीतकारों को याद करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ कुछ चुनिंदा नाम आते हैं, जैसे साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी या फिर गुलजार साहब। इनके नाम तो हम जानते ही हैं, लेकिन आज के आधुनिक दौर में जहाँ संगीत के मायने बदल रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं, लेखनी बदल रही है, वहाँ एक ऐसी महिला ने अपनी कलम का परचम लहराया है और जिसने पुरुष के इस समाज में अपनी एक पहचान छोड़ी, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करी और इस मैदान में भी अपनी एक बिल्कुल अलहदा यानी कि बिल्कुल अलग किस्म की एक जादुई पहचान बनाई है। उनके गाने जो हैं हम बहुत पसंद करते हैं, और आज सुरों के सफरनामे में हमारा पूरा ध्यान जो है, बस हमारी पूरी महफिल समर्पित रहेगी इस ग्रेसफुल महिला की जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इनका नाम है कौसर मुनीर। जी हाँ, ये एक बेहतरीन बेमिसाल गीतकार हैं, संवाद लिखती हैं, कई फिल्मों में इन्होंने संवाद लिखे हैं। इनको हम आज अपने कार्यक्रम में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और इनके कुछ गीत सुनेंगे। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं इनके लिखे गीत से।

जी हाँ, जब कौसर मुनीर लिखती हैं मैं परेशान परेशान, तो हर धड़कते दिल की बेचैनी सामने आ जाती है। कौसर मुनीर के लिखे गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधे दिल में उतर कर धड़कते हैं। और दोस्तों, कौसर मुनीर की लेखनी की बात करें तो उर्दू की तहजीब और हिंदी की सादगी देखने को मिलती है, और वो कहीं ना कहीं उन गीतों से हम अपनी ज़िंदगी को जोड़कर देखने लगते हैं। अगर उनके काम की बात करें तो कौसर मुनीर का नाम यूं रातों रात सामने नहीं आए, इसकी जड़ें उनके बचपन और उनके ख़ानदान से जुड़ी हुई हैं। कौसर मुनीर का जन्म और परवरिश जो है वो माया नगरी मुंबई के खूबसूरत और समंदर किनारे बसे बांद्रा इलाके में हुआ, और उनका जन्म जो है वो 30 अगस्त को हुआ था। कौसर जी का ताल्लुक अगर देखें तो वो एक पढ़े लिखे और अदबी परिवार से नाता रखती हैं, और उनके नाना जो हैं वो कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मुंबई के मशहूर सेंट जेवियर कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर रहे, और वहाँ के वो डीन भी थे, और उनके घर में किताबों का अंबार था, उर्दू की शायरी, साहित्य की किताबें, और उनके घर में हमेशा मुशायरे होते थे, और शेर व शायरी की गुफ्तगू जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आम बात थी। तो कह सकते हैं कि कौसर मुनीर का जो बचपन है वो खिलौनों में नहीं गुजरा, वो गुजरा है उन किताबों के बीच जहाँ पे मीर, गालिब और फैज़ की शायरी गूंजती थी। बस उर्दू तहजीब की बात करें, या फिर कह सकते हैं कि उनके नस्ल में थे, उनके खून में थी उर्दू की तहजीब, और वो ऐसी शख्सियत रहीं कि जिन्होंने शेर व शायरी को ही अपना मुस्तकबिल चुन लिया। कौसर जी की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उसी सेंट जेवियर कॉलेज का रुख उन्होंने किया जहां उनके नाना पढ़ाया करते थे। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य से ऑनर्स किया था, और अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है, पढ़ाई पूरी अंग्रेजी साहित्य की और काम जो है वो उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड। जो शख्सियत शेक्सपियर और कीट्स को पढ़ रही थी, उनके भीतर एक ठेठ हिंदुस्तानी जो है वो महिला थी, और वो महिला जो उर्दू की मुकम्मल शायरा बन चुकी थी अंदर ही अंदर, और फिर खिल कर सामने आई जब उनकी लेखनी जो है वो दुनिया को पता चली। और कुछ ऐसे ही एहसासों से भरे गीत उन्होंने लिखे जो हम बहुत पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं इन गीतों में एक नयापन ज़रूर होता है, वो ज़िंदगी की उन चीज़ों को शामिल किए हुए होते हैं कि जो हम आम जिंदगी के बीच उनके उन उनकी पसंद, उनकी बातें और उनकी जो लेखनी शैली है, उनकी गीतों को कितनी खूबसूरती से, कितने नए अंदाज से उन्होंने अपने शब्दों में बिखेरा जादू, और वो जादू जो है वो सबके घरों में, सबके दिलों में एक एहसास बन के रह गया, एक प्यार बन के रह गया। आइए सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही प्यारा, और लिखा तो उन्होंने ही है। आइए सुनते हैं।

जी ले जरा। जी हाँ, अगर जीने की चाहत हो, मोहब्बत हो दिल में तो, और ख्वाहिश हो कुछ कर गुजरने की, तो कह सकते हैं कि जीने की चाहत अपने आप ही अंदर पैदा होती है। और कुछ ऐसी ही बातें जो हैं वो कौसर मुनीर की ज़िंदगी में भी आई, और कह सकते हैं कि उनकी जो लिखने की शैली है वो खून में ही थी कहीं ना कहीं। और कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने लिखने का बेहद जो शौक था उनको, वो हमेशा उन्होंने ज़िंदा रखा। कुछ कविताएं लिखीं, कहानियां लिखीं, पर ये डायरी तक सीमित नहीं थी। और कह सकते हैं कि कुछ एक वक्त था जब वो छुप छुप कर बस कुछ चंद लाइनें ही लिख देती थीं, और अपने जहन में वो उन्हीं शब्दों को बस पिरोए रहती थीं, और दुनिया के नज़रों में, यानी कि दुनिया हम लोगों के पास, वो उनकी जो मुकम्मल शायरी है वो हम तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनको ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो लेख उन्होंने लिखा, वो जो गीत उन्होंने लिखा, वो जो अपने जज्बात शब्दों में उन्होंने पिरोए हैं, वो दुनिया वाले भी जाने। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि एक दिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भी एक ऐसा मौका मिलेगा कि जो उनको भी एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देगा। और कौसर मुनीर की इन खूबसूरत बातों को तो बहुत हम समझने की कोशिश भी करते हैं उनके गानों से, और उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने लिखे हैं, और कुछ गाने उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। उनके ज़िंदगी के सारे फलसफे जो हैं वो कहीं ना कहीं एहसास बनकर, शब्द बनकर और कलम का रुख ले लेते हैं, और वो हमारे सामने आ जाते हैं। और ये जो गीत हैं, फिल्म दुनिया को उन्होंने बहुत खूबसूरत नगमे दिए हैं, अपने जज्बात दिए हैं, अपनी मोहब्बत दी है, और उसी मोहब्बत को हम तरोताज़ा करते हैं इन नगमों को सुनकर। आइए सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत।

जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखिका जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में डायलॉग भी लिखे और बहुत सारे खूबसूरत नगमे हम तक पहुंचाए। कौसर मुनीर की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट अगर आया तो उस पर अगर नज़र डाले तो घर की डायरियां जो हैं अब निकल कर सीधे स्टूडियो के माइक तक पहुंच चुकी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद कौसर मुनीर ने मीडिया और टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा और शुरुआत के दिनों में उन्होंने रिसर्च प्रोडक्शन और छोटे मोटे राइटिंग असाइनमेंट्स किए, लेकिन उन्हें बड़ा मौका मिला 2003 के आसपास। सोनी टीवी के एक सीरियल में उन्होंने काम किया। टेलीविज़न के इतिहास में उन्होंने लिखा, जैसी जैसी कोई नहीं सीरियल। जी हाँ, इसके काफ़ी डायलॉग्स उन्होंने लिखे, ये पूरी कहानी उनकी है। जी हाँ, इस शो के स्क्रीन प्ले और संवाद लिखने वाली टीम में कौसर मुनीर भी शामिल थी। बहुत कुछ इन्होंने किया है हासिल और उस ज़िंदगी के फलसफे तक पहुंची जहां पे हम उनको इस तरह से याद कर रहे हैं और उनके गीत सुन रहे हैं। कौसर जी ने सीरियल के किरदारों को जो जुबान दी, आम बोलचाल की भाषा में जज्बात पिरोए, उससे उनको जो है पहचान मिली। एक इस इंडस्ट्री में एक लेखिका के रूप में अपने आप को स्थापित किया उन्होंने। टेलीविज़न में काम करते ही उनकी मुलाकात मशहूर निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य जी से हुई और ये जो है उस समय यशराज फिल्म्स के बैनर तले एक बड़ी फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था टशन। और ये जो साहब हैं, ये जो निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य, जिन्हें प्यार से उस समय लोग विक्टर भी कहते हैं, और विक्टर साहब ने फिल्म में एक ख़ास सिचुएशन के लिए बेहद रोमांटिक और थोड़ा अलग तरह का गाना उनको चाहिए था और उन्होंने कौसर मुनीर की प्रतिभा को तो पहचान ही लिया था, उन्होंने कौसर मुनीर को लिखने का मौका दिया। पहली बार इस फिल्म के लिए उन्होंने, किसी भी फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार जो है कोई गीत लिखा और कौसर जी ने अपनी कलम उठाई और साल 2008 में बॉलीवुड को मिला उनका पहला आधिकारिक फिल्मी गाना, फलक तक चल साथ मेरे। जहाँ एक छोटी सी शायरा ही कह सकते हैं उस समय, और इन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज वो लिखते लिखते इस जगह पहुंच गई, इस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां पे फलक जो है वो पूरा उन्हीं का है, वो कुछ भी लिख सकती हैं और अपने दिल की बात, अपने जज्बात हम तक पहुंचा सकती हैं। उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में जब ये गाना हर घर में गूंजा तो हर कोई पूछने लगा कि ये नया गीतकार कौन है जिसने फलक तक चल साथ चल जैसा ये खूबसूरत ख्याल हम सबको दिया। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ, बहुत खूबसूरत यह एहसास है कि जब आप किसी से मोहब्बत करें तो बिल्कुल उसके साथ फलक तक तो मोहब्बत में पहुंच ही सकते हैं। क्या बात है, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। इस गाने को आज सुनकर आज भी दिल में वही ताजगी महसूस होती है जो 2008 में हुई थी। कौसर मुनीर के काम का दायरा इतना बड़ा है कि उन्हें सिर्फ गीतकार कहना उनके हुनर के साथ नाइंसाफी होगी। उनके काम को हम मुख्य रूप से अगर कह सकते हैं कि अगर अलग अलग डिवाइड करें, बांटें, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक वो मुकम्मल गीतकार तो हैं ही, साथ ही साथ वो डायलॉग राइटर भी बहुत अच्छी हैं और स्क्रिप्ट कंसल्टेंट भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कई रोमांटिक सूफियाना गीत लिखे, आइटम नंबर से लेकर गहरे देशभक्ति के गीत भी उन्होंने लिखे। दिल में, युवाओं के दिल में जो है देशभक्ति की भावना पैदा की उन्होंने। और संवाद की बात करें तो किरदारों के मुंह से निकलने वाली सीधी जो बात है वो दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाने की एक प्यारी सी कोशिश उन्होंने की, जो मुकम्मल हुई। उनके फिल्मी करियर को एक नया पैमाना मिला और ये हुनर कौसर को बखूबी आता है। और इसी हुनर को देखें तो फिर उन्होंने कई बड़े निर्देशकों के साथ जो है काम भी किया। फिल्मों में स्क्रिप्ट को तराशने और उसे भाषाई रूप को बहुत परिपूर्ण करने के लिए, एक कह सकते हैं एक नई दिशा देने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए भी वो लगातार काम कर रही हैं। कौसर मुनीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सिचुएशनल राइटिंग का काम करती हैं और कह सकते हैं कि इसमें उनको इतनी महारत हासिल है कि उन्हें क्वीन भी कहा जाता है, सिचुएशनल राइटिंग की क्वीन। यानी कि निर्देशक उन्हें जैसे सिचुएशन देगा, वो किरदार की उम्र, उसके बैकग्राउंड और उसकी मनोदशा को समझकर शब्द चुनती हैं। जैसे कि फिल्म धूम 3 की बात करें तो कैटरीना कैफ के किरदार के लिए गाना उन्होंने लिखा, कमली कमली, वो बहुत ही मशहूर हुआ। और ये जो एक पागलपन था उनके कैरेक्टर में, वो उनके गीत बनकर बहुत बखूबी उतरा उतरा और जिसको कई लोगों ने जो है बहुत पसंद भी किया। और बात हो रही है कि इस धुन की, इस गीत की, तो फिर इस पे थी एक बहुत मॉडर्न महिला जिसकी हाई एनर्जी थी, एक तरह का पागलपन था। और वही जब उन्होंने उसको एक शब्दों में पिरोया तो बहुत खूबसूरती से पिरोया। आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये उनके लिखे गीतों का जादू।

सुन रहे हैं आप सुरु का सफ़रनामा, और आज हम बात कर रहे हैं गीतकार और डायलॉग राइटर कौसर मुनीर की। दोस्तों, कौसर मुनीर की शायरी और गीतों की सबसे बड़ी ताकत है सरलता, यानी सिंप्लिसिटी। वो उर्दू के ऐसे शब्दों का चयन करती हैं जो बहुत भारी ना हो, बल्कि आम लोगों की ज़ुबान पर आसानी से चढ़ जाएं। लेकिन जब वो विशुद्ध शायरी पर आती हैं तो उनकी उनका एक अलग रूप देखने को मिलता है। जैसे तमाशा फिल्म के लिए उन्होंने कई गाने लिखे हैं। हवा की खुशबू बदलेगी दुनिया, भी बदलेगी, बदलेगा मेरा जहां सफ़रनामा। बहुत ही खूबसूरत ये गाना है, और जिसको बहुत प्यार से गाया है, और लकी अली की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत है। आइए सुनते हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में।

कौसर मुनीर का फिल्म इंडस्ट्री में के कुछ बेहतरीन निर्देशकों के साथ बहुत गहरा और अटूट कनेक्शन है, और इनमें सबसे नाम पहले आता है कबीर खान का। कबीर खान की फिल्मों में कौसर मुनीर की एक स्थायी स्तंभ की तरह पहचान है। चाहे एक था टाइगर का गाना लापता हो, या बजरंगी भाईजान का सूफियाना कलाम भर दो झोली मेरे आका, चाहे रोमांटिक ट्रैक की बात करें तो तू चाहिए, या फिर फिल्म 83 के वो उस जज्बाती और देशभक्ति से ओतप्रोत गाने हों, कबीर खान की विजुअल स्टोरी टेलिंग को कौसर मुनीर के शब्दों ने हमेशा पंख दिए हैं। इसके अलावा सुजॉय घोष के साथ फिल्म कहानी 2 और यशराज फिल्म के साथ उनका जुड़ाव भी हमेशा बहुत मजबूत रहा है, और उनके जो गीत उन्होंने लिखे हैं हमेशा बहुत प्यारे लिखे हैं। और दोस्तों, कौसर मुनीर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनकी लेखन शैली की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, बहुत संजीदा फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं, और हमेशा बॉलीवुड की बात करें तो यही एक पहचान रही है कि हमेशा पुरुष ही जो है वो कहानी लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, गीत लिखते हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते भी उन्होंने अपनी पहचान की एक अमिट छाप जो है वो फिल्म इंडस्ट्री पे छोड़ी है। आइए सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत ये गीत है अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और कह सकते हैं कि कौसर मुनीर की जो कहानी है, कौसर मुनीर की जो लेखन शैली यानी कि लिखने की जो कला उनके अंदर जो है वो घर कर गई, और अपने ज़िंदगी के उस तमाम मुकाम तक वो पहुंच गई। काफ़ी उन्होंने काम भी किया, और उनके काम की अगर बात करें तो कौसर मुनीर की ये खासियत ये भी है कि वो नए संगीतकारों के साथ जितनी सहजता से काम करती हैं, उतने ही अदब और तालमेल के साथ वो प्रीतम, अमित त्रिवेदी और ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज कलाकारों, दिग्गज लोगों के साथ भी ट्यूनिंग बिठा लेती हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखे गीत की एक झलक, आवाज़ अरिजीत सिंह की।

0: जी हाँ, गांधी के तिल के साथ दिल की बात, यानी कि सीने में जो दिल है उस दिल तक पहुंचने का जो जरिया है, जो कलम है, जो शब्द हैं, जो गीत बनकर हमारे दिल में उतरे हैं, उसको बखूबी कौसर मुनीर ने बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की है। कौसर मुनीर की उन चुनिंदा फिल्मों की बात करें तो उन्होंने उनके करियर में मील का पत्थर कई फिल्में साबित हुई हैं। 2012 में आए इश्क ज़ादे ने उन्हें पहचान दी, फिर आई एक था टाइगर जिसमें उन्होंने सलमान खान के लिए लापता और सैयारा जैसे गाने खूबसूरती से लिखे। इसके बाद धूम 3 में उनके गानों ने कई बार धूम मचाई है, और साल 2015 में बजरंगी भाईजान और तमाशा जैसी फिल्म जो है उनके हिस्से में आई, जिस पर उनकी बहुत चर्चा हुई उनकी लेखन शैली की, और जिसमें उन्होंने AR रहमान के साथ काम किया और उनके करियर को नई ऊंचाई मिली। फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में भी उन्होंने एक टीनेज लड़की के सपनों को अपने शब्दों में ढाला, और ख़ासकर मैं हूँ कौन है का वो गाना बहुत खूबसूरती से गाया भी गया है, लिखा भी गया है। और फिल्म 83, गंगूबाई काठियावाड़ी और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि उनका जो पेन है वो भाई थकता नहीं है, और उनकी जो कलम है वो बिल्कुल नहीं रुकती, और यूं ही ज़िंदगी भर अपनी वो हमेशा अच्छे अच्छे गीत हम तक पहुंचाएंगी। और इस खूबसूरत बातों के साथ, एक आखिरी गाने के साथ इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। मैं तरन्नुम जहां कार्यक्रम शुरू का सफ़रनामा से विदा लेती हूं, जिस कार्यक्रम में आज आपने कुछ बेख्याली में ही सही पर बहुत खूबसूरत गीत सुने, और बात हुई कौसर मुनीर की। जी हाँ, बात करें कि दिल का मुसाफिर है, रास्तों का शौकीन है, ज़िंदगी का हर पन्ना शब्दों से रंगीन है, तो अपने शब्दों का जादू आप भी बिखेरने की कोशिश करिए। और कहते हैं ना कि वक्त कभी भी पलट सकता है, पंख लगाकर वक्त जो है उड़ जाता है, ख़ासकर तब जब महफिल इतनी हसीन हो कि बातें हों कौसर मुनीर की, उनके गानों की, और साथ में हैं हम और आप। जी हाँ, शुरू का सफ़रनामा में बांद्रा की गलियों से ले, और उन छोटी छोटी डायरी से, उन कलम से, उन शब्दों से ये कौसर मुनीर जो है वो निकल कर आई बॉलीवुड के रेड कारपेट तक। कौसर मुनीर के ज़िंदगी के सफ़र को यूं ही चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और उनकी जो पूरी ज़िंदगी है, अगर हम उनके गीतों को सुने, उनके ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करें, तो एक अरसा निकल जाएगा। कहते हैं ना कि यूं ही किसी के शब्दों का जादू जो है वो दिल तक पहुंच तो जाता है, लेकिन दिमाग तक पहुंचे और वो हमें समझ में आए, इसमें थोड़ा तो वक्त लगता ही है। ऐसे ही कई तमाम हस्तियों का जिक्र हम करते हैं अपने कार्यक्रम में, सफ़र जो है वो बहुत हसीन हो जाता है आपके साथ। इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे, संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन

0: के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया है कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। कल बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक मदद मिलेगी। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कंसुलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कंसुलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे 1 जुलाई से पहले जमा किए जाने वाले सभी आवेदनों के लिए मौजूदा BLS इंटरनेशनल और SGIVS ग्लोबल केंद्रों का उपयोग जारी रखें और बदलाव से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron today. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event. Upon arrival, Mr. Modi received a warm and enthusiastic welcome from members of the Indian diaspora at Hotel Negresco. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation and startup ecosystem. The two leaders will also hold bilateral talks to review cooperation in key sectors including technology, defense, innovation and strategic affairs. From France, the Prime Minister will travel to Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashwani News, Nice, France.
2: Prime Minister Narendra Modi thanked the Indian diaspora in Nice, France for the warm welcome accorded.

आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम गीत सुनहरे। आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत फिल्म ड्रीम गर्ल से, और इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं एक और गीत।
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: अनिल इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल वो देखो, सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है। फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

सुना और पुराने गीतों का आनंद लिया। आप अभी सुन रहे थे हेमलता की आवाज़ में फिल्म अखियों के झरोके से ये खूबसूरत गीत। और आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म कामचोर से।

0: पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत सुनहरे यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाजत। अब सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ा

0: पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमरीका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाना है। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने रविवार को हस्ताक्षर करने की योजना से इनकार किया और कहा कि इसका ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है, और साथ ही उन्होंने इस दिन को लेकर ट्रंप के अजीब आग्रह की आलोचना भी की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। ये टूर्नामेंट पूरे इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है और इसका फाइनल अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron today. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event. Upon arrival, Mr. Modi received a warm and enthusiastic welcome from members of the Indian diaspora at Hotel Negresco. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation and startup ecosystem. The two leaders will also hold bilateral talks to review cooperation in key sectors including technology, defense, innovation and strategic affairs. From France, the Prime Minister will travel to Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashwani News, Nice, France.
1: The White House said that US President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh yesterday. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj

0: आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक का प्रोग्राम गीत बहार। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में आप 3:10 पर सुनेंगे गज़ल गीत का प्रोग्राम। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीश शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट

0: जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट वीजा और काउंसलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट वीजा और काउंसलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तथा तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron today. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event. Upon arrival, Mr. Modi received a warm and enthusiastic welcome from members of the Indian diaspora at Hotel Negresco. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation and startup ecosystem. The two leaders will also hold bilateral talks to review cooperation in key sectors including technology, defense, innovation and strategic affairs. From France, the Prime Minister will travel to Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The White House said that US President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said, "Indore Declaration is not just a document of agreement, but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations." The government has appointed Lieutenant General Dhiraj Seth as the next chief of the army staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the vice chief of the army staff. The present chief of the army staff, General Upendra Duvedi, is retiring from service the same day. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam yesterday during a routine sortie.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 3:10:09 का समय हो चला है और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत गजल का। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अतुल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते चलेंगे कुछ चुनिंदा गजलों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि घड़ी का ये पहर, रात का ये पहर, जब ये गजल आप सुनेंगे तो सुकून देगा, आपके चेहरे पे मुस्कान देगा। कार्यक्रम का आगाज करते हैं जगजीत सिंह की इस खूबसूरत पेशकश के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। 3:31 और 47 सेकंड का समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गजल अपने दोस्त अतुल के साथ।

कार्यक्रम गीत गजल में अभी आपने सुनी सुमना रॉय की ये गाई हुई गजल, और कार्यक्रम में अगली पेशकश है पंकज उदास की आवाज़ में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, सुबह के 4 बज चुके हैं और ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:20 होने को हैं और श्रोताओं, ये समय होता है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। जी हाँ, कर्नाटक संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे M. चंद्रशेखरन का राग शुभा पंटुरवराली में वायलिन वादन। रूपकम ताल में निबद्ध रचना मुथुस्वामी दीक्षितर की है। घटम पर आपका साथ दिया है सुकन्या रामगोपाल ने।

अभी आपने एम चंद्रशेखरन का राग शोभा पंटोवराली में वायलिन वादन सुना। रूपकम ताल में निबद्ध रचना मुत्तुस्वामी दीक्षितधर थी। घटम पर आपका साथ दिया था सुकन्या रामगोपाल ने। इसी के साथ आज का कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म यहीं पर संपन्न होता है। कुछ ही पलों में सुबह के 4:50 होने को हैं। वंदे मातरम।

66.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 43 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

और श्रोताओं, अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। प्रातः 5:10 का समय रहेगा कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस का, जिसमें आज का विषय है पवन मुक्तासन और सेतु बंदासन पर जानकारी।

प्रातः 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति संगीत का, जिसमें लेकर आते हैं हम आपके लिए देशगान। 5:30 का समय रहेगा स्वर रंजनी का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहम्मद अलीम खान का वॉयलिन वादन आहिर भैरव राग में। तबले पर आपकी संगति होगी राशिद जफर खां की।

प्रातःकालीन सभा में 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसमें आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित विश्वनाथ के गाई हुई कुछ पेशकश। समय रहेगा प्रातः 6:10 का। चिंतन हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रातः 6:40 पर आप सुन सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा के विचार।

बालकांड का भाग 86। 7:10 का समय रहेगा, कार्यक्रम संगीतिका का, और 7:30 का समय होता है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

0: समय रहेगा कार्यक्रम साहित्यिक का, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता हिंदी सिनेमा में लोक साहित्य पर। विशेषज्ञ होंगे श्री अरुण शेखर, साहित्यकार और फिल्म समीक्षक। भेंट करता श्रीमती कल्पना शुक्ला। और इसके अलावा साहित्यिक गतिविधियां सुश्री तबस्सुम, युवा पत्रकार। जी हाँ, समय रहेगा साहित्यिकी का प्रातः 8:45 का। श्रोताओं, ये थी आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स की भी श्री मोदी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी होटल नेग्रेस्को में उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। श्री मोदी ने इस स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि घर से हजारों मील दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की ही तरह मजबूत बना हुआ है। स्लोवाकिया में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने ब्रेस्टिलावा में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। असम के जोरहाट में कल सुबह वायुसेना के AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत की खबर है। विमान नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन समाप्त हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली और हविल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 तक आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए मैचों में 16 में से 13 मुकाबले अपने नाम कर चुका है। शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 5 विकेट पर 161 रन बनाए। आयरलैंड की टीम 19 ओवर और 1 गेंद में 121 रन पर ही सिमट गई।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़े, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आएं, यानी नितंब के पास लेकर आएं। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुल नुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाए और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दे। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शव आसन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना।

0: पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।
1: प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन पर जानकारी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:19 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:20 हुए हैं और श्रोताओं, ये समय है देशभक्ति संगीत का।

इसी के साथ आज का देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर श्रोताओं कुछ ही पलों में सुबह के 5:30 होने को हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं सुबह के 5:30 हो चले हैं और ये समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मोहम्मद अलीम खां का राग आहिर भैरव में वॉयलिन वादन। तबले पर आपकी संगति की है राशिद जफर खां ने।